फिर कहीं घूमने फिरने से अगर आप कहीं जा रहे हैं और हल्की सी अगर मोच आ गई तो लोगों को लगता है कि हमें सर्वाइकल हो गया है। सर्वाइकल एक्चुअल में है क्या? सर्वाइकल का मतलब है गर्दन का वो हिस्सा यानी रीढ़ की हड्डी स्पाइन के ऊपर 7 कोशिकाएं C1, C7 ये जब सब एक साथ मिलकर के जब इस हिस्से की हड्डियां डिस्क मांसपेशियां या नसों में समस्या होती है तो वो आम बोलचाल में लोग इसे सर्वाइकल कहते हैं। ये क्यों होता है, ये इसके कारण क्या हैं? जैसे लंबे समय तक मोबाइल या कंप्यूटर पर झुककर काम करना और एक ही टक उसे देखते रहना, गलत तरीके से बैठना या सोना। आजकल बहुत ज्यादा देखा गया है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा बुजुर्ग क्यों ना हो, तकिया 2 ले लेना और 2 तकियों पर आराम से लेट करके मोबाइल देखना और घंटों मोबाइल देखना, बढ़ती उम्र के साथ गर्दन की हड्डियों में घिसाव, गर्दन में चोट लगना, लंबे समय तक एक ही मुद्रा में काम करना और बैठना। इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, आइए हम आपको वो बताते हैं। गर्दन में दर्द या अकड़न, कंधे और हाथ तक दर्द फैलना, हाथों में झंझनाहट या सुन्नपन का रहना, सिर के पीछे दर्द, गर्दन झुकाने में कठिनाई और कुछ लोगों को तो चक्कर भी आने लगते हैं। ये ठीक हो सकता है, बिल्कुल अधिकांश मामलों में यदि ये व्यायाम, योग और सही बैठने की आदत से हम इसकी आदत बना सकते हैं। फिजियोथेरेपी और जरूरत पड़ने पर दवाइयों में काफी आराम भी मिल सकता है, लेकिन कहते हैं ना, योग से जुड़ें और सही बैठने की आदत डालें तो हमें इन सब चीजों की भी कोई जरूरत नहीं होती है। यदि नस पर अधिक दबाव हो या गंभीर समस्या हो तो आगे जांच और विशेष उपचार की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसके कारण आपको लगता होगा कि शायद इसके कारण भी हम बता दें कि ये किन कारणों से होता है। यदि आपको लगता है कि आपको सर्वाइकल है तो ये कुछ ऐसे छोटे मोटे सिम्टम्स होने लगते हैं कि आपको गर्दन में हल्का सा दर्द होने लगेगा, चक्कर आने लगेगा और या आपको उठने बैठने और चलने में भी प्रॉब्लम होती है। कुछ ऐसे नियम जो मैं आज आपको बताऊंगी यानी सर्वाइकल में अपनाने वाले योग्य नियम। गर्दन को लंबे समय तक एक ही स्थिति में बिल्कुल ना रखें। मोबाइल को नीचे झुककर देखने की बजाय आंखों के सामने ही रखें और कम समय के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करें। जब भी आप मोबाइल का इस्तेमाल करें तो आप 0 पॉइंट का ही, लेकिन आपको चश्मा लगा करके ही मोबाइल को देखना है। हर 30-40 मिनट बाद 2-3 मिनट का ब्रेक जरूर लें यदि आप किसी जॉब में हैं या घंटों बैठ कर आपको काम करना पड़ रहा है। बहुत ऊंचा या बहुत मोटा तकिया ना लगाएं, पतला तकिया बेहतर रहता है। अचानक गर्दन झटकने या भारी वजन उठाने से भी बचें। कई बार मैंने देखा है महिलाएं सुबह जब काम करती हैं अपने घरों में, पानी भारी से भारी बाल्टी को यूं ही झटके में उठा लेती हैं, या फिर जमीन पर कोई चीज गिर जाती है तो उसे झटके से झुक करके उठा लेती हैं। तो ये आदतें भी आगे चल करके आपको सर्वाइकल का शिकार बना सकती हैं। रोज 20-30 मिनट हल्की सैर करें, पर्याप्त नींद यानी कि 7 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त नींद कहलाती है, जो कि हर किसी को लेनी चाहिए। सर्वाइकल के लिए योग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल कई घरों में सुनने को मिला है, देखने को मिला है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपको यही कहते हैं कि आप अपना वजन कम करें और योग अभ्यास करें। गिरवा संचालन यानी गर्दन को धीरे धीरे ऊपर नीचे और दाएं बाएं घुमाने के लिए यह आसन किया जाता है। आप रोज 15 से 20 मिनट इस आसन को कर सकते हैं, जो कि है ग्रीवा संचालन। दूसरा है ताड़ासन। कई बार बहुत सारी सीरीज में हमने ताड़ासन के बारे में बताया है। भुजंग आसन, मकरासन, मामरी आसन, मांजरी आसन या उसे कैट काउ स्ट्रेच भी कहते हैं, बालासन और अंत में शवासन, जो कि 5 से 10 मिनट हम आराम की मुद्रा में जाकर के इसको कर सकते हैं। अब आता है प्राणायाम की स्थिति। अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम 10 मिनट और 5 मिनट करके आप अपने को

स्वस्थ बना सकते हैं। सर्वाइकल के लिए आज मैं आपको एक डाइट चार्ट भी देने वाली हूँ, जो कि सुबह से लेकर के शाम तक का आपको हर एक खाने की डाइट उसमें बताई जाएगी। सबसे पहले तो सुबह गुनगुना पानी, आपको आदत डाल लेनी है कि एक गिलास गुनगुना पानी आराम से बैठ करके सिप सिप करके आपको पीना है। इकट्ठा भी नहीं पी जाना है, थोड़ा थोड़ा कर।

अंधेरों से उजालों की ओर, भटकाव से सत्य की ओर और भ्रम से ज्ञान की ओर ले जाने वाली ये है पहली किरण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजी आकांक्षा। और आज की इस पावन सुबह में हम बात करेंगे उस संत की जिसने शब्दों से नहीं बल्कि सच्चाई से दुनिया को आईना दिखाया, जिनकी वाणी में सरलता थी पर अर्थ गहरे, जिनके दोहों में जीवन का सार छुपा है। जी हाँ, आज की पहली किरण समर्पित है संत कबीरदास जी को। कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। ये कहते हैं कबीरदास जी। तो दोस्तों, आज की सुबह हम खुद से मिलने की कोशिश करेंगे, कबीर की नजर से दुनिया को समझेंगे और अपने भीतर छुपे सत्य को पहचानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक शो नहीं, ये है आत्मा जो जगाने वाली है आपकी, हमारी, हम सबके भीतर की वो किरण जो कहलाती है पहली किरण।

संत कबीर दास जी का जन्म 1398 में हुआ और इनकी मृत्यु मानी जाती है 1518 में, यानी कि 15वीं सदी के एक महान भारतीय कवि, रहस्यवादी और समाज सुधारक थे हमारे कबीरदास जी। इन्होंने निर्गुण राम की भक्ति पर जोर दिया और जाति भेद, अंधविश्वास व आडंबरों का कड़ा विरोध किया। उनकी रचनाएं साखी, सबद और रमैनी, जो कि एक पुस्तक का जब उसको रूप दिया गया और नाम रखा गया बीजक, मुख्य रूप से सधुक्कड़ी भाषा में है, जो हिंदी साहित्य के भक्ति काल की ज्ञान मार्गी शाखा का हिस्सा है। इनके जन्म की बात की जाए तो माना जाता है 1398 में काशी के वाराणसी में इनका जन्म हुआ, लहरतारा तालाब के पास। जुलाहा दाम्पत्य नीरू और नीमा द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। स्वामी रामानंद इनके गुरु थे और मगहर में 1518 के आसपास इनकी मृत्यु हुई। और अगर इनकी भाषा शैली की बात करें तो मुख्य रूप से इन्होंने सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं के लिए, और साथ ही साथ अवधी, पंचमेल, खिचड़ी, बोलचाल की भाषा को इन्होंने अपनाया है। चलिए इनके बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले इन्हीं के द्वारा रचित एक निर्गुण सुनते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं पहली किरण भोरे भोरे की सुबह की, और उसमें आज हम बात कर रहे हैं संत कबीरदास जी की। तो इनकी अगर सिद्धांत और शिक्षाओं की बात करें तो ये निराकार ईश्वर को मानते थे, यानी निर्गुण भक्ति करते थे। कबीर ईश्वर को निर्गुण मानते थे जो हर कण में व्याप्त है, ना कि केवल मंदिर या मस्जिद में। और इसके साथ में उन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और धर्म के नाम पर पाखंड का कड़ा विरोध किया। कबीर ने प्रेम, भाईचारे और सादगीपूर्ण जीवन पर जोर दिया। कबीर ने गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया। कबीर जी के कुछ प्रसिद्ध दोहे हैं जिनके अलग अलग रूप हैं। अगर मैं ज्ञान की महत्ता की बात करूं तो इनकी एक रचना है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यानी सज्जन की जाति नहीं, उसका ज्ञान देखना चाहिए। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इसी प्रकार इन्होंने जब प्रेम पर अपनी पंक्ति दी तो वो कुछ इस प्रकार थी, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। किताबें पढ़कर कोई ज्ञानी नहीं बनता, जो प्रेम के ढाई अक्षर पढ़ ले वही सच्चा ज्ञानी है। और सच में अगर आपकी जीवन में, आपकी लाइफ में प्रेम है ना, तो उससे आप सब कुछ सरल बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ज्ञान इनकी पिटारी से ज़रूर लेंगे, लेकिन उससे पहले ये निर्गुण।

जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कबीर दास जी की। तो कबीर दास जी ने ज्ञान प्रेम के अतिरिक्त और भी कई सारे विषयों पर अपनी बातें कही हैं। उनमें से एक और है, जी हाँ, हम सभी इंसान हैं ना, और इंसानों में सबसे बड़ी कमी पाई जाती है आचरण को लेके। तो आचरण के बारे में कबीर दास जी का क्या कहना है, आइए आपको बताते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। जब मैंने दूसरों में बुराई खोजी तो कोई नहीं मिली, लेकिन जब मैं खुद के अंदर झांकने को चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं दिखा। और ये बिल्कुल सत्य है। कहते हैं ना कि जब हम किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो उससे पहले चार उंगली हम पे खुद पे उठती है। तो बिल्कुल सही कहा हमारे कबीरदास जी ने। और किसी को कुछ भी कहने से पहले हमें खुद के अंदर झांक के जरूर देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त इन्होंने सादगी का महत्व बताया है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसे बड़े होने का कोई फायदा नहीं जिससे किसी का भला ना हो सके। बिल्कुल, अगर आप बड़े हैं और अगर आप बड़े बनते हैं तो सच में बड़ा वही होता है जिसका हृदय विशाल हो, जिसकी सोच विशाल हो, जो दूसरों का भला करना जानता हो। चलिए फिलहाल के लिए एक निर्गुण सुन लेते हैं, इसी से जुड़ा हुआ

जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं कबीर दास जी की, और इनका कहना है कि धर्म हमें जोड़ने के लिए बना है, लेकिन जब वही धर्म हमें बांटने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हम धर्म नहीं अहंकार निभा रहे हैं। कबीर दास जी कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगा तोहे, यानी अंत में सब एक ही मिट्टी में मिल जाना है, फिर ये ऊंचा नीचा हिंदू मुस्लिम का भेदभाव किस बात का, सोचने की बात है। तो आप सोचिए, तब तक हम सुन के आते हैं प्यारा सा निर्गुण।

जी हाँ दोस्तों, आप शो सुन रहे हैं पहली किरण। आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो ज्ञानसली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। और आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, जी हाँ, आपके अपने भक्तिमय कार्यक्रम में, वो हैं कबीर दास जी। और कबीर दास जी की अगर मैं बात करूं तो उनके हर एक पहलू पे जिंदगी के बड़े ही चर्चे हुए हैं। और जो सबसे ज़्यादा चर्चित विषय और मुद्दा रहा है इनके जीवन का, वो थी इनकी मृत्यु। वो क्या थी, चलिए एक कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं। और ये कहानी कोई कहानी नहीं है, सत्य घटना पर आधारित कहानी है। जी हाँ दोस्तों, संत कबीर दास जी ने पूरी जिंदगी एक ही बात सिखाई, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का। लेकिन जब उनके अपने जीवन का अंतिम समय आया तो वही समाज जिसे उन्होंने जोड़ा था दो हिस्सों में बट गया। कहानी कुछ यूं है कि जब कबीर जी ने अपने प्राण त्यागे तो हिंदू अनुयायी बोले, हम उनका अंतिम संस्कार करेंगे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। और मुसलमान अनुयायी कहने लगे, नहीं, उन्हें दफनाया जाएगा इस्लामी तरीके से। बहस बढ़ने लगी, विवाद गहरा होने लगा। और वो संत जिसने जीवन भर भेद मिटाने की कोशिश की, उसके जाने के बाद भी भेद सामने खड़ा था। तभी एक चमत्कार हुआ। चमत्कार, वो चमत्कार आप विश्वास भी नहीं करेंगे। चलिए बताते हैं क्या हुआ। जब चादर हटाई गई तो वहां शरीर था ही नहीं, सिर्फ फूल का ढेर था। दोनों पक्ष शांत हो गए और समझ गए कि कबीर का अंतिम संदेश क्या था। फिर क्या हुआ, आधे फूल हिंदुओं ने लिए और आधे मुसलमान भाइयों ने, और दोनों ने अपने अपने तरीके से उन्हें विदाई दी। दोस्तों, कबीर जी ने जाते जाते भी यही सिखाया कि हम चाहे किसी भी धर्म से जन्म लें, लेकिन अंत में हम सब एक ही सच्चाई के हिस्से हैं। वो शरीर नहीं, विचार बनकर जीना चाहते थे, और शायद इसलिए वो फूल बनकर खुशबू बन गए।

दोस्तों, कबीर अंधविश्वास, व्यक्ति पूजा, पाखंड और ढोंग के विरोध में हमेशा आपको दिख जाएंगे। उन्होंने भारतीय समाज में जाति और धर्मों के बंधनों को गिराने का काम किया। वह हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उपशाखा के महान कवि थे। इनकी रचनाओं ने उत्तर और मध्य भारत के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनकी रचनाएं सिखों के गुरु ग्रंथ आदि ग्रंथ के भीतर पाई गईं। वे एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराई की कड़ी आलोचना की। उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों में उनका अनुसरण पाया जाता है। कबीर पंथ नामक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें मस्त मौला कहा। क्षिति मोहन सेन जी ने कबीर साहिब द्वारा लिखित मुख्य रूप से 6 ग्रंथ बताए हैं। पहला, कबीर साखी। इस ग्रंथ में कबीर साहिब जी साखियों के माध्यम से सुरता यानी आत्म को, यानी आत्मा को और परमात्मा को समझाने का प्रयास किया है। कबीर बीजक, कबीर की वाणी का संग्रह। उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक से सन 1464 में किया। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 में किया। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से पद्य भाग है। बीजक के 3 भाग हैं, जो कि है रमायणी यानी रामायण, चौपाई और दोहे का पद जो कि लिखित है ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में, सबद ये गेय पद है जो कि ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में ही रचित है, साखी यानी साक्षी पद जो कि दोहों में रचित है और इसकी भाषा की अगर बात करें तो राजस्थानी, पंजाबी, मिली खड़ी बोली। इसके अतिरिक्त कबीर शब्दावली। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से कबीर साहिब जी ने आत्मा को अपने अनमोल शब्दों के माध्यम से परमात्मा की जानकारी बताई है। अगला है कबीर दोहावली। इस ग्रंथ में मुख्य तौर पर कबीर साहिब जी के दोहे सम्मिलित हैं। कबीर ग्रंथावली। इस ग्रंथ में कबीर साहिब जी के पद व दोहे दोनों सम्मिलित हैं। कबीर सागर ये सूक्ष्म वेद है जिसमें परमात्मा की विस्तृत जानकारी है। दोस्तों, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनके दोहों को उनके शिष्यों द्वारा ही लिखित किया गया यानी संग्रहित किया गया। उनके दो शिष्यों भागोदास और धर्मदास ने उनकी साहित्यिक विरासत को संजोया। कबीर के छंदों को सिख धर्म के ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित किया गया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संत कबीर के 226 दोहे शामिल हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल सभी भक्तों और संतों में संत कबीर के ही सबसे अधिक दोहे दर्ज किए गए हैं। क्षिति मोहन सेन ने कबीर के दोहों को काशी सहित देश के अन्य भागों के संतों से एकत्र किया था। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया और कबीर की वाणी को विश्व पटल पर ले गए। हिंदी में बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी सहित अनेक विद्वानों ने कबीर और उनकी साहित्यिक साधना पर ग्रंथ लिखे हैं। वाकई बहुत महान हस्ती थी कबीर साहब। आइए चलते हैं इन्हीं के एक और निर्गुण की ओर।

जी हाँ दोस्तों, कबीर साहिब जी के यहाँ साधु संतों का जमावड़ा रहता था। कबीर साहिब जी ने कलयुग में पढ़े लिखे ना होने की लीला की, परंतु वास्तव में वे स्वयं विद्वान हैं। इनका अंदाज और इस बात का अंदाज़ा अगर आपको लगाना है तो उनके दोहों से आपको साफ साफ लग सकता है। जैसे मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, उन्होंने स्वयं ग्रंथ न लिखने की भी लीला तथा अपने मुख कमल से वाणी बोलकर शिष्यों से उन्हें लिखवाया। और कई दफ़ा तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं ये ईश्वर के अवतार थे। आप इस बात का अनुमान इनकी मृत्यु की कहानी से बेशक लगा सकते हैं। अगर चमत्कार है नहीं, अगर वो ईश्वर थे नहीं, तो फिर इतना बड़ा चमत्कार हुआ कैसे? आपके समस्त विचारों में राम नाम यानी पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम देखा जाता है और इसकी महिमा प्रतिध्वनित होती है। कबीर परमेश्वर एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्म कांड के घोर विरोधी थे। मूर्ति पूजा, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर, उनका विचार था कि इन क्रियाओं से आपका मोक्ष संभव नहीं। वे कहते हैं, हरि मोर पियो मैं राम की बहुरिया, तो कभी कहते हैं हरी जननी मैं बालक तोरा, और कभी बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। उस समय हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोग ही कबीर साहिब जी को अपना दुश्मन मानते थे, क्योंकि वे अपना एक तारा लेकर दोनों धर्मों को परमात्मा की जानकारी दिया करते थे। वे समझाते थे कि हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। उन्होंने अपनी भाषा सरल और सुबोध रखी ताकि वे आम आदमी तक पहुंच सके। कबीर साहिब जी को शांतिमय जीवन प्रिय था और वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव और संत प्रवृत्ति के कारण आज विदेशों में भी उनका समादर हो रहा है। कबीर साहिब जी सिर्फ मानव धर्म में विश्वास रखते थे। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहार, वाते तो चाकी भली पी सिखाए संसार, माया पापड़ी सब जग तो फांधे पड़या गया कबीरा काटी। कबीर दास जी कहते हैं कि ये जो पापिनी माया फंदा लेकर बाजार में आ बैठी है ना, इसने बहुत लोगों पर फंदा डाल दिया है, पर कबीर उसे काटकर साफ बाहर निकल आए हैं। हरि भक्ति पर फंदा डालने वाला खुद ही फंस जाता है, ऐसा इनका मानना है। चलिए फिर एक और निर्गुण की ओर आगे बढ़ते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, आप शो सुन रहे हैं भोरी भोरी का भक्तिमय कार्यक्रम पहली किरण, और अब बारी है उन प्रसिद्ध दोहों की जिससे चलते चलते हम कुछ ज्ञान लेके चलेंगे। वाकई बहुत कुछ है जो हम अपने जीवन में अगर कबीर दास जी के जीवन से उतार लें तो हमारा जीवन बहुत ही सरल और वाकई जीने लायक हो जाएगा। चलिए चलते हैं उन दोहों की ओर जो आज भी उतना ही जीवंत है जब ये लिखित हुआ था। कबीर हार चाम लहू न मेरे, जाने कोई सतनाम उपासी, तारन तरन अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। कबीर दास जी कहते हैं कि मेरा शरीर हड्डी और मांस का बना नहीं है, जिसको मेरे द्वारा दिया गया सतनाम और सार नाम प्राप्त है वो मेरे इस भेद को जानता है। मैं ही सबका मोक्षदायक हूँ तथा मैं ही अविनाशी परमात्मा हूँ। क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण घर दिया न बाती। यदि एक मनुष्य अपने एक पुत्र से वंश की बेल को सदा बनाए रखना चाहता है तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। जैसे लंका के राजा रावण के 1,00,000 पुत्र और 1,25,00,000 नाती थे, वर्तमान में उसके कुल वंश यानी उसके वंशजों की अगर बात करें तो उसमें कोई भी उसके घर में इस वक्त दीप जलाने के लिए भी नहीं है, सब नष्ट हो गए। इसलिए हे मानव, परमात्मा से तू ये क्या मांगता है जो स्थाई है ही नहीं। है ना कितनी गहरी और सच्ची बात।

कबीर दास जी कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यहाँ पर कबीर दास जी अपनी उपरोक्त वाणी के माध्यम से उन लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं जो लंबे समय तक हाथ में माला तो लेकर घूमते हैं पर उनके मन का भाव कभी नहीं बदलता, उनके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर जी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि हाथ की इस माला को फेरकर कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन को सांसारिक आडंबरों से हटाकर भक्ति में लगाओ ताकि जीवन सरल हो सके। इसके अतिरिक्त मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुरी न लागे डारी। परमात्मा कबीर जी हिंदू और मुस्लिम दोनों को मनुष्य जीवन का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि मानव जन्म पाना बहुत कठिन है, ये शरीर बार बार नहीं मिलता। जो फल वृक्ष से नीचे गिर पड़ता है वह पुनः उसकी डाल पर नहीं लगता। इसी तरह मानव शरीर छूट जाने पर दोबारा मनुष्य जन्म आसानी से नहीं प्राप्त होता और पछताने के अलावा फिर कोई चारा नहीं होगा। इसलिए आप जब तक हैं सत्कर्म करें, लोगों का भला करें और अपने जीवन के साथ साथ सभी के जीवन में आनंद भरें। इसके अतिरिक्त इनका एक और दोहा है कि पानी केरा बुदबुदा, असमानस की जात, एक दिना छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। कबीर साहिब लोगों को नेकी करने की सलाह देते हुए इस क्षणभंगुर मानव शरीर की सच्चाई लोगों को बता रहे हैं कि पानी के बुलबुले की तरह मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर है, जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं वैसे ही ये देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो जब तक आप जीवित हैं सदाचार करें, सदाचरण अपनाएं और अपने जीवन को सुखद और सरल बनाएं और इस समाज में कुछ तो नेकी करके जाएं।

दोस्तों, आज की सुहानी सुबह में हमने संत कबीर दास जी के शब्दों में छुपे जीवन की सच्चाई और उसके अर्थ को महसूस किया। कबीर कहते हैं, काल करे सो आज घर।

नई सोच के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और एक नई रोशनी के साथ आपके अपने शो पहली किरण में। तब तक मुस्कुराते रहिए, जागते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्ली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। और हाँ, राधे राधे, जय जिनेंद्र, रब राखा तो सब राखा, खुदा हाफिज़।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ, नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात, आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में GMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारीयानस्ली PG कॉलेज, गोंडा।
2: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: अरे झब्बू।
1: हाँ ताल।
0: अरे एक सवाल का जवाब दो।
1: बताइए ताल।
0: ये बताओ कि भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है?
1: अरे जमीन पर सर।

0: वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आप सभी का वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में. आपके मॉर्निंग जॉक आरजे दान आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम. ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान. और फाइनली आज थर्सडे मॉर्निंग है और देखते ही देखते हमने पूरा आधा महीना गुजार लिया है जुलाई का भी. और आज है 16th of July. सो आज 16 तारीख हो गई है और आज के इस मॉर्निंग में मॉर्निंग जॉक आपके वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, क्योंकि आज का भंडार बहुत ज़्यादा होने वाला है. एंड लिटरली आज हम काफ़ी ज़्यादा मिल करके एंजॉय करने वाले हैं, मस्ती करने वाले हैं और बहुत सारी बातों को जानने वाले हैं आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में. बट उससे पहले आपको ले चलते हैं आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ और बताते हैं कि आज का मॉर्निंग स्पेशल थॉट ऑफ द डे क्या है और ये क्या है कहना चाहता आपसे आपके मॉर्निंग टाइम गुड मॉर्निंग गोंडा में.
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो दिन भी आज थर्सडे का है और बातचीत भी आज थर्सडे वाली होने वाली है। डे के अकॉर्डिंग बातें कितनी प्यारी होती है ना। पूरे वीक अलग अलग डे में हम अलग अलग बातें करते हैं और वो बातें कहीं ना कहीं हमको बहुत ज़्यादा भाती है, हमको बहुत अच्छी लगती है। सो चलिए आज चलते हैं आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ और बताते हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या है और आपसे क्या कहना चाह रहा है। आज का थॉट कहता है, हवा ने माफी तो मांग ली, हवा ने माफी तो मांग ली लेकिन सारे पत्ते गिर चुके थे। हवा ने माफी तो मांग ली लेकिन सारे पत्ते गिर चुके थे। सो कई बार ऐसा हमसे हो जाता है या शायद हमारी लाइफ में कोई ऐसा कर जाता है, जब बहुत कुछ खराब करेगा उसके बाद कोई बस एक सॉरी बोल देगा। माना सॉरी मैजिकल वर्ड्स में आता है, सॉरी बहुत बड़ी बात है, सॉरी बोल कर कर ना जाने कितने कन्फ्यूजन्स दूर हो जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि सिर्फ सॉरी कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि सॉरी तो वहाँ होता है जहाँ किया ना जाए और आपको पता ही ना हो। बट अगर कहीं इंटेंशनली कुछ किया गया है और उससे काफ़ी लॉस हो गया है तो लिटरली वहाँ पे सॉरी कैसा चलेगा, नहीं चल सकता सॉरी, है ना। सो ये सॉरी वर्ड हम बहुत कुछ किसी का बर्बाद करके नहीं बोल सकते और ना ही कोई हमारा बोल सकता है कि उसने हमारी काफी सारी चीजें ले ली और बाद में बस बोल दे सॉरी। सो इसलिए कई बार हमको ये ध्यान रखना होता है कि हम किसी के साथ इतना ज्यादा बुरा ना कर जाए कि हमको इस बात का, चूंकि पता है कि आखिर में सॉरी बोलने का कोई मतलब रह नहीं जाता। ठीक उसी तरह हमें ये भी समझना होगा कि भाई सॉरी अगर कोई हमसे भी बोलता है और सारी चीज़ें हमारी जा चुकी है तो उस सॉरी का कोई सेंस नहीं रह जाता। और ये अपने आप में बिल्कुल सटीक बात है, बिल्कुल सही बात है। आई होप कि हम इस बात को समझ पा रहे होंगे और कहीं ना कहीं इस सॉरी जो मैजिकल वर्ड बोलते हैं उससे निकलकर इस बात को जान रहे होंगे कि आखिर सॉरी कहाँ के लिए है और कहाँ के लिए कोई सॉरी नहीं है। सो थॉट बहुत ही छोटा है, बहुत ही गहरा है, लेकिन महसूस आपने भी किया है, हो सकता हो आपके साथ किसी ने बस कह के सॉरी बोल दिया हो और आपको कितना बुरा लगा और आज तक उस बात को कभी कभी आप याद करते होंगे ना। ऐसी कई बार हम भी करते हैं गलतियाँ और हमको लगता है सॉरी बोल देंगे क्या हो जाएगा, लेकिन नहीं, किसी का बहुत कुछ चला जाता है। इसलिए किसी को हर्ट नहीं करना है। और किसी को ऐसा होता ना कि देखो एक बार हम इनको बताते हैं, एक बार तो हम बताएंगे ही बताएंगे, वो एक बार बताने में हो सकता है आप इतना ज़्यादा बता जाएं, हो सकता है आप इतना एक्सेस कर जाएं कि किसी का बहुत कुछ बर्बाद हो जाए। सो ऐसा नहीं है कि कोई बैठा हुआ है फौरन आप पर करेगा, अक्सर उन पर चीज़ें ज़्यादा होती हैं जो रिटर्न में खुलकर कुछ करते नहीं या कहते नहीं हैं, क्योंकि हमको लगता है या किसी को भी लगता है, ज़माने को लगता है कि इस पर तो आराम से किया जा सकता है। पर एक्चुअल में ज़रा सोचिए कि गुस्सा आने पर गुस्सा दिखा देना आसान है या गुस्से को साइड करके नॉर्मल रह जाना ज़्यादा बड़ी बात है। सो सच में तो महान वही होते हैं जो सह जाते हैं, सच में तो वो लोग होते हैं जो नहीं बोलते, क्योंकि बोलने को और कहने को तो हर कोई कहता है कि कह दिया जाए। बट इस बात को समझना पड़ेगा कि शायद सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलता है, कई बार बहुत कुछ खराब हो जाता है, इसलिए सॉरी के सहारे बैठना इज नॉट अ गुड थिंग। सो आई होप कि आज का मॉर्निंग वाला थॉट आप तक पहुंच गया होगा और हम अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट भी करने वाले हैं। कहाँ, कैसे, कब, ये तो खैर आपको ही सोचना पड़ेगा। और फिलहाल हम चलिए इस गाने को पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। गाना बड़ा ही खूबसूरत है, पूरा हम सुना ही नहीं था हमने, और इस गाने के बाद वापस आएंगे और देखते हैं आपकी मॉर्निंग विशेस और साथ ही साथ
आपके मॉर्निंग थॉट पर आपके विचार।

0: क्या बात है, वाह। सो चलिए भाई, चलते हैं आपके मैसेजेस की तरफ। लेकिन उससे पहले, आपने ट्यून किया हुआ है 89.6 FM फ्रीक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से, और साथ ही साथ रेडियो ग्यारहस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन से। सो आप सभी का वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान गुड मॉर्निंग गोंडा शो में।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

तो चलिए भाई चलते हैं। कमल नयन जी का पहला मैसेज आया है, लिखा है जितना से, गुड मॉर्निंग टू यू, स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में कमल नयन जी फ्रॉम गोंडा। और धर्मेंद्र मोहन जी आवास विकास से लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड लक, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। और लिखा है कि सुंदरता चरित्र में नहीं बल्कि चरित्र में होती है। अच्छा, किसी लड़की ने कहा कि मेकअप में मैं कितनी सुंदर लगती हूँ, मैंने थोड़ा साहस दिया और कहा कि मेरी नज़र में सुंदरता नहीं मेकअप चेहरे को सुंदर बना जा सकता है। क्या बात है। एंड इसके बाद जो है उन्नाव से भी एक मैसेज आया, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू। ताबिश खान मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू। गीता श्रीवास्तव जी हैं, गुड मॉर्निंग आर जे सर, गुड मॉर्निंग टू यू। सबलू सावंत हैं सांता क्रूज मुंबई से, गुड मॉर्निंग आर जे अदनान, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड हमारी प्रीति जी हैं बहराइच से, सच्चाई बयां करता हुआ ऑसम थॉट, थैंक यू सो मच। आशु जी हमारी लखनऊ से है, आपने लिखा है, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू। और धर्म तो केवल रास्ता दिखाता है लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। बेशक। हमारी गीता जी भी हैं, आपने भी लिखा है कि खेती सूख जाने पर बारिश का कोई मतलब नहीं रह जाता, उसी तरह मैजिकल शब्द का मैजिक हर बार नहीं चल सकता, कोशिश करनी चाहिए, किसी का बुरा ना ही करे, है ना। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और कमल नयन जी कहते हैं कि सॉरी एक ऐसा शब्द है जो ये अहंकार को तोड़ता है और रिश्ते को बचाता है, लेकिन चिड़िया दाना चुग गई तो डंडा हिलाने का क्या फ़ायदा। तो किसी का दिल दुखने से कोई सोचे कि दर्द होगा, सॉरी बोलने से काम नहीं चलने वाला। सॉरी एक छोटा सा शब्द है लेकिन कहीं कहीं काम बहुत बड़ा कर जाता है। बेशक, सही फरमाया आपने कि वैसे तो भाई जाहिर सी बात है सॉरी बोलने से बहुत सारे झगड़े मिट जाते हैं, लेकिन किसी का दिल दुखा दिया है उसके बाद सॉरी तो वो सॉरी नहीं बनता है बॉस, बिल्कुल नहीं बनता है। एंड हमारी गीता जी लिखती हैं, सर आप अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ना हम अर्जेंटीना वाला मैचेस देख रहे हैं, ना स्पेन वाला देख रहे हैं। हम तो फिलहाल कल जो एक ड्रामा हुआ था काकोरी एक्शन, उसको लाइव थिएटर देखा था और उसको सपोर्ट किया, मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच मेरी ओपिनियन पूछने के लिए। एंड हरीश चंद सविता जी मौजूद हैं और आपने लिखा है कि आने वाला कल कभी नहीं आता, जब भी आता है आज बन कर ही आता है, इसलिए आने वाले कल में जो भी अच्छा करने की चाह हो उसकी शुरुआत आज से ही कीजिए। बहुत खूब लिखा है, थैंक यू सो मच हरीश चंद सविता जी। सो आप सब लोगों का बहुत वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, और चैट बॉक्स पर आप लोग मौजूद हैं। बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें तो होंगी होंगी, लेकिन इन्हीं के साथ में हम इतनी सारी चीज़ें लेकर आए हैं जो आपसे बात करने के दौरान हम ऑफ कोर्स आपसे साझा करने वाले हैं, और आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, आप एंजॉय भी करने वाले हैं। सो फिलहाल चलते हैं, अब चूँकि म्यूज़िकल ब्रेक का वक्त हो चला है, वापस से आने वाले हैं और आने के बाद हम सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और कई सारी बातों को बताते हुए। फिलहाल सिटी अपडेट भी आपका इंतज़ार कर रही है, जल्दी आ रही है आपके शहर की खबर आप तक सिर्फ और सिर्फ आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, क्योंकि भाई यही तो है गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हाँ जी, सो फिलहाल आइए इसी बातचीत में। हमने कहा था ना कि वापस से आकर के आपको ले चलेंगे आपके शहर की हलचल की तरफ, यानी सिटी अपडेट की तरफ। तो क्या कुछ हो रहा है गोंडा में, आइए बताते हैं आपको सिर्फ आपके मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे खान।

हाँ जी, तो क्या कुछ है आइए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले, चूंकि पानी की ही बात हो रही है, सो दुर्गागंज माझा के जो खेतों में है वो सरयू कनादी फिलहाल अभी इसका पानी जो है वो पहुंच रहा है, और यहाँ तक कि रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगा है पानी, चूंकि लगातार जब इसका वाटर लेवल बढ़ रहा है। सो सरयू नदी किनारे जो बसे गाँव हैं उसकी वजह से वहाँ पर आसपास के गाँव में पानी घुसता जा रहा है, और धीरे धीरे रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ने से दत्तनगर, व्योंदा माझा, साकीपुर, गोकुला और आसपास के गांवों के लोगों की जो फिक्र है वो बढ़ गई है। इसके अलावा फिलहाल पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो रही है और बैराज जिससे भी लगातार पानी छोड़े जाने का असर जो है वो दिख रहा है। तट पर रहने वाले जो भी गाँव हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है। इसके बाद अगली जो अपडेट है वो है वजीरगंज से, तरफगंज वजीरगंज। जी हाँ, सो वजीरगंज विकास खंड में भटपुरवा माफीदार पुरवा से गोरथियानिया तक जो प्रस्तावित संपर्क मार्ग है इसको बनाने का काम कल बुधवार से शुरू हो गया है। एंड जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य का शुभारंभ कर दिया गया है और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लंबे वक्त से इस सड़क के निर्माण की मांग थी और करीब 1,16,00,000 रुपए से बनने वाले इस संपर्क मार्ग का निर्माण जो है वो मंडी विभाग की तरफ से कराया जा रहा है। इसके अलावा चलते हैं आपको अगली अपडेट की तरफ लेकर के। अभी हमने आपको हाल में ही बताया था जिस तरह से ब्लड बैंक को लेकर के, ब्लड डोनेशन को लेकर के यहाँ पे एक स्कैम सामने आया था, उसमें ही एक अगली अपडेट आ गई है। फिलहाल के चैरिटेबल ब्लड सेंटर पर छापा मारा गया, सो केंद्र भी मिला है बंद। ज़िले में चूंकि खून का काला कारोबार उजागर होने के बाद जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट ने मामले में जांच तेज़ कर दी है और कल ACMO डॉक्टर आदित्य वर्मा और औषधि निरीक्षक सुमित वर्मा की टीम ने पूरे शिवा बख्तावर में मौजूद न्यू के चैरिटेबल ब्लड सेंटर पर छापा मारा। सो टीम को इस दौरान ब्लड सेंटर बंद मिला। टीम ने मौके का निरीक्षण करके जो ज़रूरी जानकारियां हैं वो जुटाई है और अधिकारियों का कहना है कि ज़िले के सभी ब्लड बैंक और ब्लड सेंटर्स की लगातार जांच की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता या अवैध गतिविधि पर जो है वो कार्रवाई किया जाए। अभी हाल ही में उजागर हुआ है खून कारोबार के मामले में, बाद में विभाग जो है वो अब सतर्कता बरत रहा है। फिलहाल जाँच में गिरोह के जो तार हैं वो नेपाल तक जुड़े होने के संकेत मिल रहे हैं और शुरुआती जांच में सामने आया है कि सिंडिकेट सिर्फ गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बस्ती तक ही मौजूद नहीं था बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों के जरिए नेपाल तक भी पहुंचने की आशंका बताई जा रही है। इसलिए कहीं ना कहीं फिलहाल अभी इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि किसी तरह से और भी तो नहीं ब्लड को लेकर के ऐसे कोई काला कारोबार किया जा रहा हो गोंडा या आसपास के एरिया में। अगली अपडेट है कि पंचायत सहायकों का चयन को हरी झंडी मिल गई है। सो ज़िले की 6 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों के सिलेक्शन का रास्ता साफ हो गया है। कैंडिडेट्स की जो पात्रता है उसके डॉक्यूमेंट्स की जांच के बाद जिला अधिकारी की अध्यक्षता वाली जनपद स्तरीय समिति ने जो चयन की संस्तुति कर दी है। सो ज़िले में पंचायत सहायकों के 47 वैकेंसीज पदों में से 12 बचे पदों का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है। इसमें से 6 ग्राम पंचायतों के लिए खंड विकास अधिकारियों और सहायक विकास अधिकारियों पंचायत ने डॉक्यूमेंट्स का मिलान करके रिपोर्ट भेजी थी। सो इसके आधार पर जनपद स्तरीय समिति ने 13 जुलाई को चयन की संस्तुति दी है। जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि बभनजोत ब्लॉक के तुर्काडीहा से चेतना सिंह, छपिया के देवगांव से सुनीता वर्मा, झंझरी के बहुआ तरहर से आलिमा, जानकी नगर से रत्नेश कनौजिया, लक्ष्मणपुर से हरिवंश से संगीता यादव और छछापारा मुतवल्ली से सुनौना शर्मा का जो है सिलेक्शन वो किया गया है। इसके बाद बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, और अगली अपडेट कहां से आ रही है? सो भाई अगली अपडेट जो है वो शिविर को लेकर के आ रही है। आज सुबह 7 बजे आवास विकास कॉलोनी में मौजूद प्रेरणा पार्क में योग प्रशिक्षण का शिविर का आयोजन किया गया। इसके अलावा आपको हम ले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। सो अगली जो अपडेट आ रही है
वो दरअसल सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV के वैक्सीन को लेकर के किया गया जागरूकता कार्यक्रम को लेकर के आ रही है। सो सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाव के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कल बुधवार को पुलिस लाइन सभागार में वामा सारथी की तरफ से HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण जागरूकता कार्यक्रम हुआ। इसमें 14 से 15 साल तक के जो पात्र बालिकाएं हैं उनका समय पर निःशुल्क टीकाकरण कराने की अपील की गई। इसके अलावा कहीं ना कहीं इसको लेकर लगातार लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है और लगातार इसको बढ़ाया जा रहा है। एंड फिलहाल आपको हम बता दें, देवी पाटन मंडल के 434 ट्रांसफार्मर ओवरलोड हैं। सो बार बार ट्रांसफार्मर फूकने से बिजली आपूर्ति प्रभावित हो रही है, विभाग को भी काफ़ी आर्थिक नुकसान हो रहा है। और इसी में बात यह है कि फिलहाल पूरे देवी पाटन जोन की अगर बात की जाए तो 434 ऐसे ट्रांसफार्मर है जहां ये ओवरलोडेड चल रहे हैं। इसके अलावा विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर कल बुधवार को ही सुसुंडा में मौजूद राजकीय ITI करनैलगंज में कई सारे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सो प्रशिक्षणार्थियों ने टेक्निकल और स्किल्ड बेस्ड मॉडल प्रदर्शनी लगाकर अपनी टैलेंट का प्रदर्शन किया। सो कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो मुख्य अतिथि नगर पंचायत परसपुर के अध्यक्ष द्वारा दीप जलाकर किया गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रतिस्पर्धी दौर में तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास ही युवाओं का रोजगार से जुड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है। सो फिलहाल ये कुछ अपडेट्स थी जो कि हमने आप तक पहुंचा दी। आई होप कि ये अपडेट्स आपको ज़रूर पसंद आई होगी। एंड यस, फिलहाल वक्त है आगे बढ़ने का और देखने का कि भाई अब कौन सा सॉन्ग आ रहा है हमारे गुड मॉर्निंग गोंडा शो में प्ले होने के लिए और आपको और भी ज़्यादा मॉर्निंग वाइब देने के लिए। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM और आप बने रहिए, बातचीत का दौर जारी रहने वाला है, अपडेट्स बहुत सारी हैं।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
5: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
6: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
5: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
7: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
8: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
9: मतलब?
8: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
10: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: और आखिर किसी ने पूछ ही लिया कि भैया आजकल इतना टेंशन में कह रहे तो फिर आपको लगेगा अरे यार अब क्या ही बताए, एक तो ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना है लेकिन अब इतना झंझट है, सो कैसे कराएं बस ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि आए दिन चेकिंग्स भी लगती है, किसी दिन अगर हम हत्थे चढ़ गए तो क्या होगा। तो चलिए हम बता दें कि भाई आपका अगर डीएल कहीं ना कहीं रिन्यू कराने की ज़रूरत है सो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो रिन्यू करा सकते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सो पहले तो समझ लीजिए भाई कि बिना वैलिड लाइसेंस पर यानी ड्राइविंग लाइसेंस के बिना व्हीकल चलाने वाले पर चालान और कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए अपने लाइसेंस की एक्सपायरी डेट वक्त वक्त पर ज़रूर चेक कर लें और वक्त रहते रिन्यू ज़रूर करवा लें। दूसरी बात यह कि ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए पुराना DL पहचान और पते का जो एक प्रमाण है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आवेदन फॉर्म और ज़रूरत पड़ने पर मेडिकल सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत होती है। सो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इनके बिना जो है वो काम नहीं चल सकता है। और आपको पता है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है DL को रिन्यू कराना, कितना इम्पॉर्टेंट होता है। सो ये हम पूरा आपको प्रोसेस बता रहे हैं कि किस किस तरह से है। सो कैसे ऑनलाइन आपको इसमें अप्लाई करना है। सो देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आवेदन फॉर्म को फिल करना होता है, जो ज़रूरी दस्तावेज़ हैं यानी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करना होता है, और जो उसमें निर्धारित फीस है वो जमा करना होता है। सो कई मामलों में पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाता है, जबकि कुछ कैंडिडेट्स के लिए RTO जा करके वेरिफिकेशन कराना पड़ सकता है। सो वक्त रहते लाइसेंस रिन्यू कराने से चालान, ज़्यादा शुल्क और कानूनी परेशानियों से बचा जा सकता है। सभी डॉक्यूमेंट्स पहले से ही तैयार रख लें ताकि रिन्यूअल प्रोसेस आसानी से बिना किसी देरी के पूरा हो सके। इसलिए आप जो है वो जब जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर RTO की, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको हमने बता ही दिया है कि भाई किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू के लिए पुराना DL, जो ड्राइविंग लाइसेंस पुराना आपका रहा हो, पहचान आपकी, पते का एड्रेस जो होना चाहिए, इसके अलावा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी चाहिए होती है, और कई ज़रूरत में जैसे कहीं कुछ स्पेशली मांगा जाता है जिसमें मेडिकल सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पहले से ही तैयार रखते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर लेते हैं तो आराम से हो जाएगा। इसीलिए हमने आपसे पहले ही बता दिया कि ये आप रख के जाएं, जिससे कि आपको बार बार दौड़ने और परेशान होने का मौका ना मिले, और आप बेफिक्र होकर के अपनी धन्नो चलाते रहें आराम से, है ना। सो DL रिन्यू कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, और वक्त से और भी ज़्यादा ज़रूरी रहता है, ताकि इस तरह से अगर कहीं पे भी कोई ऐसी बात आती है तो आपके पास आपके अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। आई होप कि आप ये बात जान गए होंगे, और अब ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जो काफ़ी टाइम से सोच तो रहे थे लेकिन करा नहीं पा रहे थे। सो फिलहाल अब कराने की तरफ आते हैं। सोचना तो बहुत हो गया, काफ़ी सोच लिया, अब वक्त है कराने का। तो चलिए भाई कराते हैं DL रिन्यू, लेकिन उससे पहले इस गाने को एंजॉय करते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक RJ अदनान।

0: बेटा राजू, क्या तुम्हें पता है कि एलोवेरा क्या होता है?
1: हाँ मैडम जी, जब एक पंजाबी विस्की का पैग अपने बड़े भाई को देता है तो कहता है एलोवेरा चीयर्स।
2: अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक, मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

0: सुबह ही कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो दिखती हैं वो दरअसल बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। ऐसी ही एक बात हम आपसे साझा करने वाले हैं जिसको सुनकर के आप कहने वाले ओ माय गॉड ये क्या है। जी हाँ, सो दरअसल अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई बात बस इतनी सी है कि जो आप तला हुआ खाना बार बार खाते हैं उसके पीछे पड़ गए हैं एक IAS ऑफिसर। जी हाँ, अब आप सोच रहे हैं तला खाना खाने से IAS ऑफिसर का क्या लेना देना है, राइट? अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सोचना भी चाहिए। बट दरअसल आपको हम बता दें कि IAS तुकाराम मुंडे जो हैं वो इसके खिलाफ अभियान चला रहे हैं जो एक ही खाने को तेल में बार बार तला जाता है। आखिर क्या है इतनी बड़ी प्रॉब्लम कि IAS जैसे अधिकारी का ध्यान इस तरफ गया और वो इसके खिलाफ अभियान भी चला रहा है। ये बताते हैं सारी बातें आपको आपके मॉर्निंग वाले शो में, क्योंकि सवाल आपकी और मेरी हेल्थ का है।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

इस सवाल ने तो मेरे मन में भी घर किया था कि भाई एक आईएएस ऑफिसर को इतना ज्यादा फोकस करने की क्या जरूरत है। फिर पैरेलल में भी ख्याल आया कि जाहिर सी बात है कुछ तो बहुत बड़ा होगा, तो चलिए क्या बड़ा है ये बताते हैं। दरअसल समोसा, पकौड़ी, पूरी और फ्रेंच फ्राइज हम सभी इन्हें पसंद करते हैं। बाहर हम कहीं निकलते हैं फ्रेंड्स के साथ में, घर पे हम मंगा लेते हैं कई बार ऑनलाइन, या कहीं निकले तो ये खा लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तेल में खाना बना है उसे पहले कितनी बार इस्तेमाल किया गया होगा। दरअसल बार बार इस्तेमाल किया हुआ तेल क्या होता है, कई होटल्स और दुकान में होता यह है कि एक ही तेल में बार बार तलना, पुराने तेल में नया तेल मिलाना, बचे हुए तेल को अगले दिन फिर इस्तेमाल कर लेना। सो ऐसा अक्सर पैसे बचाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये हमारी सेहत के लिए थोड़ा बहुत नहीं, बहुत नुकसानदेह हो सकता है। ये नुकसान कैसे पहुंचाता है? दरअसल हर बार तेल गर्म होने पर उसे हानिकारक तत्व बनने लगते हैं, जैसे ट्रांस फैट, फ्री रेडिकल्स और एल्डिहाइड्स। जितनी बार तेल दोबारा इस्तेमाल होगा उसकी जो क्वालिटी है उतनी ही ज्यादा खराब होती चली जाएगी। सो FSSAI और ICMR के हिसाब से बार बार गर्म किया गया तेल अपनी रासायनिक जो संरचना है वो बदल देता है और इसमें हानिकारक तत्व बनने लगते हैं। सो लंबे वक्त तक ऐसे तेल में खाना खाने से दिल की बीमारियां, बॉडी में सूजन और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ सकता है। सबसे बड़ी फिक्र की बात तो यह है कि हानिकारक तत्व तले हुए खाने में भी पहुंच जाते हैं, यानी सिर्फ खाना नहीं उसे बनाने वाला तेल भी उतना ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अब बात आती है कि ठीक है भाई, आपने बताया कि बार बार तले जो तेल है वो हानिकारक तत्व बन जाते हैं, नहीं खाना चाहिए। फिर आपने ये भी कहा कि IAS तुकाराम मुंडे इसके खिलाफ अभियान चला रहे हैं, वो सब सही है। लेकिन फिर आपका सवाल ये आता है कि मान लीजिए हम मार्केट में निकले हैं अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स या खुद ऐसे ही, तो फिर हम पहचानेंगे कैसे अगर हम जिस रेस्टोरेंट या दुकान से खा रहे होंगे? सवाल तो वाजिब है और जानना भी इसका ज़रूरी है ना? तो चलिए ये हम बताते हैं ना आपको कि आप पहचानेंगे कैसे, आखिर क्या पहचान होगी और किस तरह से आप जान पाएंगे कि भाई ये जो तेल है वो बार बार, कई बार, मल्टीपल टाइम्स यूज़ हो चुका है और अब आपके लिए सही नहीं है। सो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस बात को हम बता रहे हैं बस थोड़ी ही देर में। उससे पहले एंजॉय दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग।

0: खाने से कुछ तो हुआ है, पेट भी खराब हुआ है, हेल्थ भी खराब हुई है और स्किन पर भी सीधे सीधे प्रभाव पड़ा है। कैसे? बार बार मल्टीपल टाइम यूज्ड तेल के इस्तेमाल से। जी हाँ, सो फिलहाल बहुत ख़तरनाक होता है बार बार इस्तेमाल किया गया हुआ तेल। और अक्सर हमको ये रेस्टोरेंट या फिर स्ट्रीट फूड ठेले होटल्स कई जगह दिख जाता है इस तरह से। क्यों? क्योंकि पैसे बचाने के लिए तो किया जाता है लेकिन सेहत नहीं बच पाती बाबू मोशाय। और आपको पता है जब सेहत बचाने हम निकलते हैं तो पैसा कितना खर्च हो जाता है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। भैया समझ में आ गया, हमको हिसाब किताब ऐसा होता है जब हम इलाज करा लेते हैं। सो फिलहाल अब हम चलते हैं आपको ये बताने के लिए कि अगर आप भी निकले हुए हैं किसी होटल में, रेस्टोरेंट में या स्ट्रीट फूड कहीं पे भी आप खा रहे हो, सो कैसे आपको पहचानना है कि ये बार बार इस्तेमाल किया गया हुआ तेल है। लेट्स गो।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग कोडा विद योर फेवरेट आर्य खान।

हाँ जी, तो आपको हम बता दें कि जब कोई भी तेल बहुत काला दिखाई दे, क्योंकि यूजुअली तेल जो है इतना काला होता नहीं है, वो हल्का येलोइश होता है। अगर हम बात करें सरसों के तेल की, आपको ये पता है कि जब बहुत बार यूज्ड हो जाता है तो वो तेल जो है वो काला पड़ जाता है। दूसरी बात है, ज़्यादा धुआं छोड़े। सो फ्रेश तेल में इतना ज़्यादा धुआं नहीं छोड़ता है। आपको ये पता है, आप घर पे खाना बनते हुए देखते हैं वहाँ कैसा धुआं होता है, और बाहर अगर आप बनते हुए देखते हैं तो अगर ज़्यादा ही धुआं छोड़ रहा है वो तेल, तो इसका मतलब बार बार यूज्ड हो चुका है। तीसरा है कि ऊपर झाग बने। जी हाँ, ये तेल की पहचान होती है जो बार बार यूज्ड हो चुका होता है उस पर झाग बन रहा होता है। इसलिए झाग बन रहे तेल को आप समझ जाएं देखकर कि ये बार बार यूज्ड हो चुका तेल है। जली हुई बदबू आए। जी हाँ, यानी जो गंध आ रही हो वो जली हुई आए, तो भी आप समझ लीजिएगा कि ये बार बार यूज्ड किया गया तेल है। और जब खाना ज़रूरत से ज़्यादा तेल सोख ले तो सावधान हो जाइए। जिस फूड आइटम को आप खा रहे हैं, ब्रेड पकौड़ा हो, पकौड़ी हो, कुछ भी ऐसा हो, उसमें आप देख रहे हैं छोला भटूरा में कि बहुत ज़्यादा ही तेल उसमें सोख लिया है, तो इसका मतलब ये है कि बार बार यूज्ड तेल है ये, इससे सावधान होने की ज़रूरत है। सो फिलहाल महाराष्ट्र FDA ने क्या निर्देश दिए हैं रेस्टोरेंट्स और होटल में, अब खराब हो चुके तेल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये महाराष्ट्र में आ चुका है। FSSAI के फूड सेफ्टी नियमों का पालन करना ही होगा और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना होगा। सो नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जा सकने की बात कहता है महाराष्ट्र। फिलहाल वहाँ पर इसको लेकर के बहुत अच्छे से फोकस हो करके देखा जा रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम सभी को पता है कि भाई ये हमारी हेल्थ के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। सो इस्तेमाल हो चुका तेल दोबारा खाना बनाने में नहीं लगना चाहिए। इसे RUCO यानी रिपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल के तहत इकट्ठा करके बायोडीजल जैसे उपयोगी उत्पाद बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन खाने योग्य नहीं होता। आप ज़रा सोचिए, जो इसी जगह इस्तेमाल हो वो खाने योग्य क्या ही होगा। सो अगली बार जब भी आप तला हुआ खाना ऑर्डर करें तो सिर्फ ये मत देखिए खाना टेस्टी है या नहीं, बल्कि पूछिए क्या ये इस्तेमाल किए गए तेल में बनाया गया है। या फिर जवाब ना मिले तो ख़राब तेल का इस्तेमाल करने वाले रेस्टोरेंट्स पर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। एंड ऑब्वियस सी बात है, आपको हमने बता भी दिया था कि FSSAI की जो है वो एक ऐप भी है जिसके थ्रू अब आप शिकायत भी कर सकते हैं। सो फिलहाल ये एक बहुत बड़ा अभियान चला है महाराष्ट्र में। मुझे लगता है कि ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि भाई साहब, अगर हम ऐसे ही तेलों का इस्तेमाल करते रहें तो ये हमें बड़ा ही नुकसान पहुंचाने वाला है, और बार बार यूज्ड तेल बहुत ख़तरनाक हो जाता है, ये उतना ही जहरीला बनता जाता है जितनी बार ये रीयूज्ड हो रहा होता है। सो पूरी बातें कैसी लगी? क्या अब आप भी इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको भी तो अपनी सेहत का ख्याल है ही ना, ऑब्वियस सी बात है। तो चलिए हम लोग मिलकर के सेहत का ख्याल रखेंगे और ऐसी हानिकारक चीज़ों से बचने की पूरी पूरी कोशिश करते रहेंगे।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: हां जी, और एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान आपके अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। सो आइए भाई, इतनी सारी बातों के बीच कुछ और बातों का वक्त हो चला है और आपको सीधे ले चलते हैं उन्हीं बातों की जानिब।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो भाई आपको बताने वाले हैं WHO की इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में, जहां सीखना भी है और अर्निंग भी कर सकते हैं आप। जी हाँ, फिलहाल विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने हेल्थ इमरजेंसीज इंटर्नशिप 2026 के लिए आवेदन मांगे हैं। सो इस इंटर्नशिप में सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स को महामारी नियंत्रण, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं, मेडिकल रणनीतियों, डाटा विश्लेषण, रिपोर्ट तैयार करने और वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों को समझने का व्यवहारिक अनुभव मिलेगा। सो इसमें क्या है, पार्टिसिपेंट्स को इंटरनेशनल लेवल पर स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने की कार्य प्रणाली को करीब से समझने का मौका मिलेगा। ये प्रोग्राम सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सीखने और करियर बनाने का अच्छा मौका देता है। सो इसके लिए पात्रता और अवधि क्या है? सो इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स ने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उसके बराबर के संस्थान में फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट की डिग्री पूरी की हो, साथ ही वो मेडिसिन, बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, स्टेटिस, पब्लिक हेल्थ या इससे जुड़ी किसी भी विषय में पढ़ाई की हो। सो इस इंटर्नशिप की जो अवधि है वो 24 हफ्ते की होगी, जो 5 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर के 19 मार्च 2027 तक चलाई जाएगी। सो इसमें स्किल्स और एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट के पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, टीम के साथ काम करने की क्षमता और अलग अलग संस्कृतियों का सम्मान करने का दृष्टिकोण होना चाहिए। साथ ही वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम का सामान्य ज्ञान ज़रूरी है। सो स्टैटिकल्स सॉफ्टवेयर्स की जानकारी, रिसर्च, डेटा एनालिसिस और रिपोर्ट्स तैयार करने का जो एक्सपीरियंस है वो इसके लिए एक्स्ट्रा फ़ायदा माना जाएगा। इंग्लिश भाषा पर अच्छी पकड़ ज़रूरी है, जबकि फ्रेंच या संयुक्त राष्ट्र की बाकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इसका ज्ञान होने पर कैंडिडेट्स को ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। सो आर्थिक सहायता की अगर हम बात करें तो इसमें सेलेक्ट होने वाले इंटर्न को रहने खाने खर्च के लिए मासिक लिविंग अलाउंस मिलेगा। जिनेवा में ये अलाउंस ज़्यादा से ज़्यादा 739 स्विस फ्रैंक यानी CHF से 1680 CHF प्रतिमाह हो सकता है, जो कैंडिडेट की स्थिति और निवास स्थान पर निर्भर करता है। इसके अलावा इंटर्न को हर काम के लिए दिन में 20 CHF का लंच वाउचर और दुर्घटना और मेडिकल इंश्योरेंस की फैसिलिटी दी जाएगी। सो अप्लाई कैसे कर सकते हैं? जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो WHO की ऑफिशियल करियर पोर्टल पर जा करके इस पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए अपनी प्रोफाइल पूरी कर सकते हैं और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके 31 जुलाई 2026 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। सो इस तरह से अगर आप भी चाहें तो WHO में इंटर्नशिप का आपको मौका है, जहां आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है एंड ज़ाहिर है कि यहां अर्निंग भी होगी। तो जो भी लोग एलिजिबल हैं इसके लिए वो जा सकते हैं, इसमें कोशिश कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एंड फिलहाल आप लोगों ने, चूँकि हमने ऑयल के बारे में बताया था जिस पर आप लोगों ने अपनी ओपिनियन भी दी है, एंड यस, क्या है भाई ओपिनियंस आपकी? सो प्रीति जी ने सबसे पहले तो बोला कि जल्दी जल्दी बताइए नकली तेल की पहचान, मतलब नकली तेल नहीं, तेल भले ही असली हो लेकिन बार बार यूज्ड तेल की हम बात कर रहे थे, किस तरह से ये जहर का काम करने लग जाता है। सबलू सावंत ने बताया है कि ओरिजिनल तेल कोई भी कंपनी से नहीं होता, ओरिजिनल तेल खाने के लिए खुद का सरसों का तेल मशीन से पिरवाना पड़ता है। बिल्कुल, अगर आप चाहे तो, अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप तेल पिरवा कर ही ले, जहां आपको सेटिस्फैक्शन और जहां सच में जांच करने पर सही पाया जाए वही आप चूज़ करिए। एंड बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच प्रीति जी। एंड बोला है कि भाई इन्होंने मार्केटिंग मोमोज, चाउमीन, बर्गर कुछ भी नहीं खाते हैं, चाय भी नहीं पीते हैं मार्केट में। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर आप थोड़ा सा बचने की कोशिश कर रहे हैं तो दैट्स वेरी गुड। एंड फिलहाल अब वक्त है आपको ले चलने का अगले म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।
सो क्या है अगला म्यूजिकल ब्रेक, जबरदस्त है जनाब। सो चलिए आपको हम ले चलते हैं और उसके बाद जब वापस लौटेंगे तो आपसे बातचीत का सिलसिला भी जारी रहने वाला है और इवन आपकी तरफ से हमको कंटेंट भी मिल गया है। सो यस, अगर आप भी कंटेंट लिखते हैं, कोई शेर, कोई गज़ल, कोई कविता, कोई जोक, कोई शॉर्ट स्टोरी, तो हमें आप इंस्टाग्राम पर RJ_ यानी कि नीचे वाला डैश ADNAA के साथ भेज सकते हैं, या फिर आप हमको फेसबुक पर ADNAN AHMAD इस पर भी आप हमको सर्च करके मैसेंजर पर अपना कंटेंट और स्थान का नाम भेज सकते हैं और आपके कंटेंट को हम रिसाइट करेंगे इसी शो में आखिर में। आई होप कि आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा और फिलहाल चलिए इस गाने को एंजॉय करते हैं, वापस से आते हैं।

0: अब हर शाम महसूस होती है और भी खास, जब होती है गोंडा की हस्तियों से आपकी मुलाकात। हर शाम हम आपसे करवाते हैं उन हस्तियों की मुलाकात जो होते हैं अपने क्षेत्र के खास। सुनना ना भूले प्रोग्राम गोधुली हर शाम 5 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम पर।
1: हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं, क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियां यानी पानी से होने वाली बीमारियां, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियां हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
2: ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 72 34 020 202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: हाँ जी, तो भाई हमने जो मैसेजेस पढ़े थे आपके, उसके बाद भी कुछ और मैसेजेस आगे हैं उनको बताने वाले हैं, और एक आए हुए कंटेंट को भी आप तक हम जरूर पहुंचाने वाले हैं।
2: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो भाई काफी सारे मैसेजेस आ चुके हैं, थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट मैसेज है मुस्तफ़ा फ्रॉम सऊदी का, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। कमल नैन जी हमारे साथ में हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। और धर्मेश त्रिपाठी जी आपका स्वागत है, वेलकम है गोंडा एफएम 89.6 एफएम पर। थैंक यू सो मच टू एवरीवन कि भाई इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया और इन्फॉर्मेशन्स भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, इसके लिए तो हम शुक्रगुजार हैं ही। क्या होता है ना कि बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें जब हाईलाइट होके आती तो हम तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंस समझ पाते हैं, क्योंकि हमारे आसपास ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो हमारे आंखों के सामने हो रही होती है, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा जब तक हम प्रॉपर जान नहीं पाते तब तक नहीं लग पाता है। सो इसलिए इसको जानना भी समटाइम्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो इस वक्त मौजूद 89.6 एफएम के शो में आप सभी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं आपके अपने मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, आप ही के अपने रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम पर। और अब वक्त है आपको ले चलने का आज के कंटेंट की तरफ और बताने का कि भाई ये कंटेंट किसने भेजा है और इस कंटेंट में क्या है। तो आपको हम बता दें कि फिलहाल ये कंटेंट जो आया है ये हमारी प्रीति जी की तरफ से आया है बहराइच से, और आपने लिखा है मीठे वचन। ओके, चलिए देखते हैं। बेशुमार हो धन दौलत चाहे हो कोई अरबपति, सब कुछ यहीं धरा का धरा इस जमी पे धरा रह जाएगा, संग में सिर्फ सदव्यवहार और सभी का आशीर्वाद ही साथ साथ उस जहां यानी परलोक में जाएगा, जहां से सभी जो बोलेगा मीठे मीठे वचन, जाने के बाद भी वो इंसान सभी के दिलों में यादगार बनकर सदा के लिए इस जहां में रह जाएंगे। इसलिए विद्वानों ने कहा भी है कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। क्या बात है। सो ये प्रीति जी हैं बहराइच से, सुनने वाली हमारी श्रोता रेगुलर जुड़ती हैं, और आज बड़ी ही प्यारी ये आपने बात कही है मीठे वचन, एंड थैंक यू सो मच कि आप लिखती भी हैं, हम तक पहुंचाती भी हैं, और ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि आप लिखें भी और हम तक पहुंचाएं भी। सो फिलहाल आपसे भी हम यही कहेंगे कि अगर आप भी लिखते हैं, अपने जज्बातों को पिरोते हैं शब्दों में अपनी डायरी के पेजेस पर, तो हम तक भी पहुँचा सकते हैं फेसबुक मैसेंजर पर भेजकर या फिर इंस्टाग्राम पर RJ_ADNAAN के ऊपर, यहां हम आपको मिल जाते हैं और यहीं पर आप हम तक पहुंचा सकते हैं अपने लिखे लफ्ज। फिलहाल आज का शो कैसा रहा ये हमको कमेंट करके जरूर बताइए, मुझे तो बहुत मजा आया, क्या आपने एंजॉय किया? और जाते जाते ये सॉन्ग जरूर एंजॉय करिए और बने रहिए अपने गोंडा FM 89.6 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
4: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में GMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
3: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
4: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
3: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
5: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
7: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
7: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
8: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन। पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
9: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से TV, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा TV एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
10: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
11: मतलब?
10: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-89-14416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 144

0: 16 जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
1: मैं ममता पांडे, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 89.6 FM पर आपका अपना पसंदीदा शो गांव की गूंज, और मैं हूं आपकी दोस्त जया।
3: और मैं हूं समता। आज की शाम थोड़ी खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं संगीत की उस विधा की जिसमें प्यार भी है, शरारत भी है और थोड़ी सी नजाकत भी है।
4: जी हाँ, आज हमारा विषय ठुमरी है। ठुमरी यानी कि ऐसा गाना जो दिल से निकलकर सीधे दिल तक पहुंचता है। और जया, मुझे लगता है ठुमरी सुनकर कुछ लोगों को अपनी पुरानी मोहब्बत भी याद आ जाती है।
2: अरे गीता दी, ये आप अपने अनुभव से बोल रही हैं क्या?
3: ठुमरी असल में उत्तर भारत की एक बहुत ही मधुर शास्त्रीय गायन शैली है जिसका संबंध खास तौर से बनारस और लखनऊ से माना जाता है।
4: ठुमरी की खास बात ये है कि इसमें भाव बहुत होते हैं। गायक या गायिका अपने चेहरे और आवाज से कहानी सुनाते हैं। यानी अगर दिल में भाव नहीं है तो ठुमरी अधूरी लगती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत ठुमरी से।

0: आप लोग जानते हैं ठुमरी की शुरुआत लगभग 18वीं सदी में मानी जाती है और लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह ने इसे बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था।
1: हाँ, और इसीलिए तो कहते हैं कि लखनऊ की तहजीब और ठुमरी दोनों में बड़ी नजाकत होती है। ठुमरी के बोल अक्सर राधा कृष्ण की प्रेम कथाओं पर आधारित होती है,
0: जैसे राधा का शाम से रूठना या शाम का मनाना।
2: हाँ, ड्रामा तो होता ही है, लेकिन बेहद मीठा ड्रामा। और पता है, ठुमरी गायन में शब्दों के भाव को सुरों के जरिए बहुत ही सूक्ष्म तरीके से उभारा जाता है। इसमें कजरी, चैती, होली, झूला गीत जैसे स्थानीय लोक रूपों का गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसमें भक्ति और श्रृंगार यानी प्रेम का भी सुंदर मिश्रण होता है।
1: इसे पूरब अंग की ठुमरी के नाम से भी जाना जाता है। बनारस की ठुमरी में उत्तर प्रदेश के लोक गीतों की मिठास और गंगा तट की आध्यात्मिकता का संगम मिलता है।
0: बिल्कुल, इसीलिए ठुमरी के साथ कथक नृत्य भी होता है। किरण दी, आप प्लीज थोड़ा सा ये गीत गुनगुना कर कथक भी दिखा दो ना।
1: अच्छा, बताती हूँ बाबा, बताती हूँ। लखनऊ की ठुमरी का विकास अवध के नवाबों, विशेष रूप से नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ था। लखनऊ की ठुमरी में शब्दों को लय के साथ बांट कर गाने पर जोर दिया जाता है।
2: और हाँ किरण, लखनऊ की ठुमरी का कथक नृत्य के साथ गहरा संबंध है। नृत्य के साथ अभिनय के माध्यम से ठुमरी का अर्थ समझाया जाता है।

0: तो ठुमरी गाने से पहले मैं ठुमरी के बारे में कुछ और बताना चाहती हूँ। भारतीय ठुमरी अर्धशास्त्रीय संगीत यानी सेमी क्लासिकल की एक बेहद भावपूर्ण शैली है, जिसे भारतीय शास्त्रीय संगीत की कविता भी कहा जाता है। इसमें राग के व्याकरण से ज्यादा महत्व भाव और शब्दों के अर्थ को दिया जाता है। कुछ समझ में आया समता जी और जया जी?
1: हाँ हाँ किरण दी, बहुत अच्छे ढंग से आपने समझाया है, तो क्यों नहीं समझ में आएगी हम लोगों को, क्यों समता दी?
2: अच्छा किरण दी, ये बताइए कि अगर आपसे ठुमरी गाने के लिए कहा जाए तो आप कौन सी ठुमरी गाएंगी?
0: मैं तो गाऊंगी कि मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोरी नाजुक कलैया मरोड़ गयो रे, मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे। वैसे जानती हो ठुमरी गाना बहुत आसान नहीं होता, इसको आवाज की मिठास के साथ हाव भाव और अभिनय भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
3: यानी आधा गाना और आधा अभिनय।
2: किरण दी, बनारस घराने की ठुमरी के बारे में आपने समझाया, अब थोड़ा लखनऊ घराने के बारे में भी बता दीजिए ना।
1: हाँ किरण दी प्लीज, आपकी ठुमरी और कथक ने नेहा के संगीत में रंग जमा दिया था, और तो और सब लोग अपना मोबाइल निकाल कर आपका वीडियो बना रहे थे।
0: अच्छा बाबा, करती हूँ, सुनाती भी हूँ और थोड़ा सा कथक भी करके दिखाती हूँ, आप लोग तो बस पीछे ही पड़ जाते हैं। सुनिए।

0: समता दी, एक बात बताइए, अगर ठुमरी की चर्चा हो और बनारस का नाम ना आए तो क्या वो चर्चा पूरी मानी जाएगी? नहीं ना?
1: बिल्कुल नहीं। ठुमरी और बनारस का रिश्ता तो चाय और इलायची जैसा है, एक दूसरे के बिना स्वाद बेहद अधूरा सा लगता है।
2: किरण, बिल्कुल सही कहा तुमने। बनारस घराने की ठुमरी में जो गहराई और भाव है वो सुनने वालों को सीधे दिल तक छू जाता है।
3: हाँ हाँ, और बनारस की गलियों में तो सचमुच ऐसा लगता है जैसे संगीत खुद सांस ले रहा हो।
0: हाँ, अगर आप शाम के समय गंगा घाट पर खड़े हो, हल्की हल्की हवा चल रही हो, आरती की घंटियां बज रही हो और कोई धीमे धीमे ठुमरी गुनगुना रहा हो, तो बस समझ लीजिएगा कि वो पल यादों में सदा के लिए बस गया है।
1: ठुमरी में कभी राधा का इंतजार होता है तो कभी कृष्ण की शरारत होती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे गायक अपनी ही कहानी सुना रहा है।
2: तो चलिए श्रोताओं, अब इसी बनारसी माहौल के साथ सुनते हैं एक खूबसूरत सी ठुमरी।

0: मैं ममता पांडे, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 89.6 FM पर आपका अपना पसंदीदा शो गांव की गूंज, और मैं हूं आपकी दोस्त जया।
2: और मैं हूं समता। आज की शाम थोड़ी खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं संगीत की उस विधा की जिसमें प्यार भी है, शरारत भी है और थोड़ी सी नजाकत भी है।
3: जी हाँ, आज हमारा विषय ठुमरी है। ठुमरी यानी कि ऐसा गाना जो दिल से निकलकर सीधे दिल तक पहुंचता है। और जया, मुझे लगता है ठुमरी सुनकर कुछ लोगों को अपनी पुरानी मोहब्बत भी याद आ जाती है।
1: अरे गीता दी, ये आप अपने अनुभव से बोल रही हैं क्या?
2: ठुमरी असल में उत्तर भारत की एक बहुत ही मधुर शास्त्रीय गायन शैली है जिसका संबंध खास तौर से बनारस और लखनऊ से माना जाता है।
3: ठुमरी की खास बात ये है कि इसमें भाव बहुत होते हैं। गायक या गायिका अपने चेहरे और आवाज से कहानी सुनाते हैं। यानी अगर दिल में भाव नहीं है तो ठुमरी अधूरी लगती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत ठुमरी से।

0: आप लोग जानते हैं, ठुमरी की शुरुआत लगभग 18वीं सदी में मानी जाती है और लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह ने इसे बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था।
1: हाँ, और इसीलिए तो कहते हैं कि लखनऊ की तहजीब और ठुमरी दोनों में बड़ी नजाकत होती है। ठुमरी के बोल अक्सर राधा कृष्ण की प्रेम कथाओं पर आधारित होती है,
0: जैसे राधा का शाम से रूठना या शाम का मनाना।
2: हाँ, ड्रामा तो होता ही है, लेकिन बेहद मीठा ड्रामा। और पता है, ठुमरी गायन में शब्दों के भाव को सुरों के जरिए बहुत ही सूक्ष्म तरीके से उभारा जाता है। इसमें कजरी, चैती, होली, झूला गीत जैसे स्थानीय लोक रूपों का गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसमें भक्ति और श्रृंगार यानी प्रेम का भी सुंदर मिश्रण होता है।
1: इसे पूरब अंग की ठुमरी के नाम से भी जाना जाता है। बनारस की ठुमरी में उत्तर प्रदेश के लोक गीतों की मिठास और गंगा तट की आध्यात्मिकता का संगम मिलता है।
0: बिल्कुल, इसीलिए ठुमरी के साथ कथक नृत्य भी होता है। किरण दी, आप प्लीज थोड़ा सा ये गीत गुनगुना कर कथक भी दिखा दो ना।
1: अच्छा, बताती हूँ बाबा, बताती हूँ। लखनऊ की ठुमरी का विकास अवध के नवाबों, विशेष रूप से नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ था। लखनऊ की ठुमरी में शब्दों को लय के साथ बांट कर गाने पर जोर दिया जाता है।
2: और हाँ किरण, लखनऊ की ठुमरी का कथक नृत्य के साथ गहरा संबंध है। नृत्य के साथ अभिनय के माध्यम से ठुमरी का अर्थ समझाया जाता है।

0: तो ठुमरी गाने से पहले मैं ठुमरी के बारे में कुछ और बताना चाहती हूँ। भारतीय ठुमरी अर्धशास्त्रीय संगीत यानी सेमी क्लासिकल की एक बेहद भावपूर्ण शैली है, जिसे भारतीय शास्त्रीय संगीत की कविता भी कहा जाता है। इसमें राग के व्याकरण से ज्यादा महत्व भाव और शब्दों के अर्थ को दिया जाता है। कुछ समझ में आया समता जी और जया जी?
1: हाँ हाँ किरण दी, बहुत अच्छे ढंग से आपने समझाया है, तो क्यों नहीं समझ में आएगी हम लोगों को, क्यों समता दी?
2: अच्छा किरण दी, ये बताइए कि अगर आपसे ठुमरी गाने के लिए कहा जाए तो आप कौन सी ठुमरी गाएंगी?
0: मैं तो गाऊंगी कि मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोरी नाजुक कलैया मरोड़ गयो रे, मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे। वैसे जानती हो ठुमरी गाना बहुत आसान नहीं होता, इसको आवाज की मिठास के साथ हाव भाव और अभिनय भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
3: यानी आधा गाना और आधा अभिनय।
2: किरण दी, बनारस घराने की ठुमरी के बारे में आपने समझाया, अब थोड़ा लखनऊ घराने के बारे में भी बता दीजिए ना।
1: हाँ किरण दी प्लीज, आपकी ठुमरी और कथक ने नेहा के संगीत में रंग जमा दिया था, और तो और सब लोग अपना मोबाइल निकाल कर आपका वीडियो बना रहे थे।
0: अच्छा बाबा, करती हूँ, सुनाती भी हूँ और थोड़ा सा कथक भी करके दिखाती हूँ, आप लोग तो बस पीछे ही पड़ जाते हैं। सुनिए।

0: समता दी, एक बात बताइए, अगर ठुमरी की चर्चा हो और बनारस का नाम ना आए तो क्या वो चर्चा पूरी मानी जाएगी? नहीं ना?
1: बिल्कुल नहीं। ठुमरी और बनारस का रिश्ता तो चाय और इलायची जैसा है, एक दूसरे के बिना स्वाद बेहद अधूरा सा लगता है।
2: किरण, बिल्कुल सही कहा तुमने। बनारस घराने की ठुमरी में जो गहराई और भाव है वो सुनने वालों को सीधे दिल तक छू जाता है।
3: हाँ हाँ, और बनारस की गलियों में तो सचमुच ऐसा लगता है जैसे संगीत खुद सांस ले रहा हो।
0: हाँ, अगर आप शाम के समय गंगा घाट पर खड़े हो, हल्की हल्की हवा चल रही हो, आरती की घंटियां बज रही हो और कोई धीमे धीमे ठुमरी गुनगुना रहा हो तो बस समझ लीजिएगा कि वो पल यादों में सदा के लिए बस गया है।
1: ठुमरी में कभी राधा का इंतजार होता है तो कभी कृष्ण की शरारत होती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे गायक अपनी ही कहानी सुना रहा है।
2: तो चलिए श्रोताओं, अब इसी बनारसी माहौल के साथ सुनते हैं एक खूबसूरत सी ठुमरी।

हाँ जी दोस्तों, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आशा करते हो कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी का आनंद भी उठा रहे होंगे। जी हाँ भाई, जिंदगी का आनंद उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा छोटी है। अगर आप इसको मिस कर देंगे तो शायद आप अपने बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा पछताएं। और अभी हम जो गाना सुन रहे थे, बदतमीज़ दिल जो की है ये जवानी है दीवानी मूवी से, भाई देखिए, हमें मुझे ऐसा लगता है कि दिल को हमेशा बदतमीज़ ही होना चाहिए भाई, इसलिए क्योंकि देखिए, जो इंसान सीधा बना रहता है, जिसका दिल बहुत साफ रहता है, उस बेचारे को हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आपने नोटिस किया होगा कि हमारे घर में जो बड़े होंगे या आपके साथ खुद, हमेशा ये स्कैम किया जाता है कि अरे बेटा तुम तो अच्छे हो, नेक दिल इंसान हो, तुम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। तो क्या नेक दिल होना इतना बुरा है कि हमें हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है? तो मुझे लगता है भैया, एडजस्टमेंट करने से अच्छा है कि हम बदतमीज़ दिल वाले इंसान बन जाएं और

ज़बरदस्ती अपने हक का चीज़ छीन ले। हक की चीज़ ज़बरदस्ती का मतलब ये नहीं कि कोई क्राइम करें, बल्कि जैसे अगर कह सकते हैं कि लोग हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने कहें और हमारा ही हक हम हमसे छीन रहे हैं, तो हमें अपनी चीज़ें लेनी आनी चाहिए। जी हाँ, अब भाई देखिए, आज तो दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इन्जॉयबल है और बहुत ही फ़न वाला डे है। आज है थर्सडे और थर्सडे के दिन हमेशा की तरह आ चुकी हूँ मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त आरजे आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम ज्ञानस्त्री लाइव। जी हाँ, देखिए अभी मैं सोच रही थी कि हम सब जब कभी कुछ अच्छे की बात करते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव चीज़ें देखते हैं, तो हमें लगता है कि अगर हम इंग्लिश बोलेंगे तो हम कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगेंगे, हम मैनरफुल लगेंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लोग पसंद करेंगे कि भाई इसकी इंग्लिश तो देखो कितनी अच्छी है। लेकिन सबसे बड़ी कमी जो मैंने आज नोटिस की जब मैं आ रही थी कि भैया इंग्लिश जो बोलने वाले होते हैं, स्पेशली जो इंग्लिश मीडियम वाले लोग होते हैं, जिन बच्चों ने CBSE से पढ़ाई कर रखी है, उनमें ये देखा जाता है, आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो हिंदी में थोड़े से कच्चे रह जाते हैं लेकिन इंग्लिश में बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। अब इंग्लिश में पक्के होने का मतलब ये थोड़ा ना कि आप हिंदी को बिल्कुल दरकिनार कर दें, बल्कि हिंदी आपको ज़रूर आनी चाहिए। और मैं भी खुद, क्योंकि मैं भी CBSE से हूँ, मुझे ये मैंने भी रियलाइज़ किया है कि हमारी हिंदी कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है, हमें सही से चीज़ों की पहचान नहीं हो पाती है, सही शब्द हम लोग बोल नहीं पाते और कहीं ना कहीं उसको जस्ट एक सब्जेक्ट समझ के हम लोग पढ़ते हैं बल्कि एक लैंग्वेज समझ के नहीं। तो हिंदी भी उतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी इम्पॉर्टेंट इंग्लिश है। तो अगर आप पढ़ते हैं या आपके घर के बच्चे पढ़ते हैं तो कोशिश करें कि उन्हें दोनों सब्जेक्ट, दोनों लैंग्वेजेस अच्छे से पढ़ाएं और समझाएं। जहां इंग्लिश जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज है, वहीं आपकी हिंदी पूरे इंडिया में सुनी जाएगी और समझी जाएगी। तो दोनों ही उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस बहुत ही अच्छी सोच के साथ, क्योंकि भाई मैंने सोचा है तो मेरी सोच तो भाई बहुत ही अच्छी है, और आप भी अगर कुछ सोच रहे हैं तो जल्दी से चैट बॉक्स में आके बताएं, क्योंकि आपकी भी जो सोच है वो हमें सुनने में बड़ा मज़ा आएगा और हो सकता है कि अगर वो हमारे काम की हो तो हम अपना भी लें। चलते हैं आज के विषय की तरफ, क्योंकि आज का विषय बहुत ज़्यादा चटपटा होने वाला है। जी हाँ, आज थर्सडे है और आज हम बात करते हैं बॉलीवुड की खबर की। भाई देखिए, बॉलीवुड से तो बहुत सारी खबर है मेरे पास, मैं तो यही सोच रही हूँ कि भैया हमारा एक घंटा कब गुजर जाता है हमें पता ही नहीं चलता। चलते हैं हम सीधा अपनी पहली न्यूज़ की तरफ। देखिए, अगर आप थोड़ा मोह माया से दूर हो चुके हैं, यानी कि ये प्यार मोहब्बत से थोड़ा सा अलग हो चुके हैं, पैसे वैसे पे इतना भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में फ़न चाहते हैं, इन्जॉय करना चाहते हैं, तो आपको ऑब्वियस सी बात है, आपको रोम कॉम की जगह आपको ओनली कॉमेडी मूवी ही देखनी चाहिए, क्योंकि वो आपके दिल को खुश करती है, आपके अंदर का बच्चा जगाती है। और अगर आपको बचपन में कार्टून देखना बहुत ज़्यादा पसंद था, तो एक बहुत ही धमाकेदार मूवी बॉलीवुड में रिलीज़ हुई है जो आपके अंदर के बच्चे को जगा देगी। भैया हमारे अजय देवगन, अंजलि आनंद, रितेश देशमुख, संजीदा, अरशद वारिसी और ईशा गुप्ता जैसे बहुत ही फेमस और बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स ने काम किया है धमाल 4 में। जी हाँ, धमाल 4 जो कि एक ऐसी मूवी है जो बिना लॉजिक पे बेस है, मतलब आप पूरी मूवी देखेंगे और आप यही सोचेंगे कि यहाँ पे लॉजिक कहाँ है। एक ऐसी इलॉजिकल मूवी जो समझ से परे है, पर आपके अंदर के बच्चे को जगाना, आपको हंसाना, आपको खुश करना और आपको इंजॉय करवाना इसका सबसे पहला काम है। भैया इस मूवी की अगर हम बात करें तो ये कॉमेडी मूवी थिएटर्स में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चल रही है। ओपनिंग वीकेंड में फिल्म ने बहुत ही अच्छा पैसा कमाया और फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी ओपनिंग बन गई। जी हाँ, लोग फैमिली के साथ जाकर इसको देख रहे हैं और खुल के हंसते हुए आते हैं। भाई कुछ लोग तो इतना हंस रहे हैं कि हंसते हंसते उनकी आंखों से आंसू निकल आ रहे हैं। इसीलिए मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन दोनों जगह इसका शो हाउसफुल रहा। तो अगर आप भी धमाल के बाकी मूवीज़ को बहुत पसंद करते हैं तो इस मूवी को भी हम आपको ज़रूर रेकमेंड करेंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो कि है अल्फा से। जी हाँ, अल्फा जिसमें हमारी आलिया भट्ट और शर्वरी ने काम किया है। भैया देखिए, शर्वरी और आलिया भट्ट तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है इस बीच, क्योंकि आलिया भट्ट ने ऑलरेडी बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ की हुई हैं और शर्वरी ने रिसेंट में वापस आऊँगा मूवी में बहुत बेहतर काम किया है। साथ ही साथ आलिया भट्ट की फ़िलहाल सोशल मीडिया प्रेजेंस भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। तो भैया आलिया भट्ट की अल्फा का सीन थोड़ा सा मिक्स्ड हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ कि भैया आखिर हुआ क्या। देखिए, शुरू के पहले कुछ दिन में इसकी कलेक्शन यानी कि पैसे जो इतने कमाए हैं वो बहुत ही अच्छे रहे, इसकी हाइप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी और लोगों ने इसे पसंद किया। लेकिन जैसे जैसे वीकेंड आया तब उसके बाद नंबर्स गिरने लगे, यानी कि जो ग्राफ है ना वो थोड़ा सा नीचे आने लगा। इसीलिए ज़्यादा लोग जब इसको अब देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसकी हाइप बहुत ज़्यादा बना दी गई थी, उतनी अच्छी है नहीं और उतना सॉलिड इसमें वर्क
की थोड़ी सी कमी रही। ऑडियंस का रिएक्शन बहुत ज़्यादा मिक्स था, किसी को बहुत कुछ पसंद आया, कुछ को स्पाई एक्शंस बहुत ज़्यादा पसंद आया, कुछ को स्टोरी थोड़ी सी हैवी लगी और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगी। भाई आपका क्या मानना है अगर आपने अल्फा देखी है? मेरा मानना तो ये है कि भैया पहली बार ये कोई मूवी रिलीज़ हुई है जिसमें लड़कियाँ एक स्पाई हैं, तो हमें ज़रूर देखना चाहिए। और मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद आई मूवी। आप भी जाइए, आप भी देखिए और अपने रिव्यूज़ हमारे साथ ज़रूर साझा करिए। अब चलेंगे हम हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी से जुड़ी हुई है। क्या है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। छोटे से ब्रेक यानी म्यूजिकल ब्रेक। म्यूज़िक सुनेंगे बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार, एनर्जेटिक और अपने दिमाग को बिल्कुल फ्रेश कर लेंगे। तो भैया वक्त आपका ही हो चुका है, यानी 12 बज चुके हैं, अब आपका शो स्टार्ट हो चुका है। दुनिया भर की स्ट्रेस, थकान, एंजाइटी को साइड में रख के ये शो एंजॉय करिए और अपने आप को खुश करने की पूरी कोशिश करिए। स्टे ट्यून्ड।

हां जी दोस्तों, इस बहुत ही प्यारे गाने के साथ आ चुकी हूँ मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आयुषी, लेके आपको अपना प्रोग्राम ज्ञानस्थी लाइव। और भाई आज हम एंजॉय कर रहे हैं कुछ न्यूज़ की, कुछ क्यों, क्योंकि भाई बहुत कुछ है, पर बहुत कुछ में बहुत बताने के लिए समय भी तो ज़्यादा चाहिए और समय थोड़ा सा हमारे पास सीमित है क्योंकि एक ही घंटा हम साथ रहते हैं, लेकिन एंजॉय करना बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करेंगे भाई, बात करेंगे। लेकिन चलते हैं पहले एक बहुत ही बड़ी खबर के साथ। देखिए भैया, जहाँ कहते हैं ना कि जहाँ चार बर्तन रहते हैं वहाँ खनकते ज़रूर हैं, कोई ना कोई एक दूसरे से लड़के बजेगा ज़रूर, बिल्कुल सेम बॉलीवुड में भी चल रहा है। आपको याद होगा क्वीन मूवी, जी हाँ क्वीन, जिसमें कंगना रनौत ने एक बहुत ही बेहतरीन निभाया था और ये भी बताया था कि जिंदगी जीने के लिए हमें, या फिर उनका जो मेन मतलब ये था कि लड़कियों को किसी लड़की की जरूरत नहीं है और हमें प्यार को प्यार की तरह रखना चाहिए, उसके लिए कभी भी एकदम भीख नहीं मांगनी चाहिए और अपनी रिस्पेक्ट को सबसे ज्यादा आगे रखना चाहिए। वो एक ऐसी महिला का रोल निभाई जिन्होंने बिना शादी के हनीमून घूमने और हनीमून के लिए वो चली गई बाहर देश में, वो भी फर्स्ट टाइम अकेले। जी हाँ, ये आपको याद आ गया होगा कि मैं कौन सी मूवी की बात कर रही हूँ। अब भाई उसी की दूसरी मूवी बन रही है यानी कि क्वीन 2, लेकिन बनने से पहले हो गया इस पे बहुत ही बड़ी सी कंट्रोवर्सी और लीगल, जी हाँ लीगल केस चढ़ गया हमारी क्वीन 2 के ऊपर। अब क्वीन 2 में कौन रोल कर रहा है ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले इस मसले के बारे में सुनते कि आखिर हुआ क्या है। देखिए फिल्मी कोर्ट रूम ड्रामा भी चालू हो चुका है। क्वीन 2 को लेकर ओरिजिनल मेकर्स और नई टीम के बीच बहुत बड़ी झड़प हो गई है, यानी कि उनके उन दोनों के बीच राइट्स का पंगा पड़ रहा है कि सबके क्या राइट्स हैं। पहले प्रोड्यूसर का कहना है कि सीक्वल बनने के लिए उन्हें प्रॉपर परमिशन और डील क्लियर करनी होगी जो कि अभी तक नहीं हुई है, इसीलिए ये जो मूवी है ये बनना शुरू हुई थी लेकिन इसका काम रोक दिया गया है। इस केस में इंडस्ट्री को फिर से याद दिलाया कि भाई क्रिएटिव आइडिया होना अच्छी बात है लेकिन साथ ही साथ लीगल पेपर वर्क होना भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट मूवी की तरफ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, क्या है मैं बताती हूँ भैया, जो राजेश शर्मा हैं उनकी हेल्थ को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हो रही है। मैं बताती हूँ भैया, एक सीरियस इंसिडेंट भी हुआ है। एक्टर राजेश शर्मा को शूट के दौरान एक इंसेक्ट ने काट लिया। कीड़ा बहुत छोटा था लेकिन उसका असर इतना बड़ा हुआ कि उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। इस इवेंट के बाद लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सेट पर सेफ्टी, मेडिकल बैकअप और इमरजेंसी हेल्प तैयार रहनी चाहिए। ग्लैमर के पीछे भी प्रैक्टिकल साइड काफ़ी ज़्यादा टफ हो रही है। आपको लगता होगा ना कि भैया ये हमारे जो एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, ये तो बड़ी आराम की ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे वो कोई एक्टिंग करते हैं या कोई मूवी करते हैं उसके साथ साथ वो काफ़ी सारी चीज़ों को फेस भी करते हैं। अभी रिसेंट में हमारी रश्मिका मंदाना जो कि इंडिया की क्रश रह चुकी हैं, उनका एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं सेंसिटिव पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, जिसमें वो एक मूवी का जो है सीन जो है शूट कर रही हैं और उनके पीठ पर बहुत गहरा जख्म हो गया है शूटिंग की वजह से और उसको रिकवर होने में 2 से 3 महीना लग जाएगा। लेकिन रश्मिका ने हार नहीं मानी है, उन्होंने एक्टिंग को रोका नहीं है, बस उन्होंने अपने डिज़ाइनर से कहा है कि कपड़े कुछ ऐसे डिज़ाइन करो कि ये स्कार्स मेरे फैंस को ना दिखे। अब आपको लग रहा होगा कि भैया एक्टिंग भी बहुत ही मेहनत वाला काम है, एक्टिंग इतनी ईजी नहीं है जितना हमें लगता है। उसके बाद भाई बहुत सारी नई मूवीज़ ऐसी बन रही हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली हैं। जी हाँ, आपको सौरव गांगुली तो याद होंगे ना, चलिए याद करिए आप, तब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आएंगे कि सौरव गांगुली को लेकर के बॉलीवुड में क्या खबर चल रही है। तब तक के लिए एंजॉय करिए बहुत ही प्यारा सा गाना, आते हैं इस ब्रेक के बाद और आपसे खूब सारी बातें भी करेंगे।

हाँ जी दोस्तों, इस बहुत ही बेहतरीन गाने को एंजॉय करने से पहले चलते हैं हमारे न्यूज़ की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होने वाली है। जी हाँ भाई, क्रिकेट लवर के लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी वाली न्यूज़ है। भाई अगर आप क्रिकेट लवर हैं तो सौरव गांगुली को तो आप ज़रूर जानते होंगे, जिन्होंने भैया अपनी एक इतनी भयंकर और इतनी स्ट्रांग छाप छोड़ी है कि उनका नाम आज भी कोई भी नहीं मिटा पाया है क्रिकेट इंडस्ट्री से। भैया देखिए, लेकिन उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है जो एक क्रिकेट लवर है। देखिए भाई, राजकुमार राव ने एक बहुत ही प्यारा और लोगों के दिल पर राज करने वाले लुक को सबके सामने पोस्ट कर दिया है। जी हाँ, क्रिकेट और बॉलीवुड के फैंस के लिए एक एक्साइटमेंट वाला मूवमेंट आया है। जी हाँ, जब राजकुमार राव ने सौरव गांगुली के बायोपिक वाला लुक, उनका फर्स्ट लुक जो है वो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जर्सी पोज बिल्कुल गांगुली वाला ही फील आ रहा था सोशल मीडिया पर। ये फोटो जैसे पोस्ट हुई इतनी ज़्यादा वायरल हुई और क्रिकेट लवर इसको बहुत ज़्यादा जो है प्रेज़ भी कर रहे हैं और सराह भी रहे हैं कि वाह, हमारे सौरव गांगुली पर भी एक बायोपिक बनने वाली है और कास्टिंग इतनी स्ट्रांग है कि लोग कह रहे हैं कि बस जल्दी से ये मूवी रिलीज़ हो जाए और हम जाके, यानी क्रिकेट लवर्स और जो राजकुमार राव लवर्स हैं वो जाके इस मूवी को देखें। भैया इंतज़ार तो मुझे भी बहुत है, क्योंकि मुझे बायोपिक्स देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और दोस्तों, अगर आप भी एक क्रिकेट लवर हैं, यानी कि क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपके लिए भी ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं इमोशनल होने वाले, क्योंकि इसमें जो सौरव गांगुली की स्टोरी है, उनके स्ट्रगल हैं, उसको इतनी बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है कि आप खुद देखेंगे कि जब नाम होता है, जब चमकता है इंसान, तो इंसान सिर्फ चमक देखता है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत शायद लोग इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो वो है हमारी आलिया भट्ट की तरफ। अभी मैंने आपको बताया था ब्रेक पे जाने से पहले कि जो हमारी आलिया भट्ट हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही हैं। जी हाँ, आलिया भट्ट ने अपनी इमेज के साथ एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया है। जी हाँ, वो तुम्बर 2 के डार्क हॉरर मूवी जो है उसका हिस्सा बन रही हैं, एक ऐसी डार्क हॉरर मूवी जो आपको भी मजबूर कर देगी डरने में। अगर आप बहुत स्ट्रांग हैं ना और सोचते हैं भैया नहीं, हमें भूत प्रेत से डर बिल्कुल नहीं लगता, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन मूवी आ रही है। अगर आपको हॉरर मूवी पसंद है तो ये मूवी डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। पहले उन्होंने बहुत सारी रोमांटिक मूवीज़ की हैं, इमोशनल मूवी की है, लेकिन आज तक हॉरर मूवी बिल्कुल भी नहीं की है। लेकिन अब ये थोड़ा सा चेंज ला रही हैं और रिस्क ले रही हैं कि भैया कैसे आप डरते हैं कि नहीं डरते हैं। फैंस को ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि आलिया भट्ट, जो कि इतनी सॉफ्ट लुकिंग एक्ट्रेस हैं और इतनी इमोशनल और रोमांटिक मूवी करती हैं, वो अब हॉरर मूवी पे उतर आई। पर भाई, मैं आपको याद दिला दूँ कि भैया 1920 मूवी, जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही फेमस हॉरर मूवी है, उसमें भी एक्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लुक के साथ थी, लेकिन डरावनी भी तो थी ना। बस कुछ उसी तरीके की मूवी बन रही है, मैंने आपको हिंट दे दिया, लेकिन अब ये मूवी जब आएगी तब मैं इसका रिव्यू आपको ज़रूर दूंगी। तब तक के लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आने वाली मूवीज़। जी हाँ, उसके बाद एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, क्योंकि भैया मोनी रॉय, जिसे आप सब जानते होंगे, जो हमारे कलर्स टीवी पे नागिन का रोल कर दी थी, उनको तो हम सभी जानते हैं। इससे पहले भी उन पे एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा था, जो कि उन्होंने खुद क्लियर किया था, लेकिन अब उनकी मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है क्योंकि उन्हें लोगों ने, पेपराजीज़ ने अकेला छोड़ा ही नहीं है। इसकी कंप्लेन उन्होंने खुद के ही सोशल मीडिया पे स्टोरी डालकर की है। क्या बात हुई थी, क्या पूरा माजरा क्या है, वो सब आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी हाँ, ब्रेक के बाद आएंगे और आपसे बात करेंगे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे हमारे इंडियन जीजू की। अब ये इंडियन जीजू कौन है वो आप सोचिए, उसके बाद यानी ब्रेक के बाद आएंगे और आपसे इन जीजू से भी रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आप थोड़ा सा सोचिए,

हाँ जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम ज्ञानस्थी लाइव, जिसमें हम आज एंजॉय कर रहे हैं बहुत ही प्यारी सी प्लेलिस्ट। लेकिन प्लेलिस्ट एंजॉय करने से पहले हम चलते हैं एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी खबर की तरफ। भाई प्यारी खबर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन पहले एक कॉन्ट्रोवर्शियल एक खबर की तरफ जाते हैं, जो कि हमारी नागिन यानी कि मोनी रॉय की तरफ से आई है। भैया मोनी रॉय कल रात को ही एक पार्टी से आ रही थी, जिसमें उनको निकलते वक्त पपराजीज़ जो कि उनकी फ़ोटो वीडियोस ले रहे थे, उन्होंने घेर लिया और वो इतना ज़्यादा परेशान हो गई कि उन्होंने सबसे कह दिया कि भैया मेरी फ़ोटो आप बिल्कुल भी ना खरीदें, आप मेरे वीडियो बना बना के पूरे इंटरनेट में वायरल कर रहे हैं, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और इसकी खबर उन्होंने अपनी स्टोरी पर भी, अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर भी पोस्ट किया है। जी हाँ, कार में बैठते ही मोनी पेपराजी से इरिटेट हो गई और उन्हें ये कहने लगे कि इसको बंद करो बंद करो। कुछ लोग कह रहे थे कि सेलेब्स को पर्सनल स्पेस देनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा वियर्ड था। उन्होंने कहा कि अगर इन्हें प्राइवेसी चाहिए, अगर इन्हें पर्सनल स्पेस चाहिए, तो ये एक पब्लिक फिगर बनते ही क्यों है। हालाँकि लोग जितने रहेंगे उनकी बातें भी उतनी ही रहेंगी, दूसरे लोग कुछ और बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ और बोल रहे हैं। कई लोग का कहना ये भी है कि मोनी रॉय शायद फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, उनकी मेंटल हेल्थ नहीं ठीक है और वगैरह वगैरह बहुत सारी बात बना रहे हैं। हालांकि बात क्या है ये तो मोनी रॉय ने अपनी स्टोरी पे ही लगा के कह दिया कि उन्हें फ़िलहाल थोड़ी सी स्पेस चाहिए और जब भी उन्हें पेपराजीज घेर लेते हैं तो उन्हें वो हमेशा नहीं अच्छा लगता। हर एंगल से उनकी फ़ोटो लेकर के वायरल करना वो कहीं ना कहीं उन्हें परेशान कर रहा है और उन्होंने रिक्वेस्ट की बहुत ही पोलाइट मैनर में कि आप मेरी फ़ोटोज़ आज के बाद ना लें। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। भाई हमारे इंडियन जीजू, अब इंडियन जीजू के नाम से आप जान गए होंगे कि किसकी बात कर रहे हैं, अगर नहीं जाने मैं बताती हूँ। भैया हमारे इंडियन जीजू हैं निक जोनस। जी हाँ, जब से निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई है वो बन चुके हैं इंडियन जीजू और वो खुद भी अपने जो उनके देश में जो भी इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें वो खुद कहते हैं कि मुझे इंडिया में हमेशा जीजू बुलाया जाता है। तो भैया इंडियंस हैं, इंडियंस हर इंसान को, चाहे वो अपने ही देश का हो चाहे दूसरे देश को, सबको अपना बना ही लेते हैं। इंटरनेशनल और देसी दोनों फ्रेंड, दोनों जो फैंस हैं उनके लिए एक स्वीट अपडेट मिला है। जी हाँ, निक जोनस ने फाइनली बताया कि उन्होंने प्रियंका चोपड़ा को पहले DM क्या भेजा था, यानी डायरेक्टली मैसेज क्या भेजा था। एक सिंपल सा मैसेज था, पर उसी से उनकी लव स्टोरी भी स्टार्ट हुई है। ये बता रही है कि उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि रोमांस का स्टार्ट किसी ग्रैंड जेस्चर से नहीं होता, बल्कि ऑनेस्ट और छोटे स्टेप से भी किया जा सकता है। हालांकि पूरे देश में प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की स्टोरी बहुत ज़्यादा सराही जाती है और उन्होंने एक बहुत ही पहला स्टेप जो बहुत ही स्वीट सा है उसको अपने जो है एक पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि कैसे उनकी ये कहानी स्टार्ट हुई। और सारे ही लोग यही गेस कर रहे हैं कि मे बी नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट किसी पॉडकास्ट में ये अपनी पूरी स्टोरी भी बताएं इंडियंस को, और फॉरेन कंट्री के भी जितने भी फैंस हैं इन दोनों के वो वेट कर रहे हैं कि जल्दी से ये अपनी स्टोरी बताएं। जी हाँ, वही प्रियंका चोपड़ा जिनकी स्माइल बहुत प्यारी है और एक बहुत ही बोल्ड वुमेन है, उनको हैंडल करने वाले एक बहुत ही स्वीट और चार्मिंग निक जोनस ने ये चीज़ें अपने पॉडकास्ट में बताई। हालांकि आपको क्या लग रहा है कि इस स्टोरी में और क्या हुआ होगा? मुझे तो लगता है भैया कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक लव स्टोरी होने वाली है। मुझे भी बेसब्री से इसका बहुत इंतज़ार है। आप बताइए कि आपको ये अच्छे लगते हैं, आपको पसंद है कि नहीं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आएंगे और आपसे बात करेंगे और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिंगर्स की हेल्थ और वॉइस स्ट्रेन के इशू को लेकर के। भैया इसका भी बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूज़ बन रही है, क्या है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त आरजे आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम ज्ञान हस्ती लाइव, जिसमें हम आज इंजॉय कर रहे हैं बॉलीवुड की कुछ खबरें। जी हाँ, नेक्स्ट खबर होने वाली है बहुत ही ज़्यादा सोचने और समझने वाली। जी हाँ, सोचना समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जी जान से हमारे लिए मेहनत करते हैं और उनकी क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं वो भी हमें समझना चाहिए। जी हाँ, देखिए, सिंगर्स की हेल्थ और वॉइस स्ट्रेन का इशू बहुत ज़्यादा आजकल चर्चे में है। म्यूजिक वर्ल्ड के एक इमोशनल खबर आई है। रिपोर्टर्स के अनुसार सिंगर्स जैसे अलका याग्निक, अरिजीत सिंह वगैरह, ऐसे कई सारे जो हैं सिंगर्स हैं जो रीसेंट टाइम में वॉइस स्ट्रेन और हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। जी हाँ, कंटिन्यूसली उन्हें काफ़ी सारे शोज़ करने पड़ रहे हैं, ट्रैवलिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग सेशन हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनके बॉडी पर प्रेशर बढ़ता भी जा रहा है। फैंस को रियलाइज़ हुआ कि हम एक गाने चाहिए होते हैं पर उनकी सेहत पर शायद हमारा ध्यान नहीं जाता। इसकी खबर पेपराजीज ने भी दी है क्योंकि लगातार इनका हॉस्पिटल विजिट हो रहा है। ऐसे कई सारे सिंगर्स हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा थ्रोट इशू से जूझ रहे हैं, उनकी खबर बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रही है और हमें ये ध्यान देना चाहिए कि भैया, और हमें ये ध्यान देने के बाद जैसे आप इतनी दूर से कुछ कर नहीं सकते बट एटलीस्ट उनके वर्क को इतना ज़्यादा, क्योंकि देखिए अलका याग्निक कितनी सुरीली और कितनी बेहतरीन सिंगर हैं ये हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल वो हमारे लिए काम करती हैं। फिलहाल उनको सुनाई देना थोड़ा सा कम हो चुका है, रिसेंटली उन्हें अवार्ड्स भी मिले हैं, जो नेशनल अवार्ड्स हैं उन्हें वो मिला है। और हमारे अरिजीत सिंह जो कि इतने स्वीट और चार्मिंग है, साथ ही साथ उनकी आवाज़ उससे भी ज़्यादा बेहतरीन है। और जितने लोग आजकल 2010 के बाद की जितने भी गाने हैं आप जब सुनेंगे तो उसमें अरिजीत सिंह किसी ना किसी मूवी में ज़रूर आपको मिल जाएंगे, और उनके एक भी ऐसा गाना नहीं है जो कभी फ्लॉप हुआ, और उनके गाने सीधा दिल पे छूते हैं। लेकिन इनका जो रियल स्टोरी है, जो बैक स्टोरी है, जो उनके वर्क के पीछे है, वो भी हमें जाननी चाहिए। और इसको जानने के बाद जो इनके फैंस हैं उनमें भी एक चिंता का विषय उत्पन्न हो चुका है कि काश हम लोग जो हैं इनके लिए कुछ कर पाएँ और साथ ही साथ इनकी जो वॉइस स्ट्रेन है, थ्रोट इश्यूज़ हैं, वो भी सही हो जाए। फिलहाल इसी न्यूज़ के साथ लेते हैं विदा, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से भाग चुका है। वक्त आपके दूसरे शो यानी कि सांझी विरासत का है। लेते हैं आपसे विदा, आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, आपने इन्जॉय किया होगा और आप समझेंगे भी कि एक्चुअल में इश्यूज क्या फ़ेस करने पड़ते हैं अगर आप बॉलीवुड में हैं। जहाँ भी चमक होती है उसके पीछे वो लोहा, वो चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा तब के ही चमकती हैं। तो सिर्फ शाइन ना देखें, उसकी बैक स्टोरी को भी समझें, सीखें और सारी चीज़ों को जो है अपने दिल पे लगाएं। दिल पे लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको बिल्कुल लेके बैठ जाएं कि अरे भाई इनकी तबीयत ख़राब है, पर उसको दिल से उसको प्रेस करें, लोगों की मेहनत को उतना आप वैल्यू करें, और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि उनके काम को आप सराहें। लेते हैं आपसे इसी मैसेज के साथ विदा, आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनों का ध्यान रखेंगे।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन

0: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
1: नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में और मैं हूं आपका अपना आरजे अदनान। आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। जब हम किसी बच्चे के उज्जवल भविष्य के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? अच्छी पढ़ाई, अच्छा स्कूल, अच्छे शिक्षक, अच्छा माहौल, है ना?
2: बिल्कुल। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जाए तो उसका भविष्य अपने आप सवर जाता है।
1: बात तो सही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस अच्छे स्कूल तक पहुंचने से पहले भी बच्चे की एक यात्रा शुरू हो चुकी होती है और उसी यात्रा की शुरुआत तय करती है कि आगे उसकी नींव कितनी मजबूत होगी।
2: अरे मतलब बच्चे का भविष्य स्कूल से भी पहले ही शुरू हो जाता है।
1: बिल्कुल, जरा और पीछे चलिए।
2: अच्छा, तो क्या जन्म के बाद?
1: नहीं नहीं नहीं, उससे भी पहले।
2: उससे भी पहले? अब तो आप हमारी उत्सुकता बढ़ा रहे हैं, आखिर कब से?
1: विशेषज्ञों का कहना है कि एक बच्चे के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत उसकी माँ से होती है। जब एक महिला स्वस्थ होती है, उसे पर्याप्त और संतुलित पोषण मिलता है, तभी उसके बच्चे को भी जीवन का मजबूत आधार मिलता है, यानी एक मजबूत शुरुआत होती है।
2: यानी बच्चे का भविष्य केवल उसके जन्म के बाद नहीं बल्कि माँ के स्वास्थ्य और पोषण से ही तय होना शुरू हो जाता है।
1: बिल्कुल, जब हम मातृ पोषण की बात करते हैं तो हम केवल एक महिला की सेहत की बात नहीं कर रहे होते, जब हम उस शक्ति की बात कर रहे होते हैं जो उसे स्वस्थ गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्वस्थ बच्चे की जन्म की ओर ले जाता है। हम उस मजबूत नींव की बात कर रहे होते हैं जिस पर पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ी का भविष्य खड़ा होता है।
2: और शायद यही वजह है कि आजकल हर जगह मातृ पोषण पर जोर दिया जा रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा। हाल ही में संपन्न हुए पोषण पखवाड़ा ने भी हमें यही संदेश दिया है कि जीवन के शुरुआती वर्षों में मिलने वाला सही पोषण केवल शरीर ही नहीं बल्कि बच्चे के मस्तिष्क के विकास और उसके पूरे भविष्य को प्रभावित करता है।
2: यानी अगर शुरुआत सही हो तो आगे की राह भी मजबूत बनती है।
1: बिल्कुल, और इन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अपने सेहतिया सिंह जी और हमारी साथी टीकन देवी जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
3: धन्यवाद आरजे जी, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
4: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार।
1: सेहतिया जी, अभी हमने बात की कि बच्चे के भविष्य की शुरुआत उसकी माँ से होती है, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि बस पेट भर खाना खा लिया वही काफी है। क्या सचमुच में माँ का पोषण इतना महत्वपूर्ण होता है?
3: बिल्कुल महत्वपूर्ण है, और यह केवल गर्भावस्था की बात नहीं है। जब किसी महिला को रोजाना संतुलित और पौष्टिक भोजन मिलता है तो उसका शरीर मजबूत रहता है, उसमें काम करने की ऊर्जा रहती है, वह कम बीमार पड़ती है और अपने परिवार की बेहतर देखभाल भी कर पाती है। लेकिन जब वही महिला माँ बनने वाली होती है तब उसका शरीर सिर्फ उसका अपना ही नहीं रहता है, गर्भ में पल रहे बच्चे को मिलने वाला हर पोषण उसके शरीर से पहुंचता है। इसलिए माँ जितनी स्वस्थ होगी बच्चे की शुरुआत भी उतनी

0: होगी।
1: यानी माँ जो खाती पीती है उसका सीधा असर बच्चे तक पहुंचता है।
0: बिल्कुल, गर्भ में पल रहे बच्चे का पूरा विकास, उसका शरीर, उसके अंग, यहाँ तक कि उसके मस्तिष्क का विकास भी माँ के स्वास्थ्य और पोषण पर ही निर्भर करता है।
2: अच्छा, यानी माँ की थाली जितनी पौष्टिक होगी, बच्चे का भविष्य भी उतना ही मजबूत होगा।
0: बिल्कुल सही कहा।
3: सेहतिया जी, आपने पोषक तत्वों की बात की। आजकल एक शब्द और सुनने को मिलता है, एनीमिया, यानी कि खून की कमी। आखिर ये समस्या कितनी गंभीर है?
0: यह बहुत गंभीर समस्या है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कई महिलाओं को वर्षों तक पता ही नहीं चलता है कि उन्हें खून की कमी है। वो कमजोरी, थकान या चक्कर आने को सामान्य बात समझकर नज़रअंदाज कर देती हैं। लेकिन जब शरीर में पर्याप्त खून नहीं होता, तो शरीर के अलग-अलग अंगों तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाती है। इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है।
2: ओ, इसलिए हमेशा उन्हें थकान रहती है।
0: बिल्कुल, जल्दी थक जाना, कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, सांस फूलना, काम करने की क्षमता कम होना, ये सब खून की कमी के सामान्य लक्षण हैं। लेकिन अगर यही समस्या गर्भवती महिला में हो तो जोखिम भी और बढ़ जाता है।
3: और किस तरह का जोखिम?
0: समय से पहले प्रसव हो सकता है, कम वजन वाले बच्चे का जन्म हो सकता है, और प्रसव के समय अगर ज़्यादा रक्त स्राव हो जाए तो पहले से एनीमिक महिला के लिए स्थिति जानलेवा भी हो सकती है।
2: अरे, हम तो हमेशा यही समझते थे कि खून की कमी का मतलब बस थोड़ा कमजोरी महसूस करना होता है।
1: यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। एनीमिया सिर्फ कमजोरी नहीं है, बल्कि माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। अगर माँ एनीमिक है, तो बच्चे में भी आयरन की कमी, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक विकास में रुकावट जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
3: यानी इसकी कीमत सिर्फ माँ नहीं, बच्चा भी चुकाता है।
1: बिल्कुल, इसलिए आज एनीमिया मुक्त भारत अभियान के माध्यम से किशोरियों, महिलाओं और गर्भवती माताओं तक आयरन की गोलियां, नियमित जांच और पोषण संबंधी जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
2: लेकिन सेहतिया जी, अक्सर लोग सोचते हैं कि गर्भ ठहरने के बाद ही अच्छा खाना शुरू करना चाहिए। क्या तैयारी उससे पहले से भी जरूरी है?
0: बिल्कुल, स्वस्थ गर्भावस्था की तैयारी तो बहुत पहले से शुरू हो जानी चाहिए। अगर एक किशोरी स्वस्थ है, उसका भोजन संतुलित है और उसे आयरन की कमी नहीं है, तो भविष्य में गर्भावस्था भी अधिक सुरक्षित रहती है।
1: यानी एक स्वस्थ माँ बनने की शुरुआत एक स्वस्थ बेटी से होती है।
0: आपने बिल्कुल सही कहा।
3: हाल ही में पोषण पखवाड़ा का मुख्य विषय बच्चों के मस्तिष्क के विकास पर था। क्या पोषण का दिमाग से भी इतना गहरा संबंध होता है?
0: बिल्कुल, बच्चे के मस्तिष्क का विकास गर्भावस्था के दौरान ही शुरू हो जाता है। उस समय आयरन, फोलिक एसिड, आयोडीन और DHEA जैसे पोषक तत्व बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही पोषक तत्व आगे चलकर बच्चे बच्चे की सीखने, समझने, याद रखने और नई चीजें सीखने की क्षमता की मजबूत नींव रखते हैं।
2: और इसी से जुड़ा एक शब्द हम अक्सर सुनते हैं, पहले 1000 दिन। आखिर इसका मतलब क्या है?
1: पहले 1000 दिन यानी गर्भधारण से लेकर बच्चे के 2 साल तक का होने का समय। विशेषज्ञ इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर मानते हैं। इसी दौरान बच्चे के मस्तिष्क, शरीर और रोग प्रतिरोधक क्षमता का सबसे तेजी से विकास होता है। अगर इस पूरे समय सही पोषण और सही देखभाल मिले, तो बच्चे के स्वस्थ और सक्षम नागरिक बनने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।
0: टीकन जी, अब श्रोताओं को ये भी बताइए कि बच्चे के जन्म के बाद सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज क्या होती है?
1: सबसे जरूरी चीज है बच्चे के जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करना। बहुत से लोग पहले दूध को फेंक देते हैं, जबकि यही सबसे बड़ी गलती है। माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, बच्चे के लिए पहली प्राकृतिक सुरक्षा का कवच होता है। ये उसे कई संक्रमणों से बचाता भी है। इसके बाद पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। इस दौरान पानी, शहद, घुट्टी या कोई भी दूसरी चीज नहीं देनी चाहिए।
3: और जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो?
0: तब माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार शुरू करना चाहिए। घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन जैसे दाल, खिचड़ी, हरी सब्जियां, फल, अंडा और अन्य स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ बच्चों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
3: और जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो?
0: तब माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार शुरू करना चाहिए। घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन जैसे दाल, खिचड़ी, हरी सब्जियां, मौसमी फल, अंडा जहां परिवार खाता हो, दही और अन्य स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ बच्चों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शुरुआत थोड़ी थोड़ी मात्रा से करें और धीरे धीरे बच्चों की उम्र के अनुसार भोजन की मात्रा और विविधता बढ़ाते जाएं।
2: यानी हमें महंगे या बाजार के पैकेट वाले खाने की जरूरत नहीं है, अगर घर में उपलब्ध पौष्टिक चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बच्चे को अच्छा पोषण मिल सकता है।
1: बिल्कुल, कई बार लोगों को लगता है कि अच्छा पोषण मतलब महंगा खाना, जबकि सच ये है कि हमारे घरों और आसपास मिलने वाली दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, चना, मूंगफली, दूध, दही और अंडा जैसे खाद्य पदार्थ भी बहुत पौष्टिक होते हैं। जरूरी बात है कि भोजन संतुलित हो और समय पर दिया जाए।
3: सेहतिया जी, आज की पूरी चर्चा से एक बात साफ समझ में आती है कि बच्चे की अच्छी शुरुआत तभी संभव है जब माँ खुद स्वस्थ और पोषित हो।
0: अक्सर हम बच्चों के जन्म के बाद उसकी देखभाल पर ध्यान देते हैं, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि स्वस्थ बच्चे की शुरुआत एक स्वस्थ माँ से होती है। इसलिए हर लड़की, हर किशोरी और हर महिला के पोषण का ध्यान रखना पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, केवल उसकी अपनी नहीं।
2: और शायद इसी वजह से कहा जाता है कि अगर हम एक माँ को स्वस्थ बनाते हैं तो हम केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी मजबूत बना रहे हैं।
1: बिल्कुल सही। परिवार में अक्सर महिलाएं सबसे आखिर में खाना खाती हैं या अपनी जरूरतों को सबसे अंत में रखती हैं। लेकिन अब समय है कि हम ये सोच बदलें। अगर माँ स्वस्थ रहेगी तभी वो अपने बच्चे, परिवार और समाज की बेहतर देखभाल कर पाएगी।
3: और इसमें परिवार के बाकी सदस्यों की भी बराबर जिम्मेदारी है। पति, सास ससुर और घर के दूसरे लोग अगर गर्भवती महिला को समय पर भोजन, आराम और स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए प्रोत्साहित करें तो इसका सीधा फायदा माँ और बच्चे दोनों को मिलता है।
0: बिल्कुल, गर्भावस्था के दौरान नियमित जाँच, डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह का पालन करना, आयरन फोलिक एसिड की गोलियां समय पर लेना, संतुलित भोजन करना और पर्याप्त आराम करना, ये सभी बातें मिलकर एक स्वस्थ गर्भावस्था सुनिश्चित करती हैं।
2: यानी पोषण केवल खाने तक सीमित नहीं है बल्कि सही जानकारी, समय पर जांच और परिवार के सहयोग से भी जुड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। जब सही जानकारी और सही व्यवहार साथ आते हैं तभी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं।
3: श्रोताओं, आज की इस चर्चा में हमने कई महत्वपूर्ण चीजें सीखी। हमने जाना कि बच्चे के जीवन की सबसे मजबूत नींव उसकी माँ के स्वास्थ्य और पोषण से शुरू होती है। गर्भावस्था से पहले किशोरियों को अच्छा पोषण, गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार, एनीमिया से बचाव, नियमित स्वास्थ्य जांच और आयरन फोलिक एसिड का सेवन, ये सभी स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चे के लिए जरूरी हैं।
2: तो श्रोताओं, हमने ये भी समझा कि बच्चे के पहले 1000 दिन उसके पूरे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करना, पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध देना और उसके बाद समय पर पौष्टिक पूरक आहार शुरू करना बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद आवश्यक है।
1: और मैं सभी बहनों और परिवारों से ये कहना चाहती हूँ कि अपनी सेहत को कभी भी नजरअंदाज न करें। समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाएं, अपनी नियमित जांच कराएं, आयरन फोलिक एसिड की गोलियां स्वास्थ्यकर्ता की सलाह के अनुसार लें और घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
0: अगर आपके मन में पोषण, गर्भावस्था या बच्चे की देखभाल से जुड़ा कोई सवाल हो तो अपने नजदीकी आशा कार्यकर्ता, एनम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या स्वास्थ्य केंद्र से जरूर संपर्क करें। सही जानकारी ही सही निर्णय लेने की सबसे बड़ी ताकत है।
3: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम से बस इतना ही। याद रखिए, एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे की पहली शिक्षक, पहली पोषण दाता और पहला सुरक्षा कवच होती है। जब माँ स्वस्थ होगी तभी बच्चा स्वस्थ होगा, परिवार खुशहाल होगा और हमारा समाज भी मजबूत बनेगा।
2: इसी उम्मीद और इसी संदेश के साथ अब हमें दीजिए अनुमति, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई जानकारी और नए संदेश के साथ।
0: धन्यवाद। सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि अपने परिवार की महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण का विशेष ध्यान रखें।
1: धन्यवाद। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपने आसपास के लोगों तक भी ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं खत्म होता है और जाने से पहले लेंगे हम शपथ।
3: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।

भारत में जैसे ही किसी दंपत्ति की शादी होती है, सब पूछने लगते हैं, अच्छी खबर कब आएगी। लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर जोड़े जल्दबाजी में माता पिता बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें गर्भ निरोधक के सभी विकल्पों की सही जानकारी नहीं होती। जब दंपत्तियों को अपने सभी विकल्पों की पूरी जानकारी मिलती है, तो वो मिलकर फैसला ले सकते हैं कि वो कब और कितने बच्चे चाहते हैं। वो आर्थिक रूप से तैयारी कर सकते हैं और अपने आजीविका पर ध्यान दे सकते हैं, साथ ही अपने बच्चों को बेहतर शुरुआत दे सकते हैं, ताकि हर बच्चा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि सोच समझ कर लिए गए फैसले से जन्म ले। तो झिझके नहीं, अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और जानें कि आपके लिए कौन सा आधुनिक गर्भ निरोधक तरीका सही है। आज ही बातचीत करें।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीवी मुक्त बनाने का। तभी तो टीवी हारेगा, देश जीतेगा।
1: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
2: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
1: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए।
2: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
1: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत। गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है, तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मेनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 बजे से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में है आरजे
3: अंशिका।
0: इतना देर
3: देर आए पर दुरुस्त आए।
0: मेरी जिंदगी में भी कुछ लोग देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, है ना अंशिका?
3: बिल्कुल मैम, दुरुस्त की अब इतने दुरुस्त
0: तंदुरुस्त
3: किया को क्या बता दूं,
0: दुरुस्त की तंदुरुस्त
3: नहीं, दुरुस्त
0: दुरुस्त है ना, दुरुस्त है। तो भाई स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने शो जिसका नाम है
2: सुन सहेली विद
0: आरजे समता एंड आरजे
3: अंशिका।
0: तो भाई दोनों लोग आ गए हैं, बहुत ही अच्छे वाले मूड में हैं, एक्चुअल में अच्छा वाला मौसम है, अच्छा वाला मूड है और अच्छे
3: और भी कुछ अच्छा वाला है।
0: हाँ, अच्छा वाला तो सब कुछ है और अच्छे अच्छे हम लोग लग भी रहे हैं आज और बहुत अच्छे से। मेरी मुझे लगता है कि जब हम अच्छे बन के आते हैं तो अच्छे से शो करने का मन भी करता है, अच्छे से आपसे बात करने।
3: जी, जी,
0: जब हम लोग ऐसे आ जाते हैं ना, कुछ लोग पता है ये अंशिका होता है, ये कॉन्फिडेंट आता है जब आप अपने आप को एक अच्छा सा फील करते हैं, एक अच्छे इंसान से बात करके काम पे लगते हैं ना, तो एक अलग सा कॉन्फिडेंट आता है।
3: यस यस, आई नो वेरी वेल, कि कैसे लगता है जब आप अच्छी अच्छी सी किसी से अच्छी अच्छी बातें करते हैं और किसी को घुमा घुमा के इतना घुमा देते हैं कि बेचारा घूम जाता है, फिर वो स्पीचलेस हो जाता है, फिर उसके पास कुछ नहीं बचता है अपने
0: ये कहने के लिए कि ठीक है तुम्हारा शो शुरू हो रहा है,
3: जाओ बाय, टेक केयर।
0: जी हाँ, तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत सीधे साधे होते हैं और हमारी जिंदगी में, सभी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा दोस्त होता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जिनसे हम बिना सोचे समझे हुए बातें करते हैं, है ना?
3: हाँ।
0: तो आई थिंक आज का जो सेक्शन है हमारा, आज है थर्सडे है,
3: यस मैम,
0: आज के दिन हम बहुत सारी चीजों को लेते हैं, प्लांट्स के बारे में बात करते हैं और कुछ ऐसे टिप्स को लेते हैं जो कि दवाइयों को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं, कुछ मेडिसिन को लेकर के बात करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आइए विश कर देते हैं हमारी दोपहर को, क्योंकि दोपहर शुरू हो चुकी है और हम दोनों ने अभी तक आपको विश नहीं किया है, तो आइए एक साथ एक ही फ्रेम में
3: शुभ दोपहरिया। शुभ दोपहरिया लिसनर्स, और भाई मूड है जबरदस्त क्योंकि हम दोनों ही है बहुत मस्त। अब मैम तो मस्त है तो उसका कोई एक खास कारण है, और मैं मस्त इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अभी कुछ बहुत मस्ती भरा सुन लिया, और जो मैंने सुना मुझे सुन के मुझे बहुत सारी हंसी आ रही थी, और हंसी क्यों आ रही थी ये तो फिर अब मतलब
0: वो ऑफ माइक बताया जाएगा,
3: वो ऑफ माइक मैं
0: उसको रिवील नहीं
3: करूंगी, मैम के साथ डिस्कस करूंगी कि मुझे इतनी हंसी क्यों आ रही थी। लेकिन जैसे होता है ना कि कोई बहुत ज्यादा यू नो सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बातें करता
0: और
3: है,
0: उसको तंग करने का मजा, हाँ, मजा ही कुछ और,
3: बिल्कुल वो वाली कि अरे ठीक है, अच्छा ठीक है, अरे गुस्सा हो गई क्या, मतलब ये वाली। तो बहुत मजा आता है कि कोई स्वीट सा इंसान हो आपकी लाइफ में जिसको आप ढेर सारा तंग कर सकते हैं और उसके बाद वो ये भी नहीं कहेगा कि तुमने मुझे परेशान किया, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे तो सुन के मजा आता है, पता है मुझे सिर्फ सुनने में मजा आता है। मैं ये सोचती हूँ कि मैं ऐसे सुनती रहूँ, मतलब अच्छा लगता है, मजा आता है।
0: चलो
3: तो चलिए, मजा
0: आप लोगों की दुआओं का असर है,
3: बिल्कुल
0: और कुछ नहीं है। चलिए तो आज के शो को शुरू करते हैं। आज की पोयम हमारी बहुत ही प्यारी सी है, जो कि आज सीनियर सिटीजन्स पे होती है पोयम, एंड सीनियर सिटीजन्स पे पोयम आई थिंक मुझे मिल गई है, तो मैं बोलूं?
3: आप बोल देंगी, आप बता देंगी मैम पोयम
0: क्या?
3: ऐसे ही बता देंगी?
0: नहीं बताना है, अच्छा हाँ, मेरे
3: ऐसे ही बता देंगी,
0: मुझे मेरी पोयम को आवाहन करना है, तो आवाहन करिए आप जल्दी से,
3: तो सुनिए। और जरा ध्यान से सुनिएगा लिसनर्स, आप भी और आप भी। लड़कियों में होती है बहुत सारी खुशी और चेहरे पे छाती है बहुत ही प्यारी सी रंगत, पता है कब? तब जब मिलता है उन्हें सैया का साथ और होता है बहुत मन में एक उत्साह और प्यार। तो चलिए हम भी कुछ नए सपनों की उड़ान पे होते हैं सवार और करते हैं इस प्यारी सी पोयम की शुरुआत
0: आरजे समता के साथ।
3: वाह,
0: चलिए
3: मेरी लाइन को पूरा कर दिया।
0: थैंक यू और बहुत ही अच्छी सी आपने मेरी मेरी पोयम को रास्ता देती हैं आप हर रोज की। भैया हट जाओ, और
3: कोई बीच में वो नहीं होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं,
0: आज समता की सवारी आ गई है,
3: स्पीड ब्रेकर नहीं होना चाहिए।
0: एंड आज समता आ गई है, उनकी पोयम आ गई है, उनकी सवारी,
3: अब आप सुना सकती हैं।
0: अब मैं सुना सकती हूँ, ठीक है। तो घर की धरोहर, झुरियों से सजे वो प्यारे से चेहरे, आंखों में अनुभवों के साए हैं गहरे, जिंदगी की हर धूप छाओं को जिन्होंने झेला के साए हैं गहरे, जिंदगी की हर धूप छाओं को जिन्होंने झेला, उनके आशीर्वाद से महकता है घर का हर रेला। बालों की सफेदी में छिपी एक दास्तान है, उसकी हर एक सीख हमारे लिए एक वरदान है। थक चुके हैं हाथ जो कभी काम करते थे, आज भी वो हमारे लिए दुआओं के दिए भरते हैं। उम्र के उस मोड़ पर उन्हें अकेला मत छोड़ना, उनके नाजुक से दिलों को कभी मत तोड़ना, चाहते हैं वो बस अपनों का थोड़ा सा साथ, थाम लो आदर से उनके कांपते हुए हाथ। वो घर की नींव है, वो आंगन की शान है, बुजुर्गों के चरणों में बसता भगवान है। आओ मिलकर इस शाम को हसीन बनाएं, उनके चेहरे पर खुशियों की मुस्कान लाएं।
3: वाह, मस्त, जबरदस्त, बहुत ही अच्छी पोयम और बहुत ही फीलिंगफुल और बिल्कुल सही। इन पंक्तियों में जो कहा अभी मैम ने, बिल्कुल सही है कि उनकी आशीर्वाद में भगवान बसता है और सारी ही तकलीफों से लड़ने की आपको शक्ति देता है, इसलिए उनको अच्छे से प्यार से रखें और बिल्कुल भी कभी भी उनको ऐसा कुछ ना फील कराएं जिससे कि उन्हें पेन हो या उन्हें ये लगे कि मुझे कोई कुछ नहीं समझता है, कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए।
0: तो अभी रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ की ओर चले एंड जल्दी से चलते हैं, और उसके बाद मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है आज एक गाना सुनने की,
3: तो गाना भी सुनाते
0: हैं। कहते हैं ना, जब मूड अच्छा होता है तो कुछ अच्छा सा रंगीला सुनने का मन करता है।
3: आपको रंगीला, सतरंगी, सुहाना सब सुनाते हैं मैम, डोंट वरी, ठंड लग रही है
0: बातों से
3: मेरी बातों से अच्छा हाँ, वो किसी और कारण से भी लग सकती है
0: जी। चले
3: बिल्कुल, मैं तैयार हूँ
0: जी, चले।
3: तो चलिए बताते हैं आपको रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ, और आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ कहता है, जो पैसों से खुशियाँ खरीदने निकलते हैं उनके हाथों में सिर्फ अंधेरा आता है। कहने का सेंस ये है कि पैसों से सब कुछ नहीं मिलता, और जब हम मन में ये ठानते हैं कि मेरे पास पैसा है तो मेरे पास सब कुछ है, तो फिर आपको लाइफ में हो सकता है शुरुआत में आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मिल जाएं, लेकिन लास्ट में जब आप लाइफ में पहुंचेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ अंधेरा मिलेगा। क्योंकि जिन्हें पैसों पर घमंड होता है और जिनकी पूरी दुनिया सिर्फ पैसा ही होता है, उनके पास लोग नहीं रह जाते। कहते हैं कि जब किसी की डेथ हो जाती है और उसकी जब अंतिम यात्रा निकलती है, और अंतिम यात्रा में जितने ज़्यादा लोग होते हैं, कहा जाता है कि इसने लाइफ में इतना बनाया है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके में दो चार भी नहीं आते, क्यों? क्योंकि उनकी बिहेवियर में कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप सोचें कि आपने कितना बनाया है। देखिए, कहने का सेंस सिर्फ इतना है कि हो सकता है आपके पास बहुत सारे पैसे हों, लेकिन पैसों से न किसी का दिल खरीदा जाता है, न प्यार खरीदा जाता है। पैसों से आप सिर्फ ऊपर की जो आपकी सुविधा की चीज़ें हैं वो आप खरीद सकते हैं, लेकिन किसी का प्यार नहीं खरीद सकते। इसलिए अपने पैसों पर घमंड तो कभी भी ना करें, क्योंकि कहते हैं लक्ष्मी बहुत चंचल होती है। एक बात और कही जाती है मैम, कि जब लक्ष्मी किसी के घर आती है ना, तो सरस्वती चली जाती है।
0: वही वही बस वही। बस बहुत ही सही पॉइंट बोला है कि जब लक्ष्मी आती है तो सरस्वती चली जाती है। और कुछ ऐसे किरदार हैं हम लोगों की जिंदगी में कि साक्षात प्रमाण देखा है मैंने।
3: बिल्कुल, तो लक्ष्मी, देखिए, एक अच्छा इंसान वही होता है जिसके पास लक्ष्मी है तो वो सरस्वती को भी संभाल कर रखता है, क्योंकि दोनों साथ में हैं तो इंसान रोशनी की तरफ जाता है। लेकिन अगर उसके पास सिर्फ एक है और उस एक पर भी अहंकार है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको अंधकार की ओर ले जाता है। और ये अभी समझ में नहीं आता है, क्योंकि पता है जब इंसान यंग होता है, 20-22 साल 25 साल के किसी लड़के से आप पूछिए कि गिरना क्या होता है, तो वो आपको ये बताएगा कि कुछ नहीं होता है, हम तो गिरते हैं फिर उठ जाते हैं फिर अपनी लाइफ जीने लगते हैं। तब समझ में आता है जब इंसान ढलान पे होता है। एक बात बताती हूँ, एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। औरंगजेब के बारे में सभी ने सुना है कि वो बहुत अत्याचारी राजा था, उसके शासन में कोई खुश नहीं था। लेकिन जब उसकी डेथ हो रही थी, बिल्कुल वो अपनी लास्ट उस पे था, तो वो अपने बेटे को देखने के लिए बहुत ज्यादा परेशान था। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ मत देना, चाहे तो मेरी लाश को आप ऐसे ही भेज देना, लेकिन मुझे सिर्फ एक बार अपने बेटे को देखना है और उसे गले लगाना है। लेकिन वो नहीं कर पाया।
0: क्यों?
3: और वही इच्छा लेकर वो मर गया।
0: कर क्यों नहीं पाया?
3: क्योंकि उसने पूरी लाइफ अपने बेटे के साथ इतना गलत किया।
0: अच्छा।
3: कि लास्ट में जब उसकी डेथ हो रही थी तो उसके बेटे ने खुद मना कर दिया कि
0: मुझे नहीं मिला,
3: कौन सा पिता, मेरा तो कोई पिता नहीं है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो जिए या वो मर जाए।
0: और वो उसी आस को लेकर के इस दुनिया से चला गया।
3: बिल्कुल। तो ऐसी कोई अपनी लाइफ में हरकतें ना करे।

0: अभी कि आपको भी फिर लास्ट में ये सुनना पड़े कि अरे ये तो ऐसे हुआ, क्योंकि जो हम करते हैं, एक बहुत ही अच्छी मूवी आई थी जैसी करनी वैसी भरनी, उसमें वो लास्ट में जब अपने बेटे को समझाते हैं तो दो लाइन कहते हैं कि जिंदगी वो आईना है जिसमें आप करते पहले हो और उसकी तस्वीर आपकी करनी की जो होती है वो आपको सालों बाद दिखाई देती है, और तब तक सुधार करने के लिए बहुत देर हो जाती है। इसलिए सुधार करना है तो जल्दी करें, और लक्ष्मी जैसी चंचल चीज पर तो कभी घमंड करना ही मत, क्योंकि ये आज इनके पास तो कल उनके पास होती है। और धन, धन से सब खरीदा जाता है पर खुशी नहीं,
1: सच्चा प्यार नहीं,
0: सच्चा प्यार नहीं। तो सोचिए कि आपके पास क्या है और कितना है, और जो है उसे सहेजा कैसे जा सकता है। फिलहाल इन सीरियस बातों से निकलते हैं, मस्ती की तरफ चलते हैं, अपनी तो पाठशाला, मस्ती की पाठशाला। और मैम को गाना सुनना था।
1: हाँ यार, आज मुझे मेरा मन कर रहा है गाना सुनने का, तो प्लीज आज सुना, अच्छा सा कोई गाना सुना।
0: बहुत अच्छा है मैम, आप सुनिए और सोचिए।
1: तो हमारे साथ हम सभी लिसनर्स को भी सुनाएंगे, एंड वापस आते हुए सीधे आएंगे हम चैट बॉक्स में एंड अपने नेक्स्ट सेगमेंट पर, जो आज का टॉपिक होगा प्लांट्स। तो प्लांट्स को हमें कैसे रखना है, कैसे उसे और सुंदर बनाना है, क्योंकि कहा जाता है ना कि एक छोटा बच्चा और प्लांट्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो उसी फर्क को मिटाएंगे, जानेंगे कैसे कैसे और कैसे। तो आइए मिलते हैं हम थोड़े से ब्रेक के बाद।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में आरजे अंशिका। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक पर।
3: तो आज का हमारा पहला टॉपिक है प्लांट्स की केयर करना। तो आज हम प्लांट्स की केयर में एक बहुत ही अच्छे पौधे के बारे में बताने वाले हैं, जो अमूमन मुझे लगता है कि इंडिया में तो हर घर में पाया जाता है और इसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं। लेकिन उसे बताने से पहले मैं दो लाइन में आपको बताती हूँ कि वो कौन सा पौधा है। और वो दो लाइन ये है, बताती हूँ। एक्चुअली वो आ गई, मुझे हंसी आ गई थोड़ी।
2: क्यों, हमें देख के?
3: नहीं, आपको देख कर नहीं, कुछ सोच कर हंसी आ गई मुझे। तो कोई होता है बहुत ही सीधा, ठीक है, कोई होता है बहुत ही सीधा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं तुलसी का पौधा कैसा था।
2: ऐसा नहीं था,
3: ऐसा बताऊं? हाँ बताइए बताइए।
2: कोई होता है बहुत ही सीधा साधा। आज हम आपको बताएंगे जिसके बारे में, वो है तुलसी का पौधा।
3: वाह, इसी को कहते हैं कि
2: साथ में बैठने का असर या फिर बुजुर्ग होने का असर, यही दोनों तुम्हारे मुंह में आते हैं हमारे लिए ऐसी बातें।
3: अब मैं कुछ और कहने वाली थी।
2: अच्छी बातें तो आती नहीं है।
3: अब मैं कुछ और कहने वाली थी लेकिन अब मैं नहीं कहूँगी।
2: नहीं बताओ क्या।
3: मैं तो ये कहने वाली थी कि यही होता है असर जब कोई चोरी चोरी कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। तो ऐसी बात जब बन जाती तो ये।
2: जी पानी चलो तो हो गया। अब हम पौधे की ओर चलते हैं।
3: जी पौधे की ओर चलते हैं और बताते हैं।
2: बताओ ना।
3: मैं बताऊं
2: और क्या?
3: अच्छा, मुझे लगा मैं बताने वाली।
2: नहीं नहीं, आपने बोला, मैंने इतनी अच्छी शायरी का आवाहन किया कि मतलब जब कोई होता है सीधा साधा। तो आइए हम शुरू करते हैं आज जिसके बारे में, वो है तुलसी का पौधा।
3: तो क्या है ना लिसनर्स, मैं बताऊं कि सॉरी है आपको, क्योंकि आज हम दोनों का ही, मतलब मैम का तो है ही और मेरा भी, जो कंसंट्रेशन है ना
2: वो सुन के खराब हो गया,
3: वो थोड़ा दूसरी साइड में चला जाता है बार बार, तो वो हमें वापस लाना पड़ता है। तो इसलिए आज हम थोड़े से हैं कंफ्यूज। तो कंफ्यूजन को करते हैं दूर और सीधे चलते हैं बताते हैं।
2: जी,
3: तो सबसे पहला जो आपको प्रिकॉशन करना है वो ये करना है कि सभी देखते होंगे कि तुलसी का पौधा बहुत जल्दी खराब हो जाता है, और बारिश के मौसम में तो हाँ सही रहती है, लेकिन बाकी मौसम में खराब हो जाती है। क्यों हो जाती है? वो इसलिए हो जाती है क्योंकि कहते हैं ना, अति कभी नहीं करनी चाहिए, किसी भी चीज की अति बहुत खराब होती है। वो कहा, एक दोहा है ना, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूक, अति का भला ना बरसना और अति की भली ना धूप। तो वैसा ही कुछ इस पौधे के साथ भी है कि हम क्या करते हैं कि हम तुलसी में रोज पानी डालते हैं, जबकि तुलसी में रोज बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना चाहिए।
2: अच्छा,
3: क्योंकि ज्यादा पानी देने से तुलसी की जो जड़ें होती हैं वो सड़ जाती हैं और पौधा सूख जाता है। तुलसी में पानी देने का क्या तरीका होता है कि मान लीजिए एक दिन आपने पानी डाला, उसके बाद आपको एक दिन गैप करके फिर एक दिन पानी देना है, फिर एक दिन गैप करके फिर एक दिन पानी देना है, इस तरीके से पानी देना है। और तुलसी में कभी इस तरह पानी नहीं देना चाहिए कि पाइप लगा दिया तो फिर लगा दिया कि वो पूरा पॉट भर रहा है और पानी बाहर गिर रहा है। क्योंकि क्या होता है, तुलसी बहुत सेंसिटिव होती है। जैसे कुछ लोगों के लिए हम यूज करते हैं ना वर्ड कि वो बहुत सेंसिटिव है, प्यारे हैं, अच्छे हैं, कोमल हैं, तो वैसे ही तुलसी के पौधे के साथ
2: पौधा भी होता है।
3: वो बहुत स्वीट होता है, सेंसिटिव होता है। तो अगर आप ज्यादा
2: आजकल तुम्हें लग नहीं रहा, इसने आपको लग नहीं रहा है कि इनका सीधा और साधा जो भी टारगेट होता है वो सीधे साधे एक इंसान की ओर जा रहा है। हमें कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है।
3: नहीं नहीं,
2: तो इनकी इनकी जिंदगी में कुछ खोजबीन करनी चाहिए कि इनकी जिंदगी में कौन सीधा साधा आ गया इंसान।
3: कोई नहीं।
2: तो ये क्योंकि हर बात घुमा फिरा के हम देख रहे हैं बहुत दिनों से, सीधे वही लेके चली जाती है।
3: जरूरी थोड़ी ना है कि कोई मेरी लाइफ में और तभी मैं ले जाऊं।
2: चलो चले
3: चले
2: आगे।
3: कहने का सेंस ये था कि वो बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए उसमें ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए, और कोई सेंस नहीं था।
2: कौन सेंसिटिव होता है?
3: पौधा।
2: पौधे को लिसनर्स, पौधे को समझिएगा, इंसान को नहीं समझिएगा। आज इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं मुझे लग रहा है कि इसका आज दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो चलिए आगे के प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ।
3: इसको मैम का दिमाग बहुत अच्छे से काम कर रहा है,
2: इसको थोड़ा अभी आज के लिए आराम देते हैं। एंड सेकेंड थिंग, आपको हमेशा से मिट्टी चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि गमले की ऊपरी मिट्टी को छूकर देखना चाहिए। अगर मिट्टी सूखी लगे तभी आप पानी दें, अन्यथा पानी पौधे में ना दें। सेकंड है कि सर्दियों और बारिश में कम पानी देना चाहिए। सर्दियों के दिनों में, बारिश के मौसम में तुलसी को बहुत कम पानी की जरूरत होती है। भाई सर्दियों में तो जब हम लोगों को, इंसानों को कम पानी की नीड होती है, तो तुलसी के पौधे में भी पानी की जरूरत कम पड़ती है।
3: बिल्कुल,
2: क्योंकि कहा जाता है कि ऑक्सीजन का लेवल जब हम लोगों में कम होता है तो पेड़ पौधों में सबसे ज्यादा होता है।
3: राइट,
2: तो आप ये देख लो कि कहा जाता है कि मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी एक जीव के समान होते हैं, तो उनमें भी उतनी ही एक सेंसिटिविटी होती है जो कि एक इंसानों में होती है। ज्यादा पानी पी लीजिए, अगर आपने एक दिन में बहुत ज्यादा पानी पी लिया तो शायद कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी है कि अगर पौधों में ज्यादा पानी देने लगते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है, मिट्टी सड़ने लगती है, और सर्दियों में एंड खास करके बारिश में पानी कम देना चाहिए। उसके बाद आता है पॉइंट की सही धूप और सही जगह, जो सनलाइट की जगह है वो आपको सही चूज करनी चाहिए। 6 से 8 घंटे की धूप जो है वो तुलसी को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी जरूरत होती है। एंड पॉट को ऐसी जगह पर रखें जहां पर रोज कम से कम 5 से 6 घंटे की सीधी धूप आती हो। ठीक है, इसके बाद में सर्दियों में जो है वो ओस से बचाएं, जो ओस होती है ना उससे आपको बचाना चाहिए इस पौधे को। सर्दियों में रात के समय पड़ने वाली जो कोहरा होता है, जो ओस होती है जिसको पाला भी कहा जाता है, से तुलसी के पत्ते जो है वो काले पड़ जाते हैं। इसलिए ठंडक के दिनों में रात को पौधे को किसी शेड के नीचे रख दें या फिर कोई ऊपर से हल्का सूती कपड़ा डाल सकते हैं। एंड सबसे मोर इम्पॉर्टेंट जो थिंग मैं अब बताने जा रही हूँ वो ये है कि मंजरी को हटाना। आपने देखा होगा कि तुलसी के पौधों पे ब्राउन शेड में सबसे ऊपर एक हल्के से बीज आने शुरू हो जाते हैं। पहले वो ग्रीन होते हैं फिर वो ब्राउन हो जाते हैं, तो कहा जाता है कि वो उसको मंजरी कहा जाता है। काफी लड़कियों के नाम भी मंजरी है, आपने सुना होगा
3: जी।
2: तो वो मंजरी जो होती है ना उसको टाइम टू टाइम उसको हटा देना चाहिए। नहीं हटाने से एक प्रॉब्लम हो जाती है कि पौधा जो है वो बूढ़ा होने लगता है और फिर वो उसकी ग्रोथ जो है वो कम हो जाती
3: है।
2: इसीलिए जैसे आपको लगे कि ब्राउन ब्राउन आपके पौधे पर मंजरी आ गई है, उसे तुरंत ही आप किसी नाइफ से या फिर किसी कैंची से या फिर आराम से हाथ से भी उसको तोड़ करके अलग कर सकते हैं। अब उसको करना क्या है मंजरी को, मैं बताती हूँ। मंजरी को करना ये है कि आपने अलग से एक पॉट लेना है जिसमें अच्छी सी खाद एंड मिट्टी को मिलाना है और ये सारी मंजरी को उसमें डाल देना है। अब आप देखें कि अगर आपको तुलसी घर में बहुत ज्यादा उगाने का मन है तो सिर्फ बारिश के दिनों में आपने पॉट में डाल देना है और 10 से 15 दिन में ही वो जड़ पकड़ लेता है और बहुत ही अच्छा सा एक पौधा बन जाता है।
3: वाह, ये तो हुई बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन जो कि अभी आपको मिली है आरजे समता से, यानी कि हमारी मैम से। तो चलिए अब आगे की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बची हुई है वो भी दे देते हैं आपको और फिर चलते हैं दूसरे वाले गाने की तरफ
2: जी।
3: अभी मैंने जो सॉन्ग बजाया था वो बहुत ही प्यारा था।
2: हाँ, अच्छा था।
3: अच्छा था, आप दूसरे वाले की तरफ चलेंगे ये और भी अच्छा है
2: जी।
3: लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं जो इन्फॉर्मेशन है।
2: हाँ जी,
3: वो ये है कि तुलसी के लिए ऐसी मिट्टी तैयार करें जिसमें पानी न रुके। इसके लिए मिट्टी में थोड़ी सी रेत या बालू या फिर ऑर्गेनिक खाद की जरूरत होती है। अब अगर बात करें ऑर्गेनिक खाद की तो सबसे अच्छी होती है गोबर की खाद। ऑर्गेनिक खाद में गोबर की खाद सबसे अच्छी होती है, वो आपको जरूर डालनी चाहिए। सेकंड आता है कि हर महीने या 2 महीने में एक बार गमले की मिट्टी को हल्की सी उसकी जो है गुड़ाई करनी चाहिए। गुड़ाई करने का मतलब होता है कि उसको ऊपर नीचे करते रहना चाहिए,
2: चेक करना चाहिए।
3: और तुलसी में कभी भी केमिकल वाली खाद का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे तुलसी के पौधे बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। अगर तुलसी में काले या हरे रंग के छोटे छोटे कीड़े लग जाएं तो आप नीम के तेल की कुछ बूंदें पानी में मिला करके पौधे पे स्प्रे करें। इससे आपका पौधा बहुत ही अच्छा हो जाएगा और उसमें फिर कभी दोबारा कीड़े नहीं लगेंगे। आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बता दूं? बताई देती हूँ। ये कर सकते हैं कि साफ पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाइए और उस हल्दी में को पौधे की मिट्टी पे आप थोड़ा सा ऐसे डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि ये बेहतरीन एंटी फंगल होता है जिससे कि हमारे पौधे में कभी भी कीड़े नहीं लगते और हमारा पौधा और अच्छे से ग्रो करता है।
2: गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो इतनी

0: का काम करती है। तो भाई ये थी बहुत ज़्यादा वाली अच्छी वाली इन्फॉर्मेशन जो कि आपको हम लोगों ने पहुँचाई। एंड इसके बाद यानी कि अब हम लेने जा रहे हैं एक ब्रेक, एंड ब्रेक के बाद हम आएंगे सीधे चैट बॉक्स में और उसके बाद नई इन्फॉर्मेशन लेने आपको देने के लिए। तब तक के लिए सुनते रहे हमारे साथ 89.6 FM पे आपका अपना शो सुन सहेली, जिसमें आती है मैं हूँ आपकी आज समता
1: और मैं हूँ आज अंशिका।
0: स्टे ट्यून्ड।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: चलो भाई चलो चलो चलो चलो, वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी आरजे समता और साथ में आरजे
1: अंशिका।
0: तो चले चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि अभी आपने गाना सुना, एक मुलाकात भी जरूरी है सनम। यस एग्जैक्टली, आपका कोई भी रिश्ता है, कुछ भी है, लेकिन उसमें एक मुलाकात तो होनी चाहिए। उसमें भले मुकालात क्यों ना हो, लेकिन मुलाकात होनी जरूरी होती है।
1: तो होगी मुलाकात या फिर मुकालात, ये तो दूसरी बात है। हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे
0: जी,
1: जो कि आज का ये है कि सीनियर सिटीजन्स की जब भी बात होती है, घर के बड़े बुजुर्गों की, तो उनकी जो एक प्रॉब्लम कह लें या फिर उनके हेल्थ की वजह से ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, वो ये होती है कि उन्हें अपनी पूरी रूटीन में लाइफ में कहीं ना कहीं दवाई ज़रूर लेनी पड़ती है। वो उनकी डेली रूटीन का एक हिस्सा बन जाता है कि आपको मेडिसिन लेनी ही लेनी है, क्योंकि अपनी बढ़ती उम्र की वजह से वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के शिकार हो जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए डायबिटीज़ है, बीपी है, थायराइड है, तो कहीं ना कहीं मेडिसिन लेनी ही लेनी है। लेकिन मेडिसिन लेने का भी एक सही तरीका होता है। अगर आप उसको हट जाते हैं तो फिर वो मेडिसिन फ़ायदा करने की बजाय आपको नुकसान करती है। ठीक उसी तरह जैसे अगर हमारी लाइफ में कोई है और वो ट्रैक से हट जाता है इंसान, तो फिर उसके साथ खुशी के बदले हमें दुख मिलने लगते हैं।
0: बिल्कुल
1: ठीक उसी तरह। और अगर कोई ट्रैक पे रहता है तो सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती हैं, तो ट्रैक पे रहने वाला ज़्यादा बेस्ट है।
0: एग्जैक्टली। और जहाँ पर मेडिसिन की बात है, अगर बड़े बुजुर्गों की बात है, तो उनका भी एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए। और वो कैसे बनाना है, क्या करना है, वो सब बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आएंगे हम चैट बॉक्स में।
1: तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि किन्होंने हमारे लिए, मतलब हमारे किन किन लिसनर्स ने क्या क्या भेजा है। तो सबसे पहले है अनुष्का जी, जो कि श्रावस्ती से हमें सुनती हैं और लिख रही हैं गुड आफ्टरनून दोनों आरजे मैम।
0: गुड आफ्टरनून।
1: और कमल नयन जी आ गए, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून दोनों आरजे मैम।
0: गुड आफ्टरनून।
1: और साथ ही साथ हमारे न्यू लिसनर हैं, जो कि हैं तबिश खान जी, जो लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून आपको भी। और साथ ही साथ लिख रहे हैं मैं पहली बार सुन सहेली सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा,
0: थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू। और इसी के साथ हमारी गीतू जी आ गई हैं, जो कि लिख रही हैं शुभ दोपहरिया आरजे संता एंड आरजे अंशिका मैम। शुभ दोपहरिया गीतू जी, कैसी हैं?
0: शुभ दोपहरिया। और आप आए बाहर, आई और थोड़ा सा टाइम से आ गई हैं आज, आप तो बड़ा अच्छा लग रहा है। एंड मुझे एक अनाउंसमेंट भी करनी है कि आपके लिए हम हॉरर स्टोरीज लेकर के आते हैं, एक गुमनाम आरजे के साथ में, मतलब जो आरजेस हैं उनका, उनके नाम को हम लोगों ने रिवील नहीं किया है इस शो में, तो उनकी आवाज़ सुने, उनकी आवाज़ को पहचाने। एंड 9:30 बजे आता है, तो आप ज़रूर से सुना करिए, क्योंकि हर दिन एक अलग एक हॉरर स्टोरी होती है। और जो लोग थोड़ा सा थ्रिलर सुनने में जिन्होंने मज़ा आता है ना, तो ये हॉरर स्टोरीज बड़ी अच्छी लगती है, वो भी अगर FM पे सुनी जाए तो जैसे लगता है कि रात में जब हम सुन रहे हैं और आसपास कहीं कोई आ ना जाए, तो ऐसा ही फील होता है। आप उसे ज़रूर से सुने और उसका फीडबैक हमें ज़रूर दें, लेकिन याद रखिएगा कि आप अपनी लाइट्स ऑन करके ही सुने, अगर ऑफ करके सुनेंगे तो बेशक आपके आसपास कोई ना कोई रहेगा ही।
1: वाह, मुझे भी सुननी है, मैं तो जरूर सुनूंगी। तो चलिए अब इसी के साथ सुरेंद्र यादव जी आ गए हैं और लिख रहे हैं शुभ दोपहरिया। शुभ दोपहरिया सुरेंद्र जी,
0: शुभ दोपहरिया आपको भी।
1: कैसे हैं आप
0: जी? बहुत अच्छे। अच्छा, हमें लगा हमसे पूछा जा रहा है।
1: नहीं नहीं, आप तो मतलब मैं देख नहीं सकती हूँ
0: जी, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए अब हम लोग सही सही बोलेंगे, बिल्कुल झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे।
1: सही सही बोलेंगे,
0: झूठ के करीब बिल्कुल नहीं जाएंगे। हाँ। और सच ही बोलेंगे,
1: सच के पास बिल्कुल नहीं आएंगे।
0: हाँ, नहीं, सच बोलेंगे।
1: तो
0: दवाइयों का जो टाइम टेबल्स है वो हमें बनाना है, वो बनाएंगी अंशिका। और सही समय, सही जो तरीका होता है कैसे खानी चाहिए बड़े बुजुर्गों को, वो मैं आपको बताऊंगी।
1: वाह, बताने के लिए भी मैम ने पॉइंट क्या चूज किया है, सही समय और सही तरीका। वाह जबरदस्त, तो चलिए बताते हैं।
0: अपने आप से आ गया, क्योंकि पता नहीं। हाँ। लोग मतलब तुम और तुम्हारे साथ काफी लोग ये कहते हैं कि टूटे फूटे की मरम्मत मुझे अच्छे से आती है करनी।
1: हाँ। चलिए बढ़ते हैं, वरना अगर हम बातें करेंगे तो फिर आप यही कहेंगे कि आपकी बातें हो रही है और कुछ नहीं हो।
0: हाँ, और हम लोग तो कुछ सुन ही नहीं पा रहे। हाँ,
1: तो हम जो सुनाना है वही सुनाते हैं, क्योंकि जो नहीं सुनाना है वो हम ऑफ माइक बताएंगे
0: जी।
1: तो चलिए अब बताते हैं आपको कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले तो जब बात

0: टाइम टेबल की, तो वीकली अगर आपको दवा खानी है, जैसे कि हफ्तों के 6 दिन खानी है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है पिल बॉक्स। पिल बॉक्स आजकल बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है, जिसमें कि मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे करके ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं, संडे तक के बॉक्सेस बने होते हैं, और साथ में उसमें लिखा भी होता है सुबह दोपहर शाम। तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको दवाइयाँ सारी पैकेट से निकाल करके, और जैसे आपको खानी है, मान लीजिए आपके पास 4 पैकेट्स हैं और आपको उसमें से एक एक पिल खानी है एक टाइम में सुबह दोपहर शाम, तो जो जो आपको पिल्स खानी है वो आप उसी तरीके से और उसी डे के हिसाब से सेट करके उस पिल बॉक्स में डाल दीजिए, पिल बॉक्स को बंद कर दीजिए, और जब आपको खानी हो तब आप निकाल के खा लीजिए। इससे कभी भी आपका टाइम जो है वो मिस नहीं होगा। और पिल बॉक्स से हमें ये भी पता चल जाता है कि हमने कौन सी दवाई खा ली है, क्योंकि कई बार घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो सोचते हैं अरे मैंने दवाई खाई थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने नहीं खाई थी।
1: हाँ, हमेशा मम्मी के साथ यही होता है।
0: और पिल बॉक्स में अगर हम डाल देते हैं तो उसका जब एक बॉक्स खाली हो जाता है तो हमें ये समझ में आता है कि हाँ इसमें दवाई नहीं है, इट मींस कि मैंने अपनी एक टाइम की मेडिसिन
1: एक डोज मैंने खा ली
0: ले लिया है। तो पिल बॉक्स बहुत अच्छा तरीका है, स्पेशली उनके लिए जो भूल जाते हैं, तो पिल बॉक्स का आप यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि आप चार्ट या फिर मोबाइल में अलार्म भी सेट कर सकते हैं। आप एक चार्ट बना करके अपने घर की दीवारों पे लगा दीजिए कि मुझे इतने टाइम ये चीजें खानी है दवाइयाँ, और दूसरा होता है कि हमारे मोबाइल में अलार्म सेट कर लें कि कौन सी दवाई कब लेनी है, जब अलार्म बजेगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमें ये दवा इस तरीके से और इस टाइम पे लेनी है। अब आते हैं सही समय और सही तरीका।
1: जी, तो सही समय और सही तरीका ये है कि सबसे पहले तो मैं बता दूं, इसमें बच्चे बूढ़े और जवान तीनों के लिए ये हिदायत है कि कभी भी खाली पेट दवा नहीं खानी चाहिए। डॉक्टर्स या जो फार्मिस्ट होते हैं उनसे अच्छी तरह समझ ले कि कौन सी दवा खाली पेट लेनी है और कौन सी दवा खाने के बाद। कहा जाता है कि एसिडिटी की दवा जो होती है वो हमेशा से डॉक्टर्स बोलते हैं कि खाली पेट लेनी चाहिए
0: जी।
1: लेकिन बाकी दवाइयों के लिए कहा जाता है कि कभी भी खाली पेट दवा नहीं खानी चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या होता है कि उन्हें नई जानकारी होती है और दवाइयाँ एक बिस्किट खाने के बाद में चाय पीने के बाद में आप दवाइयाँ पूरा पूरा डोज ले लेते हैं
0: जी मैम,
1: जिसका साइड इफेक्ट आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे बीपी लो हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, या फिर ऐसी पूरी बॉडी आपकी लूज हो जाएगी, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी में। तो प्लीज़ ऐसा काम बिल्कुल ना करें। दूध या पानी, लगातार दवाइयाँ गुनगुने या सादे पानी के साथ ही लेनी चाहिए, जब तक डॉक्टर ना कहे कि आप दवाइयों को दूध या चाय या जूस के साथ बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। अगर डॉक्टर बोल रहे हैं कि उसको दूध के साथ या चाय के साथ लो तो ही आप ले, अदरवाइज हमेशा से दवाइयाँ जो हैं वो गुनगुने पानी या सादे पानी के साथ ही लेनी चाहिए। दवाइयों की जो लिस्ट है वो हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि कई दवाइयाँ जो होती है ना वो हमारे घर के जो बड़े हैं वो हमेशा से भूल जाते हैं, जैसा अंशिका ने बताया। तो एक डायरी या पर्चे पर बुजुर्गों की सभी दवाइयों के नाम, उनकी एमजी यानी कि कितने एमजी का है, और उनके लेने का सही सही और साफ साफ समय ज़रूर से मेंशन कर देना चाहिए।
0: बिल्कुल, और जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएं तो पुरानी लिस्ट या दवाई का डिब्बा जो आपके पास हो उसे साथ लेकर जाइए, ताकि ऐसी जैसे जो उन्होंने पहले दिया था तो उसी हिसाब से वो आपको दवाई दें, ताकि नुकसान ना हो।
1: बिल्कुल, एक पॉइंट और है मेरे पास कि दवाइयों को काफ़ी लोगों की आदत मैंने देखी है कि वो उसे तोड़ने मतलब जो तोड़ करके खाते हैं और या फिर उसको चबा लेते हैं। एक बार बताऊँ, तोड़ के खाने तो मेरी भी आदत है, कभी कुछ होता है ना तो मैं दवाइयों को पहले तोड़ लेती हूँ, मतलब डोज सेम रहता है लेकिन मुझे लगता है कि उसको तोड़ के खाऊं।
0: मतलब मैम दवाइयों को भी नहीं छोड़ती?
1: हाँ, मैं दवाइयों को भी नहीं छोड़ती हूँ। तो कई दवाइयाँ जो होती हैं वो सस्टेंट रिलीज यानी SR या एक्सटेंटन रिलीज यानी XR होती हैं, जिन्हें धीरे धीरे शरीर में घुलना होता है। डॉक्टर की सलाह के बिना कभी भी गोलियों को तोड़ कर या पीस कर या चबा कर ना दें। अगर निगलने में दिक्कत हो तो डॉक्टर से उसका लिक्विड फॉर्म यानी कि सिरप फॉर्म में आप उसे ले सकते हैं।
0: यानी तोड़ना नहीं है और उसके साथ कोई प्रयोग नहीं करना है, बस आपको ऐसे उसे खा लेना है।
1: ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट है कि साइड इफेक्ट्स पर जरूर ध्यान रखें कि दवाइयाँ जो हैं वो आपको साइड इफेक्ट क्या कर रही हैं, कितनी टाइम के बाद, जैसे कहते हैं ना कि उनकी जो एक डेट होती है, रिलीजिंग डेट होती है, वो एन एक्सपायरी डेट जो होती है

0: भी हमेशा से चेक करके ही दवाइयाँ आप केमिस्ट के शॉप से लें, क्योंकि एक्सपायरी डेट भी अगर आपने अपने घर के किसी भी मरीज को दे दिया तो उसका भी साइड इफेक्ट आपकी बॉडी में हो सकता है। तो ये थी जानकारी कुछ दवाइयों को लेकर की। आई थिंक आई होप सो कि आपने ये सारी जानकारी आपके पास पहले से होती है, पर हम लोगों का काम है कि उसको और रिवील से बनाना और अच्छे से बताना और डेफ में जाकर के उनकी जानकारी देना। तो इस जानकारी के बाद आइए हम लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे हम दोनों, यानी मैं हूँ आपकी आज समता
1: और मैं हूँ आज अंशिका।
0: तो दोनों मिलेंगे एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहें हमारे इस प्यारे से शो को, इस प्यारे से गाने को। स्टे ट्यून्ड।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
0: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838288386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब
2: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें

0: 8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में आज अंशिका। तो फटाफट शुरू करते हैं आज के लास्ट बट नॉट लीस्ट वाले सेगमेंट की ओर चलते हैं, जो कि है कि हम अपने घर के बड़े बुजुर्ग यानी वरिष्ठ नागरिकों को, सीनियर सिटीजन्स को, उनके जीवन के उस पड़ाव पर हम ऊर्जावान बना सकते हैं, उनकी कई चीजों को हम फिर से एक नया बना कर सकते हैं। क्यों अंशिका?
4: बिल्कुल नया कर सकते हैं।
3: एंड ये कारण तब होता है कि जब वो उम्र के साथ आने वाले अकेलेपन और शारीरिक बदलाव के कारण कई बार हताश महसूस कर लेते
4: हैं।
3: ऐसा होता है,
4: ऐसा होता
3: जब
4: है।
3: उन्हें नींद नहीं आती है, जब वो मेडिसिंस लेते हैं, जब वो कहीं चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो वो पूरा ब्लेम जो है ना वो घर के अपने बच्चों पे डाल देते हैं
4: जी,
3: कि तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की चीजें है ना। तो उन्हें जरूरी है कि हम उन्हें एक इम्पोर्टेंट महसूस करवाएं। उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि आप हमारी जिंदगी में इम्पोर्टेंट हैं, आप हमारे घर के लिए इम्पोर्टेंट हैं, आप अगर नहीं चलोगे तो हम लोग नहीं जाएंगे, अगर आप नहीं खाओगे तो हम नहीं खाएंगे, अगर आप कहीं घूमने नहीं चलोगे तो हम लोग भी प्लान कैंसिल कर देंगे, इस टाइप का कुछ भी इम्पोर्टेंट उनको कराना चाहिए, जैसे स्पेशल फील कराना चाहिए। तो उसके लिए छोटी सी सलाह ये है कि घर के छोटे बड़े फैसलों में, चाहे वो बच्चों की परवरिश में हो या किसी की फैमिली के टॉपिक पर हो, उनकी सलाह लेना जरूर लें, उनकी सलाह जरूर से लें, उनकी राय जरूर से लें, तभी उन्हें लगेगा कि उनकी बात की अहमियत है और उनका आत्मसम्मान उनसे बढ़ेगा।
4: बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम किसी से पूछ लेते हैं या उससे ये कह देते हैं कि अरे देखो मम्मी ये कलर अच्छा लगेगा, तो सिर्फ उतना ही बहुत होता है, या इंपॉर्टेंट फैसलों में जब आप उनको इन्वॉल्व करते हैं तो उनको लगता है कि वो आपके लिए जरूरी है।
3: बिल्कुल, और साथ में सेकंड पॉइंट ये है हमारा कि उनके द्वारा बिताए गए उनकी लाइफ के बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं, कुछ कहानियां होती हैं, कुछ उनका खुद का एक्सपीरियंस होता है, कुछ बुरी बातें होती हैं, कुछ खराब इंसिडेंट्स होते हैं या कुछ अच्छी यादें होती हैं, वो चाहते हैं कि हमारे सामने बैठें और हम वो सारी बातें शेयर कर सकें। तो उन्हें सुने, उनके साथ बैठें और उनके अच्छे से खराब सारे एक्सपीरियंस को आप खुद फील करके सुने, तो उन्हें अच्छा लगता है कि हाँ मतलब जो मेरी लाइफ में बीता हम उनके साथ शेयर कर रहे हैं, तो ये बहुत ही इंटरेस्ट से उस बातों को सुन रहे हैं।
4: बिल्कुल।
3: और उसके बाद में सेकेंड पॉइंट है कि बहुत सारी ऐसी हॉबीज होती हैं जो कि आजकल सोशल मीडिया पर मतलब लोग बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, जिसमें वीडियो कॉलिंग। वीडियो कॉलिंग तो आजकल प्रचलन में है, ये हो जाता है कि भाई अपनों से बैठ करके वीडियो कॉलिंग पे बात करें, उनके खास उनकी बेटी है, उनका बेटा है, या फिर उनके खास कोई रिलेटिव, एंड यूट्यूब पर अपनी पसंद के भजन या फिर कुछ ऐसे कुकिंग को देखना, पुराने दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप पे मिलना जुलना, उनसे बातें करना, तकनीकी से जुड़कर उन्हें ये सारा अकेलापन दूर करवाना
4: बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कहते हैं ना कि टेक्निक जैसे बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत डेवलप हो गई है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद भी साबित होती है।
3: हाँ जी बिल्कुल। और यही नहीं, एक चीज और है कि उनकी पुरानी बातों को दोहराना, उनकी पुरानी हॉबीज को दोहराना। क्या हो जाता है कभी कभी कि जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, पुरानी हॉबीज को वो पीछे भूल जाया करते हैं। तो काफी लोगों की उनकी हॉबीज होती है, जैसे सिंगिंग करना, डांसिंग करना, बुक्स पढ़ना, पेंटिंग करना, घूमना फिरना, तो इन सारी हॉबीज को क्या है, उन्हें बैठ करके पहले उनके घर के बच्चों को पूछना है कि आपकी हॉबी क्या हुआ करती थी, फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं समय मिलने पर उन हॉबीज पर काम करना और उन्हें प्रेरित करना कि ऐसा है कि आप इसको फिर से आप शुरू कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जीने की फिर से एक नई उमंग ला सकते हैं।
4: बिल्कुल, और वाह क्या बताया मैम, बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पर, जो कि ये है कि उनकी कहीं ना कहीं फिजिकल फिटनेस के साथ उनकी मेंटल

0: फिटनेस पे भी ध्यान देना चाहिए जो कि बढ़ती उम्र में ज्यादा बिगड़ जाती है। तो मेंटल हेल्थ को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका आपको पता है क्या है? सुबह जल्दी खुद भी उठिए, उन्हें भी उठाइए, अच्छे से ड्रेसअप होइए, ड्रेसअप होने का सेंस है बढ़िया से जॉगिंग शूज पहनिए, कपड़े पहनिए जॉगिंग वाले, अच्छे से उन्हें भी पहनाइए और न्यू जरूर लीजिए, क्योंकि जब हम किसी नए काम के लिए जाते हैं न्यू कपड़े खरीदते हैं ना, तो उस कपड़े उन काम से हमारा एक्साइटमेंट जुड़ जाता है कि मैंने, अरे यार मैंने पार्क जाने के लिए नया ट्रैक सूट खरीदा था, चलो जाते हैं,
1: भले फिर जाओ या ना जाओ।
0: हाँ वो
1: अंशिका जैसे लोग हैं, भले वो
0: नहीं जाए, मतलब मैम मतलब आप जाए कहने का सेंस ये था, और जाइए और उनके साथ बढ़िया से टहलिए, और जब आप सुबह वॉक करेंगे उनके साथ तो उनके साथ बातें करिए और उनसे ये कहिए कि अरे अभी तो आप ये काम भी कर सकते हो ना, ये सबसे पहले फील कराना है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते।
1: Exactly.
0: दूसरी चीज आती है कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को भी एक्सरसाइज की जरूरत होती है, और दिमाग को एक्सरसाइज कराने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो पेपर में आता है ना वो पहेलियां सॉल्व करने वाला
1: सुडोको
0: खेलना चाहिए।
1: तुम्हें आती है वो?
0: हाँ मुझे आती है।
1: मुझे नहीं आती, मुझे कभी बताना कैसे हुआ।
0: जरूर बताऊंगी आपको, मुझे आती है, उसमें नंबर्स जोड़ के बहुत अच्छा होता है वो
1: जी।
0: और अगर आप खेल लेते हैं तो आप शतरंज खेल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा गेम है ये, और इसमें जितनी जब आप अपने माइंड को लगाते हैं ना, यूज करते हैं, तो उससे आपकी मेंटली एक एक्सरसाइज होती है जिससे आपका दिमाग फिट रहता है।
1: ओके
0: यस।
1: और लूडो?
0: लूडो भी खेल सकते हैं। और सेकंड आता है कि थोड़ा सा आपको उनके साथ रोज 15 से 20 मिनट बिताने हैं, और ये बिताने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊं कि सुबह के ब्रेकफास्ट में, या फिर आप लंच करते हो दोपहर में, या फिर रात में, तो तीनों टाइम में एक टाइम घर के सभी लोगों को बैठकर एक साथ लंच डिनर या ब्रेकफास्ट में से कुछ भी एक करना चाहिए, ताकि वो टाइम आपको फैमिली टाइम के लिए
1: स्पेंड करने मिल जाए, अलग से एक अलग से खुशी हो जाती है।
0: बिल्कुल।
1: तो
0: और अच्छी अच्छी चीजें बनाएं, अच्छी अच्छी चीजें खाएं, जो उन्हें पसंद है वो उन्हें खिलाएं, जो आपको पसंद है वो आप अपने लिए बनाएं।
1: गुड पॉइंट्स।
0: ये तो
1: मतलब लास्ट बट नॉट लीस्ट में देखिए, आज हम सोच रहे थे कि हमारे पूरे शो में खाना नहीं आया है, मतलब आज हम बहुत लकीली थे कि अभी लास्ट में अंशिका से बोलूंगी निकलते समय कि आज अंशिका आपने कुछ खाने की बात नहीं कही, और मतलब देर आए दुरुस्त आए, लास्ट बट नॉट लीस्ट में इसने एक खाने वाला जो सेगमेंट था वो भी इसने पूरा कर दिया।
0: तो भाई जो लास्ट में आते हैं, मतलब जो देर से आते हैं, वो हमेशा दुरुस्त ही आते हैं, पता है आपको?
1: हाँ जी पता है, लेकिन चलते हैं आप सीधे टिप ऑफ द डे। तो टिप ऑफ द डे क्या है अंशिका?
0: टिप ऑफ द डे, तो भाई अभी अभी हमने आपको बहुत ही अच्छा सा मोटिवेट किया, अब हम जाते जाते टिप ऑफ द डे जो देकर जाएंगे वो है एक बहुत ही मस्त वाला, जबरदस्त वाला, और सिर्फ आज के बड़े बुजुर्गों के लिए। और वो ये है कि कहते हैं ना कि ध्यान हमेशा अपनी एक मंजिल पे होना चाहिए, दूसरों की बातों पे नहीं। तो जब हमारी उम्र बढ़ती है और हम एक वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं पूरी तरीके से, तो सब लोगों की एक थिंकिंग आ जाती है, अरे यार अब क्या करना, अब तो लाइफ खत्म हो गई, अब तो भगवान का नाम लो, आराम से बैठो, बच्चे जो कहते हैं उसे सुनो। तो इस तरह की फालतू बातों को आपको हटाना है, और अपनी फैमिली पे अपना जो कंट्रोल पहले था वही आपको आज भी रखना है, और अपनी एक इम्पोर्टेंस बनानी है। बिल्कुल, आज जाते जाते हम यही बताना चाहेंगे कि अपनी एक इम्पोर्टेंस आपकी फैमिली में जो तब थी जब आप बिल्कुल यंग हुआ करते थे, वही इम्पोर्टेंस आपको बनाए रखनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम ही अपने बच्चों को शायद खुद इतनी छूट दे देते हैं कि वो कहीं ना कहीं हमें इग्नोर करने लगते हैं, या फिर इग्नोर नहीं भी करते हैं तो कई बार हम खुद ही अपनी जगह को छोड़ देते हैं, और फिर हमें फील होता है कि अरे हमारे बच्चे तो हमें इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे। तो सबसे पहले आप खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देंगे तो सभी आपको इम्पोर्टेंस देंगे।
1: गुड आइडिया।
0: इतना हल्का सा हूँ।
1: नहीं, वो इतना ये इसलिए था क्योंकि कहीं जब स्टार्टिंग में जब अंशिका आई थी यहाँ पर, तो ये मेरे बोल थे कि अंशिका मैं, ये पूरा मेरा हुआ, ये रट्टू तोता है, ये सिखाई हुई है और अब अपने आप को वो समझ रही है। तो अंशिका को याद होगा कि सबसे पहला अध्याय मैंने इसको यही दिया था कि जब तक आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आप नहीं करेंगे, आपकी सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा।
0: राइट।
1: और ये एक बहुत बड़ा शोधकरण से हुआ है कि जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, आपको लोग क्या समझेंगे कि अरे ये तो एवे ही है। तो आप अपने आप को एवे ही ना बनाने दें, आप अपने आप की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि आप जब आप खुद की इज्जत करेंगे तो ही आपके सामने वाले आपकी इज्जत को समझेंगे और करेंगे। तो ये था आज का मूल मंत्र। चलिए अब हम दोनों को दे इजाजत और फीडबैक देना ना भूलिएगा। कल मिलेंगे सेम प्लेस सेम टाइम पर, तब तक के लिए सुनते रहें हमारे बहुत सारे आगे के प्रोग्राम्स, और पानी पिए, गर्मी बहुत है, और हो सके तो थोड़ा सा पानी अपने घर की छतों पे भी रखें अपने पशु पक्षियों के लिए। तो फाइनली अब दोनों को दे इजाजत, मिलेंगे कल। टेक केयर, बाय बाय
0: बाय दोस्तों।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे के एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 72-34-020-202।

0: 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
1: जी हाँ श्रोताओं, अब बारी है आपकी और आपको करना क्या है, नंबर मिलाना है भाई, क्योंकि वक्त हो चला है आपके अपने फोनी फरमाइश कार्यक्रम कॉलर ट्यून गोंडा का। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आज आकांक्षा, लेकर आ गई हूँ आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम। जी हाँ, आपने ट्यून कर रखा हुआ है रेडियो 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। फैला रही धड़कन काफी सारी जगहों की धड़कन बन चुकी है, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जी हाँ, जो जहां से भी जुड़ते हैं और इतना प्यार और इतना सहयोग करते हैं हमारा। अभी बढ़ेंगे हम उस ओर, यानी कि शो का आगाज करेंगे, और शो का आगाज जैसे कि मैं हमेशा से करती हूँ अपने पसंदीदा नगमों से। तो अपनी प्लेलिस्ट से एक प्यारा सा गाना, लेकिन उससे पहले बता दूं डिमांड्स हमारे पास आना शुरू हो गई है। कल जिनकी डिमांड रह गई थी या जो नए लिसनर होंगे उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। कल जिन जिनके सॉन्ग हुए थे, अगर वक्त रहा तो हम उनके सॉन्ग को बाद में प्ले करेंगे, अदरवाइज भाई सबको मौका मिलना चाहिए, हम कभी दो अखी नहीं करते हैं। और हाँ, एक बात और कि अगर आपने अभी तक कॉल नहीं मिलाई है तो नंबर वही है 6393316429। और फिलहाल के लिए हमारे पास में जितने गाने आ गए हैं उनमें से हम प्लेलिस्ट कर चुके हैं, तो उनको पहले प्ले करते हैं फिर बढ़ेंगे बाकी नगमों की ओर। लेकिन सबसे पहली डिमांड आपकी अपनी आरजे आकांक्षा की पसंद की, एंजॉय करिए भाई 3 से 4 के सफर में। मैं हूँ आपके होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा, और शो आपका पसंदीदा प्रोग्राम वही, जी हाँ, जिसका नाम है कॉलर ट्यून गोंडा। और ये गाना हमारी ओर से आप सभी के लिए, एंजॉय करिए।

हाँ जी, और स्पेशली डेडिकेशन मैं करती हूँ इस सॉन्ग का रूहानी जी को। काफी दिनों बाद आप मुझे नजर आ रही हैं, प्यारी मनभावन सखी को अपनी। हाँ जी, एंजॉय करते रहिए इस सुपर डुपर हिट नगमे को। फिर आते हैं मुस्तफा जी के सॉन्ग के साथ में, और वो सॉन्ग हम डेडिकेट करने वाले हैं कुमार साहब आपको, एमपी रीवा वाले हमारे कुमार साहब। देन हम आगे बढ़ेंगे पंडित जी के सॉन्ग की ओर, और फिर हमारे देवी प्रसाद जी। कल आपका सॉन्ग रह गया था मुझे याद है, एंजॉय करिए।

हाँ जी, तो ये आपकी अपनी आरजी आकांक्षा की पसंद से उसकी प्लेलिस्ट से पहला गाना। और अब आज की पहली डिमांड लेते हैं मुस्तफा जी की, जो हमें सुनते हैं सऊदी अरेबिया से, और डेडिकेशन करते हैं कुमार साहब आपको स्पेशली। एंजॉय करते रहिए भाई 3 से 4 के सफर को विथ योर आरजी आकांक्षा। ओए हो, क्या गाना भेज दिया भाई मुस्तफा जी, क्या क्या क्या ही बोलूं। आप तो ऐसा लगता है कि मेरी ही प्लेलिस्ट आपने उठा के अपनी प्लेलिस्ट बना ली है। थैंक यू सो मच।

भाई डेडिकेशन करने का एक सीधा सादा सा फंडा है अपन का कि हमने कुमार जी को क्यों डेडिकेट किया है। तो डेडिकेट इसलिए क्या है क्योंकि ये हमारे चैट बॉक्स के मोस्ट वांटेड, जी हाँ, क्या है, बैचुलर। आज एंजॉय करते रहिए।

0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और अब बढ़ते हैं अगली डिमांड की ओर, लेकिन उससे पहले बताना चाहेंगे जिन जिन ने भाई अपनी डिमांड चैट बॉक्स में की है, प्लीज कॉल करिए, तभी मैं आपके गानों को प्ले कर पाऊंगी। अदरवाइज आई एम सो सॉरी, और मुझे मालूम है वक्त रहते अभी आप कॉल जरूर मिलाएंगे। और अब बढ़ते हैं पंडित जी की डिमांड की ओर, और देन आते हैं हम अपने देवी जी आपके डिमांड के साथ में। फिलहाल सावन आने वाला है और सावन आ भी गया है, कुछ दो चार बूंदे तो पड़ी गई हैं, तो बादशाह जी के साथ में थोड़ा सा रॉक एंड रोल कर लेते ना इस गाने के साथ, आगे बढ़ते हैं।
1: आए हाय आए हाय, ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

क्या बात है भाई, अगर इस गाने को आपने हेडफोन लगा करके सुना है ना, तो बिना नाचे आपका मन का मयूरा रह ही नहीं पाएगा, आप थिरकन में आ जाएंगे और थिरकन की मुद्रा में आप काफी ज्यादा, जी हाँ, कॉमेडियन लगेंगे, मुझे मालूम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड के साथ में, और ये डिमांड हमारे पास में आई हुई है देवी प्रसाद जी की, और देवी प्रसाद जी के बाद में हम चलेंगे किसकी डिमांड की ओर, ये भी आपको हम बता देते हैं। तो नेक्स्ट डिमांड होगी हमारे ताविश खान जी की, और उसके बाद होंगे सुरेंद्र यादव जी, फिर होंगे हमारे बादल गोयल जी, और उसके बाद में दो गाने आए हुए हमारे पास में डेडिकेशन के, हम वो प्ले कर रहे हैं फिलहाल ही गाना।

हंसी आ रही है, कारण क्या है आप भी सुनिए, आप भी मुस्कुराइए। हम अकेले क्यों मुस्कुराए, आप भी मुस्कुराइए। हाँ जी, कुमार सवाल लिखते हैं, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम लेना भाग यहाँ से। ओ हम नवाज, क्या बात है भाई साहब, इतना तो हमने सोचा भी नहीं था अपनी जिंदगी से। और बात ये भी सही है कि हम इतनी मुश्किलातों में पड़ते ही नहीं है, मुश्किल अगर आती भी है तो साइड मार देते, कहते भैया रास्ता आगे है, आगे को बढ़ जाओ, क्योंकि हम लेते ही नहीं है। अगर मुश्किल जनाब हमको कुछ देते हैं तो हम उनसे लेते ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में अगर कोई टिपिकल टाइम आए, टिपिकल पीरियड आए, क्या होता है क्या इंसान मतलब बहुत छोटी छोटी चीज को टूल दे करके, उसको वजन दे करके भारी कर देता है। और अगर आप उस पर वजन ही नहीं देंगे, भारी उसको बनाएंगे नहीं, तिल का ताड़ करेंगे नहीं, तो फिर वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। खुश रहिए, मस्त रहिए, एकदम अपनी आरजी आकांक्षा की तरह। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर। और ये डिमांड किसकी है, हमने किसकी किसका नाम लिया था, मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ, लेकिन हाँ हमारे प्यारे लिसनर, हाँ जी याद आ गया, ताविश खान जी। तो इनकी डिमांड लेते हैं और फिर आएंगे सुरेंद्र यादव जी की डिमांड के साथ, फिर होंगे हमारे बादल गोयल जी। अपनी अपनी बारी का इंतजार करते रहिए। और तीन नगमे डेडिकेशन में, भैया तीन नगमे आ गए हैं आज, हम डेडिकेशन के सॉन्ग कैसे छोड़ सकते हैं। फिलहाल ये गाना एंजॉय करिए और कहना इनका, भैया हम आप कोई भी अगर हंस के बात करता है तो दुनिया में जलते हैं, जलने दीजिए और आप खुश रहिए। एंजॉय द ट्रैक।

जमाना अपना काम कर रहा है, आप अपना करिए ना, उसको लगने दीजिए बुरा, आप मुस्कुराते रहिए और जलाइए। देखिए एक बात है, मेरा जो सीधा सा फंडा है मेरी लाइफ का, जो मैं जिस तरह से जीती हूँ, आप भी अगर उसको अपनाएंगे तो बहुत ज़्यादा ही खुश रहेंगे। भाई आप चाहते हो मैं गुस्सा हूँ, मेरे को होना ही नहीं है। आप चाहते हो मैं आपसे बदला लूँ, मेरे को लेना ही नहीं है। मेरी लिस्ट के हिसाब से, मेरे मूड के हिसाब से जब मेरा मन होगा तो मैं आपसे बदला लूँगी। दूसरी बात, जैसे होता नहीं लोग बोलते हैं लोहा गर्म है इस पर हथौड़ा मारा ना, मेरा जब लोहा ठंडा होता है तब मैं मारती हूँ। पहले पता करके आइए कि इस लोहे को गर्म किसने किया। तो ऐसे ऐसे वाले थोड़े थोड़े वाले फंडे को आप बदलिए अपनी लाइफ में थोड़ा सा, और अगर अच्छा ना हो जाए आपका जिंदगी जीने का तरीका तो फिर नाम तो आप बदल ही सकते। वैसे भी काफी सारे नाम दे दिए हैं, एक दो और बदल देंगे तो अच्छा लगेगा। फिलहाल बढ़ते हैं सुरेंद्र यादव जी की डिमांड की ओर और फिर आते हैं बादल गोयल जी आपकी डिमांड के साथ में।

हैं और सज सवर चुके हैं, अब हम आगे बढ़ चुके हैं एक और नगमे की ओर। और वक्त की बात करें तो 3:21 बाई स्टूडियो क्लॉक, लेकिन अभी तो माहौल बना नहीं, अभी मूड सेट नहीं हुआ। एक दो गाने और बजेंगे, फिर डेडिकेशन के सॉन्ग आएंगे, फिर आप लोगों के पैगाम आएंगे, फिर बाकी नगमे आएंगे। भैया डिमांड्स लगातार आ रही, कॉल्स भी लगातार आ रही है, तो फिर देर किस बात की। आपको पहुंचाते हैं बादल जी का गाना और फिर आते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड के साथ में, लेकिन अभी हम नहीं बताएंगे कि नेक्स्ट डिमांड है किसकी। एंजॉय करिए।

जी हाँ, और इन्होंने पूछ लिया भाई कि अपनी इन्हीं अदा से पूछ लो, तो हम अपनी अदाओं से पूछते रहेंगे, लेकिन उससे पहले बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर। और डिमांड आई हुई है डेडिकेशन में, और डेडिकेशन के डिमांड्स लगातार 3 से 4 हमारे पास आ चुके हैं। तो अभी इन डिमांड्स वाले मतलब डेडिकेशन वाले सॉन्ग्स को हम कंप्लीट करेंगे 3 से 4 के सफर में। शो है आपका फोनी फरमाइशी कार्यक्रम कॉलर ट्यून गोंडा। कॉल करने के लिए नंबर वही है 6393316429। और ये गाना है हमारे दरक्षा अंसारी जी की ओर से, सीतापुर से आया हुआ, प्रमुख जी के लिए, फ्रॉम लुधिया अननी, फ्रॉम सीतापुर टू लुधियाना। चलिए इस गड्डी को आगे बढ़ाते हैं, एक्सप्रेस वे पे थोड़ा सा रफ्तार मेल चलाते हैं।

जी हाँ, और लगातार आप लोग की कॉल्स भी आ गई हमारे पास में, और अब वक्त हो गया नेक्स्ट डेडिकेशन के सॉन्ग को प्ले करने का, और ये है नीना जी की ओर से आपकी अपनी आरजे आकांक्षा और उनकी प्यारी प्यारी बहनों के लिए, जिनमें इन्होंने नाम मेंशन किया है कायनात जी और इनकी प्यारी छुटकी यानी नेहा जी के लिए। एंजॉय करते इस ट्रैक को, फिर आते हैं नेक्स्ट डेडिकेशन वाले सॉन्ग के साथ में।

क्या बात है भाई, बहुत ही शानदार और उम्दा सॉन्ग का सिलेक्शन किया गया है नीना जी की ओर से। चंगू जी मजा आ गया, थैंक यू सो मच। इसके बाद की लाइन देखिएगा कितना मतलब फीलिंग है।

क्या बात है भाई, रब की भी कसम खा ली गई है। और अब बढ़ते नेक्स्ट डेडिकेशन वाले सॉन्ग की ओर, और ये सॉन्ग आया हमारे पास में अमन जी की ओर से, और ये भी आरजे अमन जी जो हमें सुनते हैं हॉट स्टार से और बिहार से, डेडिकेशन हमारे लिए है। थैंक यू सो मच तहे दिल से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गाना बहुत प्यारा है, बहुत नीमन है, और हम भी गुनगुनाना पसंद करेंगे। फिलहाल सुनिए आप सभी इस प्यारी सी डिमांड को।

यकीन मानिए कि सांसों में अगर कोई बस जाता है ना, फिर कुछ और जहन में आता ही नहीं है। दिन रात 24 घंटे सांस लेते, उठते, बैठते, सोते, जागते, खाते, खेलते, कूदते, बस वही इंसान होता है।

भाई हम जिनको याद करते हैं, पता नहीं क्यों उनको याद करते ही मेरे चेहरे पे बड़ी वाली स्माइल आती है। और उम्मीद है कि आप लोग की लाइफ में भी कुछ ऐसे प्यारे प्यारे दोस्त होंगे, कुछ ऐसे प्यारे प्यारे समवन स्पेशल होंगे, या फिर कोई नन्हा मुन्हा प्यारा सा होगा, या फिर आपकी जिंदगी का कोई ऐसा याद या लम्हा होगा जिसको याद करके आप मुस्कुराते होंगे। फिलहाल सुनते रहिए इसी डिमांड को, यानी कि आरजे अमन जी की डिमांड को। फिर आएंगे नेक्स्ट सॉन्ग के साथ में, जो होगी अरमान जी की। फिर होंगे हमारे प्रेम मौर्य जी, जो हमें सुनते हैं सीतापुर से, आज पहली बार उनका फरमाइश हम तक आया हुआ है। फिर होंगे अरविंद मौर्य जी मनकापुर से, अजय मिश्रा जी, राम भवन जी, और फिर बाकी सभी की डिमांड।

0: सुबह शाम।
1: बेहद उम्दा डिमांड भाई, आपका सॉन्ग सिलेक्शन माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया। अभी बढ़ते हैं अरमान जी की डिमांड के साथ में, और फिर आएंगे नेक्स्ट डिमांड लेकर के प्रेम मौर्या जी आपकी, और फिर अरविंद जी, अजय मिश्रा जी, राम भवन जी, आप लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार करते रहिए, और उसके उपरांत वक्त हो चलेगा चैट बॉक्स की ओर रुख करने का।

भाई हम तो चाहते हैं ये जानना आप सभी से कि आप लोगों की कैपेसिटी क्या है, फिर आपकी अपनी आरजी आकांक्षा बताएगी कि गोलगप्पा खाने में वो कितनी माहिर है। फिलहाल हम आप लोगों से जानना चाहते हैं एक बार में आप लोग कितने गोलगप्पे खा सकते हैं। फिलहाल

जी हाँ, तो हम देखते हैं कि कौन कितना गोलगप्पा खाता है, इसका जवाब हम तक आना चाहिए। जब हम मैसेजेस की बारी आएगी तो जरूर लेंगे भाई, देखेंगे कि कौन विनर बनता है और हम भी बताएंगे कि हम कितने खा लेते हैं। हमारे इतना तो कोई खा ही नहीं था, मैं सोच भी नहीं सकते होंगे आप कि हम कितना खा लेते हैं। हमें मालूम है हम जितना खा लेते हैं हमारी कैपेसिटी है। फिलहाल हम आपकी क्षमता को जानना चाहेंगे और हमारे पास में एक प्यार से मैसेज आया हुआ है अरविंद मौर्या जी का, मनकापुर से। कहते हैं भैया आ जाइए, हम आपको धान रोपना सिखा दे, आपको आता है नहीं आता। तो हमको बार बार उनकी बात पे हंसी आ रही थी। हंसी आने का कारण यही था कि हम बचपन में अपने ननिहाल गए हुए थे। ननिहाल जब हम पहुंचे वहां पे लगा हुआ था धान का बेरन। अब हमको लगा कि ये है घास। हमने पूरे खेत में खूब अच्छे से धमा चौकड़ी मचाई, जितना उखाड़ पाए उखाड़ पखाड़ लिए, उसके बाद ढेर सारा मार मिली। तो ऐसा वाला कुछ हमको सीन याद आ गया था, इसलिए बार बार हम मुस्कुरा रहे थे अरविंद जी। फिलहाल अब बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, जो कि आई हुई हमारे पास में सीतापुर से, और ये प्रेम मौर्या जी आपकी डिमांड है।

बाजी तो गोलगप्पे की झड़ी लगाते रहिए और बताते रहिए आप कितने गोलगप्पे खा सकते हैं। तब तक हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारे अरविंद मौर्या जी की। इन्होंने हमको एक डिमांड भेजा था और बोला था कि दोस्ती का कोई सॉन्ग। तो भाई हमारा जो आज तक का हमारी पूरी जिंदगी का सबसे फेवरेट वाला जो दोस्ती पर डेडिकेशन वाला सॉन्ग है वो मैं आप तक पहुँचाती हूँ, और इसमें इंक्लूड करूँगी मैं अपनी प्यारी बबीता जी को। जी हाँ, क्यूट सी, प्यारी सी, स्वीट सी हमारी गुंडा से जो सुनती हैं हमें बबीता जी, उनके नाम ये सॉन्ग। और अरविंद जी स्पेशली फॉर यू, सुनिए और एंजॉय करिए दोस्ती का पैगाम। तेरा दिल मेरा ठिकाना, इसकी हर एक बीट पे मेरे दोस्तों का नाम लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच, इतनी प्यारी सी डिमांड की रिक्वेस्ट।

हमारे एक मित्र हैं जिनका नाम है प्रमुख कुमार जी, और ये लुधियाना से हमें सुनते हैं। लिख रहे हैं, जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है तब से मेरा मुंह खुल ही नहीं रहा है। जबड़ा टूटने के बाद मुंह खुला ही नहीं, तो हमने पानी पूरी खाया ही नहीं। अब पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद ही खाऊंगा, कितना खा सकता हूँ। फिलहाल प्रतिदिन मुंह की एक्सरसाइज जारी है, जल्द ही पूरी तरह से सही हो जाऊंगा। ऐसी बात नहीं, आप हमारे सामने आइए, बस एक ठेम जड़ेंगे क्या, वो आप भी समझते हैं हम भी समझते हैं। अब दोस्ती में इतना हक है हमारा, आपका मुंह ना ठीक हो जाए तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। माफ करिएगा, थोड़ा सा मजाक है लेकिन सच बता रही है। आपकी सेहत को दुरुस्त करने के लिए हम ये भी ट्राई कर सकते हैं आपके ऊपर, अगर आप इजाजत दें तो। फिलहाल गाना।

पछताना। बिल्कुल सही बात है भाई, हर एक रिश्ता आप छोड़ सकते हैं, भूल सकते हैं, तोड़ सकते हैं, लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है दोस्तों कि उसमें आना जाना लगा रहता है। जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं बनता है भैया, आपको जाके पाला छूने के लिए दोबारा कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी करते हुए वापस आना ही पड़ेगा भाई। जिंदगी का खेल है और जिंदगी काफी रफ्तार मेल है, और इसमें कहीं टिकना, ठहरना और ठहराव लेना है तो वो नाम है दोस्ती का। और मुझे मेरे सारे दोस्त याद आ गए, बाय गॉड मैं आपको बता नहीं सकती, हूज बम्स आ गए मेरे को। और थैंक यू सो मच अरविंद जी इतनी प्यार सी डिमांड करने के लिए पुनः से। और अब बढ़ेंगे आप लोग के पैगाम की ओर और फिर आएंगे नेक्स्ट डिमांड के साथ। तो अभी बारी है आपके मैसेजेस को रीड करने की, और मैसेज में किसने क्या लिखा है ये आपको बताते हैं। तो सबसे पहला जो मैसेज हमारे पास में आया हुआ है वो है किसका, इस ओर चलते हैं। तो सबसे पहला मैसेज जो हमको मिला है वो हमारे कमल नयन जी का, कमल जैसे नयन वाले कमल नयन जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो मैसेज है हमारे पास में हमारे एड्स कुमार जी का, एमपी रीवा से, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू डियर, और बहुत खुश रहिए। और मुस्तफ़ा जी हैं सऊदी अरेबिया से, गुड आफ्टरनून टू यू सर। प्रबल मिश्रा जी हैं, थैंक यू सो मच टाइमली हाजिरी दर्ज कराने के लिए। वैसे बता दूँ कि आपसे पहले भी 2-3-4 मैसेज आ गए, आज आप पिछड़ गए थे थोड़ा सा, खैर कोई बात नहीं। और आगे बढ़ते हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं पसंद है इसलिए मैंने कहा याद दिला देते हैं। सुरेंद्र यादव जी हैं गौरा चौकी से, और गौरा चौकी से सुनने वाले सभी लिसनर्स का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। उस्मान खान जी भी भाई बड़े ही अच्छे हमारे लिसनर हैं, बहुत ही अच्छी और डेप्थ की बातें होती हैं इनकी, इसलिए मुझे देखिए जो गहराई की बातें करते हैं वो मुझे काफ़ी पसंद है, जो कॉमेडी बात करते हैं वो भी पसंद है, जो थोड़ा बहुत रोना धोना कर लेते वो भी। एक्चुअली मैं ये नहीं समझ पाती मुझे पसंद क्या नहीं है, अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा। दरक्षा अंसारी जी हैं सीतापुर से, रूहानी जी हैं हमारे दिल की गलियों से, और कुमार टेलर गौरा चौकी से, जय माता दी आपको भी। अंजू गोंडा से, अंजू जी आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। माफ करिएगा बिना कॉल के मैं आपका सॉन्ग नहीं प्ले कर सकती, इसलिए आपने लिंक तो भेज दिया था मैंने उसको नहीं लिया, और एक दफा एक दिन जिसका सॉन्ग हो जाता है दूसरे दिन मैं उसका नहीं प्ले कर पाती क्योंकि मेरे पास बहुत सारी डिमांड आती है, तो बस इतनी सी बात है, बाकी आप समझदार हैं। ताबिश खान जी हैं हमारे साथ में, गुड आफ्टरनून आपको भी, और राधे राधे आपको भी पंडित जी। महक जी हैं गुड आफ्टरनून आपको भाई, चॉकलेट भेजा आपने, थैंक यू। और इरशाद जी हैं, इरशाद जी हैं हथियागढ़ से, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है इरशाद जी। प्रमुख कुमार जी लुधियाना से, आप सभी ने काफ़ी एंजॉय किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आरजे अमन जी हैं रेडियो हॉट स्टार से, हर मुस्कान के पीछे एक प्यारी सी आवाज़, हर महफिल की जान, आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं रेडियो, थैंक यू सो मच। इतनी सारी शान और शौकत में अल्फाज लगाने के लिए आपका भी हार्दिक स्वागत है। और नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट मैसेजेस, आप सभी के फीडबैक, आप लोगों को गाने काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं लगातार, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट मैसेज की बात करें तो नीना जी जुड़ चुकी हैं, नीना जी आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। धर्मेंद्र मोहन भारती जी भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और उम्मीद है आप सकुशल होंगे, मतलब आज कुशल मंगल के साथ में आप सकुशल होंगे। और आगे बढ़ते हैं, गीतू जी है भाई, गीता श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हो रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा चहक उठी। राजू टेलर जी हैं हथियागढ़ से, हमें सुनते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके बाद में नेक्स्ट मैसेज पे अगर हम आगे बढ़ रहे हैं भाई, हमको पानी बताशा वाला हमने सवाल किया था, हमको अगर रिमाइंडर नहीं हुआ तो हम दोबारा लिंक लेंगे और उसमें पानी बताशा देखेंगे कि किस कौन कितना खाता, क्योंकि मुझे बताना मैं कितना खाती हूँ। राम भवन जी हैं बबनान गोंडा से, और आसिफ खान जी हैं जो मैं मुंबई से सुनते हैं, बड़े ही डिसेंट से हमारे लिसनर हैं भाई, एक दो मैसेज करते हैं बस और सुनते रहते हैं, थैंक यू सो मच। और बबीता जी हैं गोंडा से, और इसके अलावा नेक्स्ट मैसेज में एक प्यारा सा मैसेज आया हुआ हमारे सांवरी बलम जी की ओर से, देखते हैं क्या लिखते हैं। लिखते हैं, तापमान तो सिर्फ एसी वालों के लिए बढ़ा है साहब, वरना भट्टी पर लुहार, भट्टों पर कुम्हार, सीमा पर जवान, खेतों में किसान और किचन में महिलाएं आज भी डटे हुए हैं। लेकर क्या, ये तो आपने बताया नहीं, तीर कमान, हाँ जी ये हमने जोड़ दिया है। और सबलू सावन जी हैं हमारे सांता क्रूज से, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारा से मैसेज के लिए। और नेक्स्ट मैसेज की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो आप सभी के ढेर सारी गॉसिपिंग, ढेर सारा एन्जॉयमेंट, ढेर सारी फीडबैक्स रूप में हार्ट इमोजीज, और ये एक हमारे लिसनर हैं जिनका आर आई है, बाकी डैश डैश डैश डैश है, और उन्नाव से जुड़े हुए हैं। लिखते हैं, गुड आफ्टरनून डियर आरजे रॉकिंग जी, ओके थैंक यू सो मच, नया टैग नेम आज हमको मिल गया आरजे रॉकिंग जी, वाओ थैंक यू मींस अ लॉट। और नेक्स्ट मैसेज हमारी रूपाली और दीपाली जी, यानी हमारी जुड़वा बहनों का बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का भी। और अब बढ़ेंगे दीपांशी तिवारी जी के मैसेज की ओर, लेट लतीफा है लेकिन आ गए, इसके लिए बहुत बहुत
शुक्रिया। लिखती हैं गुड आफ्टरनून एवरीवन, क्या बात है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, 3 से 4 के सफर में भाई आप एंजॉय करें आपके अपने शो फोनी फरमाइशी कार्यक्रम कॉलर ट्यून गुंडा कॉरियर डिमांड हमारे अजय मिश्रा जी की ओर से, आप सभी भी एंजॉय करिए श्रेया घोषाल जी की आवाज। और ये सॉन्ग वो सॉन्ग था जब कभी हमने इस रेडियो स्टेशन पे कॉल करके पहला सॉन्ग गुनगुनाया था।

भाई मैसेजेस भी आ गए हैं और उन्नाव से सुनने वाले हमारे प्यारे आरआई जी कहते हैं, भाई आरआई जी हम आपको बोलेंगे, पूरा नाम आपने मेंशन नहीं किया है, अर्ज किया है आपकी आंखों में कभी कोई उदासी ना आए, जिस दुआ में आपकी खुशी ना हो वो अल्फाज होठों पे ही ना आए। ओ माय गॉड, ये आप सभी के लिए भाई, हमारे प्यारे लिसनर्स के लिए, और बहुत ही प्यारा जो भी आपने लिखा दुआ है, थैंक यू।

हाँ जी, और अजय मिश्रा जी की डिमांड के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने मुमताज अंसारी साहब की डिमांड की ओर, और उसके बाद लेके आएंगे हम अपने राम भवन जी की डिमांड को, और फिर नेक्स्ट डिमांड किसकी होगी हम आपको जरूर बताएंगे। बने रहिए 3 से 4 के सफर में अपनी आरजे आकांक्षा के साथ।

हाँ जी श्रोताओं, अभी आप मुमताज अंसारी साहब की डिमांड को एंजॉय करें, उसके बाद होंगे राम भवन जी, देन होंगे हमारे धर्मेंद्र मोहन भारती जी, फिर होंगे हमारे रमेश कुमार जी, और फिर देखते हैं किसकी डिमांड हमारे पास में शेष है।

जी हाँ दोस्तों, मोहब्बत की वजह से ही नींद नहीं जाती। कभी कभी आप ज्यादा गोलगप्पा खा लेते तो भी आपको नींद नहीं आता, क्योंकि भाई पचने में वक्त लगा देता है गोलगप्पा। चलते हैं गोलगप्पे की ओर, गपशप बढ़ाते हैं और कदम ले चलते हैं चैट बॉक्स की ओर, देखते हैं कौन कितना गोलगप्पा खा सकता है। नीना जी ने कहा एक बार में एक। ओ माय गॉड, आपने तो हमसे भी आगे क्रैक कर लिया भाई। हम जो बताने वाले थे आप तो हमसे आगे निकल गए। नीना जी बहुत दुख हुआ हमको, आप जीत गई, हम हार गए। आगे बढ़ते हैं प्रबल मिश्रा जी पंडित जी की ओर और कहते हैं अभी मैं 50 का खाऊं, मतलब 50 रुपए में कितने गोलगप्पे हो सकते हैं आप काउंट कर सकते हैं स्वयं से। और राम भवन जी कहते हैं बबनान गोंडा से 50 से 60 खा सकता हूं। ओके, और नेक्स्ट हमारे प्रमुख जी ने बताई दिया था और वो हम आप तक पहुंचा दिया था। अच्छा, नीना जी का कहना है गोलगप्पे में बहुत पसंद है लेकिन खाती तो एक ही है ना, तो हम कैसे मान लें आपको बहुत पसंद है। और इसके अलावा भाई हमारे प्यारे राम मोहन जी ने भैया बता दिया कि उनके उधर राजू पानी पूरी वाले जो हैं वो बबनान के काफ़ी फेमस पानी पूरी वाले हैं, तो अगर आप लोग बबनान कभी जाइएगा तो राजू पानी पूरी वाले को ज़रूर ढूंढ लीजिएगा। फिलहाल अब हम बताते हैं हम कितना पानी पूरी खाते हैं। हम भैया केवल 2 पानी पूरी खाते हैं, एक तीखा और एक मीठा, बैलेंस डाइट। हाँ जी, हम बहुत ही बैलेंस डाइट वाले हैं, हम बैलेंस डाइट पे ही चलते हैं। इससे आगे हम बढ़ ही नहीं पाते, आज तक का रिकॉर्ड है हमारा। अब पानी पूरी पे ठेले पे खड़े होते तो हम सोचते हैं हम कई रुपए का बोलें, तो हम बोलते हैं भैया जी हमको 5 रुपए का खिला दीजिए। 5 रुपए में केवल 2 बताशे, एक खट्टा एक मीठा, मतलब वो भी मुस्कुरा देते हैं, कहते भैया कैसी मतलब कैसे लड़की है, क्या ही खाती है, लड़कियों का नाम डुबा देगी ये पानी पूरी खाने में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं इस डिमांड की ओर और ये डिमांड है हमारे प्यारे राम भवन जी की और आवाज़ है अभिजीत साहब की। एंजॉय करिए, गाना बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद आएंगे नेक्स्ट डिमांड लेकर के हम धर्मेंद्र मोहन भारती जी आपकी, उसके बाद रमेश कुमार जी होंगे जो हमें सुनते हैं महाराष्ट्र से, और आज जिन जिनकी डिमांड रह जाएगी वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन एक गाना में भी हम एक और ले पाएंगे तो ज़रूर लेने की कोशिश करेंगे। और हाँ, आज के शाम के शो में आना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज अगर मैं गलत नहीं हूं तो केले की खेती के बारे में बात होगी, खेत खलिहान कार्यक्रम में। अरविंद जी आप बने रहिएगा क्योंकि आप हमें धान बोना सिखा रहे थे, हम आपको केले लगाना सिखाएंगे। फिलहाल ये गाना

लहरा। जी हाँ, चलने लगी है हवाएं। चलो उड़ते हुए पानी पूरी के ठेले तक जाएं, और कोई 25 खाए, कोई 10 खाए, कोई 50, कोई 60, और हम बस खाली और खाली दो, एक नमकीन और एक मीठा खा के आए। क्या कविता लिख दी है आपकी अपनी आरजे कांक्षा ने। और भाई हमारे पास में और मैसेजेस आ गए हैं पानी पूरी को लेकर के। गीता श्रीवास्तव जी कहती है 25, फिर कहती है नहीं 10, फिर कहती है नहीं 5। भाई एक जगह ठहर जाइए, मेरा मन कर रहा है हम आपको पूरा मिला के बताते हैं। आप खा सकती है 40 पानी बताशे। और इसके बाद में भाई राममोहन जी ने बोल दिया एक सूखी पापड़ी तो आप भूल ही गए। सूखा सूखा हम कुछ भी नहीं खाते, हमारी जिंदगी में कुछ रूखा सूखा है ही नहीं, तो हम सूखा क्यों ही खाएंगे। फिलहाल ये गाना एंजॉय करते हैं, फिर बाकी बात अभी पानी पूरी पे, पानी पूरी के साथ।

सॉन्ग रह गए हैं उनका नाम बता देते हैं, लेकिन हमने पिछले 2-3 दिनों में इन सभी के गानों को कंप्लीट किया है, इसलिए कोई शिकायत किसी की नहीं होगी। नेक्स्ट सीरीज से नेक्स्ट हफ्ते से शुरू करेंगे, क्योंकि कल होगा पूरे 2 घंटे का आपका शो। आरजे उन्नति जी उसको कैरी ऑन करेंगी, और मुझे मालूम है वो किसी का भी दिल नहीं तोड़ती, मुखड़ा ही प्ले करती, लेकिन करती जरूर है। और रेनू जी आपकी डिमांड रह गई है, और जिन जिनकी डिमांड रह गई बता देते हैं भाई, नाम तो लेना बनता है बॉस। राजू टेलर जी हैं जो हमें सुनते हैं हथियागढ़ से, इरशाद जी आपकी डिमांड, सुनील कुशवाहा जी आपकी डिमांड, और हमारे राकेश वर्मा जी हैं दुखरनाथ मंदिर के पास से। तो 5 से 6 डिमांड आज भी हमारी पेंडिंग रह गई है, उसके लिए बहुत बहुत माजरत चाहेंगे, लेकिन बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड के साथ में। और ये डिमांड हमारे धर्मेंद्र मोहन भारती जी की ओर से, और हाँ पानी बताशे पे अभी चर्चा जारी है, जाते जाते जरूर बता के जाएंगे आप लोगों ने क्या लिखा है।

भाई अरविंद जी ने अपनी समस्या लिख दी है, तो मैं चाहूंगी कि आप खेत खलियान में एक बार जरूर आए और आपकी समस्या का निदान किया जाएगा। आप जिस चीज के लिए बहुत ज्यादा दुखी हैं उसका भी उपचार हमारे पास में है, तो हम चाहेंगे खेत खलियान तक जरूर अपने कदम बढ़ाएं। और कुछ प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं वो हम ले लेते हैं फटाफट से। ताबिश खान जी लिखते हैं, मैं सिर्फ 5 खाता हूँ क्योंकि मैं लड़की नहीं लड़का हूँ। अच्छा, आप लड़के हैं, आप 5 खाते हैं, हम 2 खाते हैं, नीना जी 1 खाती हैं, तो हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं जरा हमको बता दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा। हाँ जी, और इसके साथ में भाई हमारे प्यारे पंडित जी कहते हैं जय माँ पीताम्बरा बताशा वाला। ओहो, और कुमार साहब कहते हैं हमार तो मुँह है छोट बात, यानी बड़ा हो तो हम खाए दिखाई दे, एक दिन जरूर खाएंगे, पानी बताशे के ठेले पे जरूर आएंगे। क्या बात है, बहुत मजा आया आप लोग के साथ में आज का शो करके। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो कि लास्ट डिमांड होगी, लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा मैसेज आया हुआ हमारे पास में जयपुर से, और ये जनाब हैं जिनका नाम है विनोद भरद्वाज जी, और आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और अब जाने का वक्त हो गया है, समय समाप्ति की घोषणा का वक्त हो गया है। धर्मेंद्र मोहन भारती जी, बहुत ही सूदी सी सॉन्ग की डिमांड थी, थैंक यू सो मच, मुझे काफी पसंद आया, पहली दफा ही सुना लेकिन दिल को भाया। आज की लास्ट डिमांड लेते हैं हम अपने नेक्स्ट लिसनर की, यानी कि रमेश जी की, जो हमें सुनते हैं कहां से। आहा, क्या बात, क्या गाना है, ओ हमारे चीची जी का गाना है। जी हाँ, ये हमें सुनते हैं महाराष्ट्र से, तो इसको सुनते रहिए और अब हमें जाने का की दीजिए अनुमति। मिलते हैं नेक्स्ट शो आपके, जी हाँ, जिसका नाम है खेत खलिहान के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब
2: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-1416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
6: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
7: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
8: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
9: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
10: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
11: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
12: कुछ गा दीजिए ना रफी साहब।
13: जी नहीं, मैं गाता नहीं।
12: सुना दीजिए ना जानू।
13: बुरा ना माने तो आप भी गाओ।
12: जब आए तेरी याद मुड़ के जाती नहीं, सजना अब तो नींद भी मुझको आती नहीं।
13: दिल को चुप गई।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गॉडली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गॉडली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में, स्टे ट्यून्ड।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने RJ अदनान के साथ, नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात, आपके अपने RJ अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन, स्टे ट्यून्ड।
3: मैप है नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, लो गाऊं ऐसा गाना दिल्ली को पार कर दूं।

0: अच्छा बच्चों, एक बात बताओ।
1: जी सर।
0: अगर कोई स्कूल में बम रख जाए तो क्या करोगे?
1: तो क्या करना है, एक दो घंटे देखेंगे, अगर कोई ले जाता है तो ठीक है, वरना फिर अच्छे से लाके स्टाफ रूम में रख देंगे, और क्या।

जी हाँ दोस्तों, ऐसा देश है मेरा और ये देश हर कहीं के देश से बेहतर है क्योंकि हमारे देश का एक ही कल्चर है भाई, प्रेम से करेंगे सबका स्वागत। तो स्वागत करने की बारी आ गई है आपके अपने स्पेशल शो यानी कि खेत खली।

0: ध्यान में। और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त, और दिन है आज का गुरुवार, यानी कि गुरुवार स्पेशल, गौधुली स्पेशल, खेत खलिहान की आ गई है बारी। तो चलिए भाई, चलते हैं आज के अपने विषय की ओर। और आज का विषय भाई, हमने बोल दिया था केले की खेती, लेकिन केले की खेती नहीं, आज भाई मक्के की खेती पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से थोड़ा गर्मी और सर्दी हो रही है, तो हमारे इरफान जी का हो रहा है गला थोड़ा सा ख़राब। तो इन्होंने कहा भैया कि आज हम जिस विशेषज्ञ महोदय को लेके आएंगे वो मक्के की बात करेंगे, क्यों इरफान जी?
1: जी बिल्कुल, सबसे पहले तो नमस्कार नमस्कार किसान भाई बहनों।
0: हाँ जी,
1: आज हम लोग बातचीत करेंगे मक्का की उन्नत खेती, क्योंकि अपने यहाँ गोंडा में काफ़ी जगहों पर, अपने हर जगह मक्का की खेती हो रही, मतलब जिस तरीके से गन्ने की फसल है, धान की फसल है, ऐसे मक्के की जो फसल है वो लगाई जा रही है। केले की बात होती है तो केला भी बहुत अच्छा है, इसमें एक वैरायटी है G9, क्योंकि बहुत कम दिन में तैयार होता है और अच्छी मांग भी है इसकी मार्केट में, क्योंकि जो ये केला है इसका जो आकार है और इसका जो रंग है और आकर्षक दिखने में, और उसके बाद में इसकी मांग जो है अच्छी होती है। और ये जो केला है ये दोमट मिट्टी में बहुत अच्छी होती है, मतलब।
0: पर हमारे एक लिसनर है जिनका नाम है अरविंद मौर्या जी, जो हमें मन का पुरसे सुनते हैं, उनकी जो समस्या थी, उन्होंने हमसे कहा कि केले में पानी बहुत लगता है, जिसकी वजह से ये केला नहीं बिठा पा रहे हैं, और दूसरी बात नील गाय से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो इसके लिए क्या उपचार है?
1: देखिए अरविंद जी, आपका स्वागत है हमारे रेडियो ज्ञानस्थली में। आपने दो सवाल किया है कि जो आवारा पशु हैं जो हमारे फसल को नुकसान करते हैं, तो हम बताना चाहते हैं, तो उसके लिए तो आप ताल लगाइए या कोई जो है जाली आती है, मतलब जाली भी लगा सकते हैं जाल। दूसरी बात क्या, आपने कहा कि पानी भर जाता है, तो आप जहां उचास हो वहां आप लगाइए, क्योंकि केला को बहुत ज़्यादा पानी जब भर जाएगा तो ये जो है सूख जाएगा, क्योंकि ये बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं सहता है ना बहुत ज़्यादा गर्मी। अभी देखिए मई का महीना था, अभी हम ही गए थे, किसान थे हमारे ये वजीरगंज के, तो बता रहे थे कि केला जो है वो गर्मी से अपने आप टूट टूट के गिर रहा है, मतलब। तो बात ये था कि जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर की वजह से हो रहा था, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि उस वजह से जो है वो केला जो है वो गिर रहा था, मतलब।
0: अच्छा, तो गिर गया तो फिर आपने उठाया क्यों नहीं?
1: देखिए उठाया बिल्कुल भाई, हमें तो मिला
0: कितना ऊंचे उठाया, मतलब बोलते हैं ना, अगर एक मित्र अगर दूसरे को सहारा देता तो बहुत ऊंचे चला जाता है, आपका मित्र कितना ऊंचे गया, मतलब केला?
1: देखिए केला जो है वो काफी गया मंडी में, उसका अच्छा रेट भी मिला
0: जी।
1: और काफी लोग पकौड़ी भी खाए, क्योंकि केले की पकौड़ी भी बनती है, केले का पाउडर भी बनता है।
0: अच्छा।
1: और केला जो है, केले में जो सबसे ज्यादा है वो फाइबर जो है बहुत अच्छा मात्रा में पाया जाता है, और केला जो है वो हमारे पेट के लिए जो है बहुत अच्छा होता है।
0: अच्छा, बाकी चीजों के लिए क्या करता है केला?
1: सब चीज के लिए अच्छा होता है।
0: चलिए सॉरी भाई, मेरी आदत है, मैं फंसा देती हूँ, मेरी आदत है, मैं थोड़ी सी खुराफात अगर नहीं करूँ तो मुझे सुकून नहीं मिलता है। तो हमारे इरफान जी ने बखूबी बहुत ही प्यारे से बता दिया है कि केले के लिए जितनी भी मतलब तरह की प्रॉब्लम्स थी, उम्मीद है अरविंद जी की अभी दूर हो गई होगी। और आज हम चलते हैं, अब आते हैं उस विषय पर जो आज का हमारा विषय है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मक्के की खेती के ऊपर। तो मक्के से रिलेटेड आपका जो भी समस्या हो, जो भी सवाल हो, आप चाहें तो चैट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, और चाहे तो आप कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए वही आपका पुराना वाला नंबर है। और मैं उससे पहले बता दूं आपने ट्यून क्या करके रखा हुआ है। आपने ट्यून कर रखा हुआ है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन, और उसके स्टूडियो का नंबर वही है 6393316429, यानी कि 6393316429। और उम्मीद है कि आप लोग की कॉल्स भी अभी आनी लगातार शुरू हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे अपने एक्सपर्ट महोदय का, और उनका परिचय देंगे हमारे इरफान शाह जी।
1: जी, तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर शशि भूषण सिंह जी, जो कि शोध छात्र हैं और एक युवा वैज्ञानिक कुछ दिन में बनेंगे। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि जल्दी एक युवा वैज्ञानिक बने, और वैज्ञानिक बनके आके हमारे ज्ञानस्थली स्टूडियो में हमारे किसान भाई बहनों को एक जानकारी दें। तो सर, सबसे पहले तो आपका हमारे ज्ञानस्थली स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
2: नमस्कार सर, सबसे पहले मैं ज्ञानस्थली FM और इससे कार्यक्रम से जुड़े सभी श्रोताओं का हृदय से अभिवादन करता हूं। मैं FM की पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे आज किसानों के बीच अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। मेरा नाम शशि भूषण सिंह है, मैं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ के कृषि संकाय में एग्रोनॉमी विषय का शोधार्थी हूँ। मैंने बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर तथा मास्टर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर की शिक्षा प्राप्त की है। वर्तमान में मैंने फसल उत्पादन टिकाऊ कृषि प्रणाली तथा विशेष रूप से मक्का आधारित अंतर्वृत्तीय खेती जैसे इंटरक्रॉपिंग सिस्टम पर शोध कार्य कर रहा हूँ। मेरे शोध का मुख्य उद्देश्य ऐसी वैज्ञानिक तकनीकों का विकास और मूल्यांकन करना है जिनकी सहायता से किसान भाई कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें, जिससे मिट्टी की उर्वरता को बनाए रख सकें तथा खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बना सकें।
0: तो भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप हमारी मिट्टी को मतलब जीवित रखना चाहते हैं, उसमें जीवन देना चाहते हैं, क्योंकि मिट्टी ही वो है जहाँ से हमें जीवन प्राप्त होता है। मिट्टी जीवनदायिनी होती है, अगर ये मिट्टी ना होती तो शायद खेती का हम सोच भी ना पाते। और इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, प्राप्त होती हैं, लेकिन उससे पहले हम चलेंगे अपने विषय के ओर। लेकिन उससे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे जो चैट बॉक्स में हमारे प्यारे लिसनर्स हमारे साथ में बने हुए हैं। हमारे साथ में बने हुए हैं मनी शर्मा जी भटपुरा से, इसके अलावा प्रमुख कुमार जी लुधियाना से लिखते हैं, गुड इवनिंग आरजे आकांक्षा दीदी, इरफान शाह भाई और विशेषक महोदय जी, आपको भी शुभ संध्या।
1: बिल्कुल, तो भाई हमारे सभी श्रोताओं को, जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको भी भाई नमस्ते, हमारा स्वीकार करें, नमस्ते।
0: और प्रमुख जी ने तो भाई अपना सवाल भी रख दिया है, और सवाल बड़ा ही प्यारा सा है, आपको भी पसंद आएगा एक्सपर्ट महोदय। लिखते हैं, सबसे अहम सवाल है ये दुनिया का, सबसे अहम सवाल ये है कि मक्का को कुछ इलाके में मकई का ही कहा जाता है।
2: वो तो देखा जाए तो हर क्षेत्र के अलग अलग बहुत सारे
0: जी उपनाम है,
2: उपनाम दिए जाते हैं।
0: जी जी,
2: तो मक्का को मतलब बहुत जैसे पुराने हमारे जो परंपरा चलती चली आ जा रही है, मक्का आज के लिए बहुत पुरानी फसल है। जैसे धान गेहूं के बाद जो मक्का है वो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, या पूरे भारत में या पूरे विश्व में। तो इसी वजह से जैसे अब जब हम भारत जो कृषि प्रधान देश है, इसी वजह से कहीं कहीं इसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं, कहीं से भुट्टा कहते हैं, कहीं से मकई कहते हैं, तो अलग अलग चीज़ों अलग अलग उपनाम दिया गया।
0: अब मैं बताती हूँ, चूँकि ये हमारे मतलब मित्रों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इतने दिन से हम शो कर रहे हैं और इनसे हमारी वार्तालाप होती रहती है, तो इनको इनके जिस तरह से इनकी फितरत है सवाल करने की, उसी फितरत में मैं इन्हें जवाब भी दे देती हूँ। तो मकई इसलिए कहते हैं प्रमुख जी क्योंकि मक्के में दाने होते हैं कई कई, इसलिए उसे कहते हैं मकई। कभी कंफर्मेशन नहीं होता कि कितने दाने होते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले सवाल मतलब लिसनर की ओर, और लिसनर है हमारे विजयपाल यादव जी ललहुआ लखीमपुर खीरी से, लिखते हैं, खेत खलिहान प्रस्तुत करने वाली आकांक्षा बहन बहुत बहुत धन्यवाद, व इरफान सर जी व एक्सपर्ट महोदय जी को मेरा सादर नमस्ते, आज लल्लू वाजपेयी जी के स्वर में आल्हा सुनवा दीजिएगा, महान कृपा होगी। ज़रूर ज़रूर, आपका आल्हा अब तक ज़रूर पहुँचेगा और वो हम तक भी पहुँच गया है किसी के थ्रू। और सविता दुबे जी हैं हरखापुर से, बड़े दिनों बाद इनके दर्शन हुए और ये काफ़ी खुश हैं इस बात से कि आज मक्के की खेती पे बात की जा रही है। सविता जी, मैं चाहूँगी कि आप भी अपना सवाल रखें अगर आपके पास कोई सवाल हो मक्के की खेती को लेकर के। फिलहाल बढ़ते हैं आज के सबसे पहले सवाल की ओर, क्योंकि घड़ी में अगर हम बात करें तो 5:17 हो चुका है बाय स्टूडियो क्लॉक, और आज का सबसे पहला सवाल है सर आपसे, ऐसा लग रहा है मैं आपसे क्या नाम है कौन बनेगा करोड़पति खेलने जा रही हूँ, माय गॉड। तो आज के पहले सवाल की शुरुआत करते हैं किसान भाइयों से, नहीं आपसे, इस बार आपने मक्के की कौन सी किस्म मतलब बोई है, या फिर आप कौन से बोने के लिए सबसे ज़्यादा मतलब मतलब देंगे कि हमें ये बेस्ट होगी किसान भाइयों के लिए, मक्के की कौन सी खेती किस्म की खेती अच्छी होगी।
2: जी जी, धन्यवाद मैम
0: जी।
2: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी फसल में अच्छी पैदावार की शुरुआत सही बीज के चयन से होती है। यदि बीज अच्छा नहीं होता तो चाहे हम कितनी भी अच्छी खाद, सिंचाई या कीट प्रबंधन कर लें, हमें अपेक्षित उत्पादन नहीं मिलेगा। जैसा कि आपने बताया, तो इस वर्ष मैंने अपने खेत में DKC 9144 के 9144 डिकाल्प का एक वैरायटी आती है, जिसका जो शंकर मक्का के कैटेगरी में आता है, जिसे हाइब्रिड मेज भी कहते हैं, किस्मों की बुआई की है। इस किस्म का चयन मैंने अपने क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी और स्थिति और कृषि वैज्ञानिकों की सिफारिशों को ध्यान में रखकर किया है
0: जी।
2: इन किस्मों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनका अंकुरण बहुत अच्छा, पौधे मजबूत बनते हैं, जड़ों का विकास अच्छा होता है और भुट्टे बड़े तथा दानों की भराई उत्कृष्ट होती है। यदि कोई किसान समय पर बुवाई करे, संतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करे और कीट एवं रोगों का सही प्रबंधन करे, तो इन किस्मों से बहुत अच्छी उपज जो है प्राप्त की जा सकती है।
0: जी जी जी। तो अभी हमने ये तो जान लिया कि हमारे पास में जो संकर करके जो हमारा आता है वैरायटी, वो हमारे लिए बेस्ट है। अब ये बताइए, जैसे जिस हिसाब से हमारा यूपी का जैसे मिट्टी पाई जाती है, उस भूमि के योग्य कौन सी वैरायटी सबसे ज़्यादा मतलब फेमस है, फेवरेट है और ज़्यादा ज़्यादा उपज देती है?
2: जी नमस्कार, मुझे ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी यूपी की जो है वो बलुई दोमट करके जो मिट्टी है, जो हमारे यहाँ बेसिकली अपने इधर क्या बोलते गोंडा बहराइच इधर मनकापुर साइड जो उधर पाई जाती है, ये बलुई दोमट पाई जाती है। तो इसके लिए आप पाइनियर की वैरायटी आती है, पाइनियर की बहुत वैरायटी है एक P3396 करके, इसको आप अगर आप उपयोग करते हैं तो ये हमारे इधर यूपी के लिए या अपने इधर गोंडा क्षेत्र के लिए बहुत बेस्ट वैरायटी मानी जाती है मक्का के लिए।
0: जी अब हम जानना चाहेंगे सर कि मतलब इससे हटके भी अगर आपके पास में कोई जानकारी हो, जैसे हमारे लिसनर हमें राजस्थान से सुनते हैं, एमपी से सुनते हैं, कुछ एमपी से सुनते हैं, उसके अलावा और बाकी क्षेत्रों से भी सुनते हैं, जैसे आसाम से भी सुनते हैं, कुछ तो साउथ साइड से भी सुनते हैं, तो ऐसे हमें सभी सुनते हैं, दिल्ली से हो गए, मुंबई से हो गए, महाराष्ट्र से हो गए, तो अगर इन क्षेत्रों के बारे में भी आपको पता हो तो प्लीज़ बताएँ।
2: मैम जैसे देखा जाए तो जो बेसिकली जो राजस्थान का क्षेत्र हो गया वो ज़्यादातर अर्धशुष्क क्षेत्र में आता है, तो वहाँ पे मक्के की खेती तो इतना ज़्यादा लाभदायक तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मक्का जो हो बेसिकली मीडियम जो उसको न ज़्यादा पानी चाहिए न कम पानी चाहिए, जो एकदम मीडियम जो होता है उसको पानी की जरूरत होती है। तो आप अगर देखा जाए जैसे हमारे यूपी हो गया या पंजाब साइड हो गया या हरियाणा साइड हो गया, वहाँ पे हम मक्के की अच्छी, क्योंकि हमारे पास जो क्या बोलते हैं पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है, हमारे इधर पानी की अवेलेबिलिटी भी अच्छी है और व्यवस्था हम अच्छे मतलब तरीके से उसको पानी दे सकते हैं, तो इस एरिया में जो अगर देखा जाए तो मक्के की अच्छी पैदावार हो सकती है। बाकी राजस्थान साइड जैसे वहाँ पे क्या हुआ तिलहन जो होता है या बाजरा जो मिलेट के साइड, मिलेट फेमस हो गया है, उसका हम अगर उपयोग ज्यादा करें तो किसानों को ज्यादा बेहतर लाभ और ज्यादा फायदेमंद होगा।
0: जी, अभी हम बढ़ेंगे, हमारे साथ में जुड़ गए हैं शुभेंदु सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और इन्होंने आप दोनों को मतलब इरफान जी को और आपको दोनों को नमस्कार बोला है।
1: सबसे पहले सर को भी नमस्कार हमारा
0: जी,
1: क्योंकि नमस्कार बोले हैं तो आपको भी नमस्कार सर जी, और आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम, ये जानकर हमें बहुत खुशी हो रही है।
0: जी अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि आया हुआ हमारे पास में विजय पाल यादव जी की ओर से ललहुआ लखीमपुर खीरी से। ये कहते हैं कि सर जी आज का सवाल ये है कि कुछ मक्के के दाने पूरी तरह भर जाते हैं और कुछ मक्कों में केवल दो चार दाने आकर ही रह जाते हैं, ये किस कमी के कारण होता है?
2: जी मैम एक्चुअली बताना चाहूँगा कि जो इसमें जो इनका प्रश्न है, यह समस्या किसानों के खेतों में अक्सर देखने को मिलती है मैम। मक्के में दाने का पूरा न भरना पुअर ग्रेन फिलिंग या कई कारणों से हो सकता है, जैसे सबसे पहला बड़ा कारण हो सकता है इसका पॉलिनेशन, जो पॉलिनेशन होता है वो सही ढंग से जैसे परागण कहते हैं
0: जी।
2: जिसे अगर वो सही ढंग से ना हो, जैसे मक्का में नर पुष्प टेसल जिसे बोलते हैं कि निकलने वाला पराग मादा पुष्प सिल्क तथा तक सही समय पर पहुंचना चाहिए, अगर यही सही समय पर अगर मादा पुष्प तक नहीं पहुंचता है तो इसके भी कारण, इसके मेन कारण क्या है क्यों नहीं पहुंचता है, जैसे तेज गर्मी हो गई या बारिश हो गई या तेज हवा के कारण या सूखे की स्थिति में जो परागकण होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं, जिससे हमारे मक्के के क्या बोलते हैं दाने पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। दूसरा कारण होता है नमी की कमी, अगर आपके खेतों में प्रॉपर जैसे एक इसमें मक्के में एक जो होता है क्या बोलते हैं संवेदनशील अवस्था जिसे हम बोल सकते हैं वो होती है टेस्लिंग करके होती है, एक सिल्किंग करके होती है। टेस्लिंग मतलब होता है जब फूल जब निकलते हैं तब, और जब सिल्किंग होता है जब दाने बनने की जब रेशे निकलते हैं, और एक होती है ग्रेन फिलिंग जिसे जब दाने बनने की अवस्था होती है। अगर उस समय हमारे खेत में पर्याप्त नमी नहीं है तो इसके भी कारण मक्के में जैसे मक्का जो खेत है जैसे अगर प्रॉपर लेवल नहीं है तो कहीं पानी की मात्रा ठीक है कहीं पानी की मात्रा कम है, तो जहाँ पानी की मात्रा आपको कम मिलेगी या नमी की मात्रा आपको कम मिलेगी तो वहाँ पर ये समस्या इसका दिखी गई।
0: अच्छा मतलब ये है कि जहाँ पे आपको पानी की मात्रा में कमी होगी, मतलब एक तो मक्के की खेती में ना पानी ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए, लेकिन नमी बराबर बनी रहनी चाहिए, और खास करके जब परागण का वक्त हो, जब उसमें दाने भरने का वक्त हो, उस वक्त आप पानी की नमी को मतलब चेक करते रहिए। हाँ, जिस क्षेत्र में आपके पानी की कमी हो तो वहाँ पे आप थोड़ी सी सिंचाई कर दें, मतलब भर की ही ज्यादा नहीं। और भाई प्रमुख जी ने बता दिया पंजाब से भी लोग सुनते हैं, मैं बताना भूल गई थी, उन्होंने याद दिला दिया है। तो पंजाब के में जैसे मक्का बहुत ज़्यादा उपज किया जाता है, गेहूं की उपज बहुत होती है, तो उस क्षेत्र में अगर कोई मतलब किसान भाई हमारे अच्छी वैरायटी ढूंढना चाहे तो किस वैरायटी का चयन करें?
2: मैम पंजाब साइड जो वैरायटी होंगी मक्के की,
0: वहाँ पे मुझे लगता है कि वहाँ की मिट्टी किस तरह से होगी आपको क्या पता है? क्योंकि एमपी में तो काली मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, हमारे यहाँ बलुई मिट्टी पाई जाती है, और पंजाब का तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है पहाड़ी इलाका होगा, तो किस तरह की मिट्टी होंगी वहाँ की?
2: मैम पंजाब में जो देखा गया है, पंजाब के ज़्यादातर जो अन्न भंडार भी कहा गया, वहाँ पे यही ज़्यादातर जो जलोढ़ मिट्टी जो हमारे इधर यूपी साइड पाई जाती है, वो भी पंजाब में वहाँ भी जलोढ़ मिट्टी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, या दोमट हो गया या बलुई दोमट,
0: क्योंकि जो नदी के किनारे से और पहाड़ों पर्वतों के बीच से होते जो बहाव में आता है,
2: जो ज्यादातर जो गंगा के मैदान है उससे जो रिलेटेड जितने क्षेत्र है
0: मैदान और
2: ये सब ज्यादातर वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है।
0: जी जी जी जी।
2: तो वहाँ पे बेसिकली अगर आप मक्के की अच्छी किस्म के लिए अगर संकर हाइब्रिड का अगर कोई मतलब किस्म बोना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी वैरायटी है, जैसे पीएमएच 1 करके पंजाब मेज हाइब्रिड करके है, पंजाब मेज हाइब्रिड 4 करके है। अगर आप अच्छी मतलब अगर आप उसको मक्के को अगर दाने के रूप में मतलब अगर स्वीट कॉर्न जो होता है मक्का आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, आप जब होटल वोटल में या कहीं भी आप जाते हैं तो एज अ सैलड आपको मिलता है, तो आप उसके लिए आप पंजाब स्वीट कॉर्न एक वैरायटी करके आती है जिसका आप कर सकते हैं उपयोग, या पंजाब बेबी कॉर्न करके आता है उसका आप उपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छी वैरायटी है मगर वहाँ वो उस पंजाब के रीजन के हिसाब से आप उसको बो सकते हैं।
0: जी और हमारे साथ में एक कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं।
2: जी
0: हेलो।
3: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते।
3: Hello?
0: नमस्ते नमस्ते नमस्ते
3: नमस्ते सभी को। आज मैं 15 दिन के बाद आज चैटबॉक्स पे आई हूँ, बहुत मेरा मोबाइल का
0: बहुत दिन बाद
3: खराब है।
0: ओहो हो हो क्या हुआ था आपकी मोबाइल को? जल्दी जुकाम लग गई थी, पानी में भीग गया?
3: नहीं मोबाइल के डिस्प्ले खराब है, अभी भी वैसा ही है, बैगनी कलर का है, दाग का रंग बैगनी कलर, किसी का बाल का रंग बैगनी कलर, मतलब बैगनी हो गए हैं,
0: बैगनी हो गए,
3: इसी वजह से मैं नहीं आ पा रही थी। आज बैलेंस भरी हूँ वो क्या है?
0: आपको किसी ने बोला नहीं? आपको एक मिनट सविता जी, एक मिनट, आपको किसी ने बोला नहीं? आप बस बोल दीजिए मेरी चाय मीठी हो जाएगी
3: जी?
0: आपसे आज तक किसी ने बोला नहीं जरा एक शब्द बोल दीजिए कुछ भी तो मेरी चाय मीठी हो जाएगी?
3: नहीं किसी ने नहीं बोला,
0: तो मैं बोलती हूँ
3: अब... नहीं बोला था ज्ञानस्थली के चैनल पे, तो मैं अपना आवाज को पहचान पाई।
0: ओके तो मैं बोलती हूँ आप जब चाय बनाइएगा बस उसे बोल दीजिएगा मीठी मीठी हो जाओ, बस मीठी हो जाएगी,
3: मिट्टी मिट्टी हो जाओ।
0: हाँ जी थैंक यू सो मच। अब अपना सवाल रखिए प्लीज।
3: हमारा सवाल यही है कि हमारा यहाँ का मिट्टी है बलुआही मिट्टी, यहाँ पे कौन सा किस्म का बीज लगाया जाएगा?
0: जी अभी आपने बुआई करना शुरू किया है या सोचा है?
3: नहीं नहीं नहीं अभी लाएगा बीज, अभी भी लाया नहीं मक्का, मक्का का बीज वगैरह लाएगा।
0: ठीक है तो हम आपके सवाल को एक्सपर्ट महोदय तक पहुँचाते हैं, बनी रही है, थैंक यू सो मच।
3: शुक्रिया
0: जी, ख्याल रखिए। तो ये थी हमारी सविता दुबे जी, और हम जानना चाहेंगे कि ये हमारे गोंडा के ही हरखापुर से बिलोंग करती हैं और इनके यहाँ बलुई दोमट मिट्टी है, तो इनको कौन सी वैरायटी चुनना चाहिए, और इसके अलावा ये बीज का जो चयन है वो किस जगह से जाके करें, मतलब कहाँ से खरीदें?
2: जी नमस्कार। मैं नमस्कार सतम मैम, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ जो हरखापुर या इधर के जो बेल्ट हैं वहाँ पे जो मिट्टी है वो बलुई दोमट पाई जाती है, ठीक, जो सबसे मतलब उपयुक्त मानी जाती है मक्के के उपज मतलब खेती के लिए। तो अगर अगर आपको अच्छी वैरायटी लगानी, जैसे आप पाइनियर की वैरायटी यूज़ कर सकते हैं, या हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज जो वहाँ पे मिलते हैं, हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज 5 करके होता है, या NK6420 सिजेंटा की आती है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं।
0: जी
2: जी। और आपको अगर अच्छे बीज का अगर आपको चयन करना है तो आप जैसे जो बीज आता है उसमें सर्टिफाइड सीड होते हैं, या आप उसको अगर आप सही जैसे कहीं अच्छी जो मानक दुकानदार होते हैं जो आपके क्षेत्र में होंगे उनसे आप उपलब्ध कर सकते हैं, आप जैसे आपके आसपास कहीं अगर KVK हो, कृषि विज्ञान केंद्र हो, तो वहाँ पर जाके आप उस बीज का मतलब बीज उनसे ले सकते हैं। और आपके जैसे ब्लॉक में जो आता है, हर ब्लॉक में जो बना होता है, आप ब्लॉक में अच्छे जाएंगे तो वहाँ पे आपको किसी एक्सपर्ट बैठे मिलेंगे आपको, या एक्सटेंशन कार्यकर्ता मिलेंगे, आप उनसे जब सलाह लेंगे तो आपको अच्छी अच्छी बीज, जो सरकार जो है उनकी अलग अलग स्कीमें आती रहती हैं हर क्षेत्र के हिसाब से, वो अच्छी अच्छी जो बीज होते हैं उसको प्रोवाइड कराते हैं।
0: जी तो आप ब्लॉक स्तर से भी जा करके अगर आप सूचना लेंगी, पता करेंगी, तो कहीं ना कहीं आपको बैठते अधिकारी वो आपको ज़रूर दिलाएंगे। और अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की ओर। हेलो
4: हेलो बहन जी को मेरा नमस्ते।
0: जी नमस्ते, लेकिन आपके हालात को देख के ऐसा लग रहा है आप काफी बीमार चल रहे हैं।
4: नहीं बीमार नहीं है, बारिश हो गई, भीग गए हैं, अभी खेत को गए थे।
0: हाँ जी
4: तो भीग गए हैं।
0: आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं जहाँ बारिश होती है? हमारे यहाँ तो सूखा पड़ा है।
4: नहीं आज थोड़ी बारिश हुई है ऐसे।
0: जी आप अपना शुभ नाम बताएं।
4: मेरा नाम है विजय पाल यादव
0: जी, ललवा लखीमपुर खीरी। अब बताइए, हम लखीमपुर खीरी आए बारिश के लिए, आप वहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं गोंडा?
4: जी आइए।
0: ये गलत बात है, आप भेजिए, हम अकेले क्यों लाभ उठाए, हमारे सारे किसान भाई लाभ उठाए।
4: एक शिकायत बहन जी हमारी है सर जी से, यानी इरफान सर जी से।
0: जी जी, हमें लगा हमसे है तो आप भी शिकायत
4: नहीं,
0: करते
4: नहीं,
0: तो
4: आपकी क्लास तो शिकायत है ही नहीं, हम तो आपकी तारीफ करते रहे प्रशंसक हैं।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। अपना जी जी, आप अपना सवाल रखे प्लीज।
4: वो शिकायत ये है, पहले शिकायत बताएंगे बाद में सवाल बताएंगे।
0: हाँ वही वही शिकायत,
4: उन्होंने हमने इनको शुभकामनाएं जन्मदिन पर दी, लेकिन हमारे लिए इन्होंने कुछ नहीं भेजा, व्हाट्सएप पर तक नहीं भेजा, जो भेज देते हम उसी से संतुष्ट हो जाते।
1: चलिए तो सर, आपको सबसे पहले तो नमस्ते और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आपने हमारे जन्मदिन पे आपने हमको मैसेज देके बधाई दिया इसके लिए। सर आपको बहुत बहुत
0: नहीं, बधाई तो बहुत सारे लोगों ने दी है, लेकिन एक मिनट विजय पाल जी, आप ही रुक जाइए, अब हम पहले इनसे सवाल कर लेते हैं। इनका विवाह हुआ, आज तक हमको एक फूटा बताशा तक नहीं मिला, आप बात करें इनके जन्मदिन की मिठाई की, क्या ही कहें हम आपको।
4: नहीं, ये इतने अब हम माइक पर नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या हम बताएं,
0: अलग से जरूर बोलिएगा, हमारे हिस्से का भी बोलिएगा।
4: नहीं बोलेंगे, ये बिल्कुल खर्चा नहीं करना चाहते हैं।
0: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप खर्चे बात कर रहे हैं, हम तो एक महीने के मतलब इनकी तनख्वाह ही रुकवा देंगे, आप एक बार हामी तो भरवाइए।
4: हाँ बिल्कुल, रुकवा दीजिए, हम आप आधी ले लेंगे।
0: जी चलते हैं सवाल की ओर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज अपना क्वेश्चन
4: है कि सर जी ने बताया कि मतलब भुट्टों में दाने बराबर नहीं आते, तो इसके लिए नमी होनी चाहिए, लेकिन नमी तो पूरे खेत में समान रहती है,
0: फिर भी प्रॉब्लम होती है,
4: पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती, कुछ भुट्टों में दाने भर जाते हैं पूरे और कुछ में थोड़े दो चार ही आके रह जाते हैं।
0: जी आपसे हम ये जानना चाहेंगे, लगभग जैसे 10 में से कितने भुट्टों में दाने आते होंगे और कितने में नहीं आते होंगे?
4: 100 में 75 में आते हैं, 25 में नहीं आते हैं।
0: ओके, तो अब इस हिसाब से सर आपको आपके प्रश्न का जवाब जरूर देंगे, शुक्रिया कॉल करने के लिए, और हाँ हिस्सा बांटने के लिए भी धन्यवाद।
4: धन्यवाद।
0: ये थे हमारे लखीमपुर खीरी से हमारे प्यारे विजय पाल यादव जी, सर इनके सवाल का जवाब दें।
2: जी जी मैम, एक्चुअली जो सर ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, इन्होंने बताया कि जो अगर हमारे खेत में पर्याप्त नमी है तब भी हमारे जो बहुत जैसे 75% इलाके एरिया में हमारा जो है वो भुट्टे में अच्छे से दाना आ जाता है, बाकी 25% में नहीं आता। तो बेसिकली एक यही नमी ही मुख्य कारण, जैसे आप अगर सही बीजों का चयन नहीं करेंगे या फिर जैसा हो गया आपका संतुलित उर्वरक, जैसे हमारे यहाँ जो मक्के की जो खेती होती है उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि जैसे अब तो मान लीजिए बहुत सारे उपकरण आ गए हैं, अब मक्का बोने में आसानी हो रही है, पहले क्या होता था कि आदमी छिड़काव विधि से बुआई कर देता था, जिससे जो मक्के कहीं दाने इकट्ठा पड़ गए या कहीं जो गैप हो गया उसमें ज़्यादा हो गया, तो उसके लिए अगर जो जो जो उसका जो कंपटीशन होता है न्यूट्रिएंट का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे जो हमारे जो पौधे को अगर उर्वरक की असंतुलित मात्रा मिलती है उसका जो दाने का वो होता है साइज छोटा रह जाता है, मक्के का जो साइज होता है वो छोटा रह जाता है, या प्रॉपर जो ग्रीन फिलिंग होती है वो प्रॉपर ग्रीन फिलिंग हो नहीं पाती है।
0: जी
2: जी,
0: तो अभी हम चलते हैं एक और सवाल की ओर, और ये सवाल हमारे प्रमुख जी का, कहते हैं कि ये बताइए कि जो लाल वाले मक्के अच्छे होते हैं या फिर नॉर्मल वाले?
2: जी बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है, जैसे इसमें क्या है कि आप जैसे अगर आप दाने के लिए उपयोग, जैसे आपको अपने क्षेत्र के हिसाब से मक्का उगाना चाहिए, जैसे क्या होता है कि बहुत बढ़िया तो होता है, जैसे स्वीट कॉर्न एक वैरायटी आती है वो सबसे अच्छी वैरायटी मानी जाती है, क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन ठीक ठीक होता है, उसका जो जैसे हम लोग जो दाना बेचते हैं उसे हार्वेस्टिंग करके 20 रुपया किलो या 25 रुपया कुंटल 2000 रुपये कुंटल ऐसे हिसाब से बेचते हैं, लेकिन जो स्वीट कॉर्न होता है उसका जो एक पूरा भुट्टा बिक जाता है 20-30-40 रुपये भुट्टे, तो अगर आपके एरिया के हिसाब से अगर आपके पास अच्छी मंडी है या अच्छे अगर आपके पास अच्छे ठीक ठीक खरीदार हैं तो आप अपने उस हिसाब से देख के आप मक्के का चयन करिए। वैसे तो अगर अगर जो आपको दाने के लिए उपयोग करना है तो आपका जो नॉर्मल वाला मक्का होता है वो आपके लिए सबसे बेस्ट माना गया।
0: ओके, और एक सवाल इनका और भी है, कहते हैं हमारे यहाँ तो नेपाल का एक छोटा सा शहर मतलब पास में पड़ता है जिसका नाम है देवघर, वहाँ से नेपाली बीज लाया जाता है, उस मक्के की पैदावार अच्छी होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दाने पूरे नहीं आते, यही समस्या इनको भी है, और पेड़ में जब 2 बाली या 3 बाली लगती है तो 1 बाली अच्छी होती है, बाकी की 2 बालियों में दाने बराबर नहीं आते हैं।
2: जी जी एक्चुअली क्या है, जैसे जो नेपाल की जो बीज जो नेपाल जो गवर्नमेंट बनाती है वो वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से बनाती है, ठीक है। तो जो हम वहाँ से अगर अपने इस क्लाइमेट जैसे अपने यहाँ जलवायु में शिफ्ट होते हैं तो थोड़ा बहुत तो जलवायु का परिवर्तन आ ही जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप प्रॉपर जैसे एक जो पेड़ है मक्के का उसमें आप जैसे दो तीन भुट्टे आएंगे तो आपको जो न्यूट्रिएंट होगा वो सारे भुट्टे में एक समान पहुँच नहीं पाएगा। या तो आप न्यूट्रिएंट की मात्रा उसको ठीक ठीक जैसे आप मिट्टी की जाँच कराइए, जो मात्रा जिसकी कमी है उसको ढंग से अगर उसका उपयोग जैसे आप नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा के थोड़ा दीजिए, या फास्फोरस की कमी तो फास्फोरस को, तो जिससे क्या होगा कि जो आपके मक्के के जो मक्के में जो दो तीन बालियां आती है उसमें प्रॉपर ग्रीन फिलिंग होगी। अगर आप ठीक से उर्वरक की मात्रा नहीं पहुंचा पा रहे हैं या प्रॉपर अगर आपके पास नमी नहीं रह पा रही तो ये बहुत बहुत विशेष का समस्या अपने पूरे उत्तर प्रदेश में ही रही है कि ये समस्या आती रहती है।
0: तो मेरा सुझाव तो यही होगा कि आप लोग पहले सबसे पहले अपने मिट्टी की जाँच कराएं ताकि वो मक्के के खेती के हिसाब से किस चीज की उसमें कमी है उसकी आप पूर्ति कर पाए, फिर उसके बाद आप बोएं। और आपके लिए प्रमुख जी स्पेशली मेरे ओर से होगा सुझाव कि आप आधे खेत में नेपाल के बीज बोएं और आधे खेत में भारत के बीज बोएं और बीच में बॉर्डर क्रिएट करके मैकमोहन रेखा बना दें। जी
2: अच्छी बात किया।
0: अब आगे बढ़ते हैं और जी हम कुछ भूल रहे हैं लेकिन हमको याद आ गया कि इरफान शाह जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। तो इससे पहले कि हमारे लिसनर कहें कि इरफान जी कहाँ चले गए, आप अपना सवाल रखें।
1: बिल्कुल, क्योंकि मैम ने काफ़ी सवाल किया ही और आशा करते हैं सभी किसान भाई बहनों को जानकारी भी मिले। अब सर हम आते हैं अगले सवाल पे। सर बीज उपचार जो है
2: जी,
1: वो बीज उपचार करके जो मक्का की जो बुआई है वो कैसे करें किसान भाई बहन?
2: जी देखिए, जो सबसे पहले जो बीज उपचार जो हमारे किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद या बहुत ही ज़्यादा आवश्यक माना गया है।
1: जी
2: बीज उपचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे किसान आज भी महत्व नहीं देते। जो ज़्यादातर किसान है वो जैसे वो बीज ले आए अगर वो पैकेट में देखे तो उसका उपचार मतलब किए बिना ही उसको ऐसे ही खेत में बो देते हैं। तो बीज उपचार करने के बीज उपचार करने से बीज और नवजात जो पौधे होते हैं वो फफूंद जनित रोग जो होते हैं ज़्यादातर जो लगते हैं मक्के में, जैसे जब छोटा सा पौधा होता है तो उसमें फफूंद की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। अगर आपने प्रॉपर ढंग से अगर बीज उपचार किया हुआ है तो उसके जो जर्मिनेशन परसेंटेज जैसे बोलते हैं अंकुरण क्षमता जो होती है या अंकुरण प्रतिशत बढ़ता है, इससे बढ़ जाता है। जैसे आपने मान लीजिए कि खेत में लगाया किसी एक बीघे में मान लीजिए आपने 1000 दाने डाले, तो अगर आप प्रॉपर बीज उपचार करके अगर उसका मतलब उसको बुआई कर रहे हैं तो उसमें से आपका जो जर्मिनेशन परसेंटेज होगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मान लीजिए 900 के ऊपर निकल गया। अगर आप बिना बीज उपचार किए अगर उसको आप बो देते हैं तो आपका परसेंटेज वो घट जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी समस्या जैसे फफूंद की समस्या बहुत ज़्यादा ही देखी जाती है, जिसके लिए बाद में हम फफूंद नाशक का प्रयोग करेंगे। इससे सबसे बेहतर इलाज यही है कि जैसे एजोटोबैक्टर होता है या PSB होता है, इसका उपयोग करके पहले ही हम बीज उपचार कर लें, उसके बाद हम जो खेत में अगर बुआई करते हैं तो इससे हमारे जो मक्के हैं उसकी पैदावार तो बढ़ेगी प्लस जो उसका जर्मिनेशन परसेंटेज है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा।
1: जी अब आते हैं सर अगले सवाल पर। सर जानना चाहेंगे कि सर मक्के की जो बुआई है
2: जी,
1: सर उसका सबसे अच्छा जो समय है क्या है सर? मतलब
2: जी अपने उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो मक्का यहाँ पे कहीं कहीं किसी किसी इलाके में तो आप खरीफ में भी बुआई करते हैं और कभी किसी किसी इलाके में आप मतलब रबी में भी होती है। तो ज़्यादातर जो मक्का हमारे उत्तर प्रदेश या अपने गोंडा इधर साइड जो होता है वो खरीफ में बुआई होती है। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन समय तो माना गया है कि जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह के बीच में बुआई कर देनी चाहिए, जिससे क्या है कि जैसे मक्का क्या है कि इसमें नमी की अधिक मात्रा जब हो जाती है तो ये मक्का वाटर लॉगिंग रेसिस्टेंट नहीं होता है, तो अगर इसमें ज़्यादा पानी भर गया तो ये मक्का आपका पीलापन दिखाई देगा या इसका जो जर्मिनेशन वो बहुत कम हो जाएगा। तो इसके लिए हम सही समय यही है कि आपको जैसे बारिश आने से पहले आप इसका सही से मतलब बुआई कर दें, ठीक। और जो इसकी दूरी रखी जाए जो मक्का की जो होती है प्लांट टू प्लांट होती है जो मतलब लाइन टू लाइन जिसे बोलते हैं हम, उसकी 7 सेंटीमीटर रखी जाइए और जो पंक्ति से पंक्ति या पेड़ से पौध की जो दूरी होती है वो 20 से 25 सेंटीमीटर रखी जाती है, मतलब मानक मानी गई है और अच्छा मानक है, इसी के बीच में रखनी चाहिए। इससे इस दूरी से अगर आप मक्के की बुआई करते हैं तो पर्याप्त धूप हवा और पोषक तत्व मिलते हैं जिससे अच्छा विकास जो मक्के का पौधे का अच्छा विकास होता है। मैं किसानों से बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत जल्द या बहुत देर से बुआई करने से उत्पादन प्रभावित हो सकता है, इसलिए अपने क्षेत्र के मौसम और किसी वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार ही बुआई करें।
1: मतलब कहने का मतलब है कि सही समय पर जो काम किया जाए वो बहुत अच्छा होगा, और बाद में जैसे लेट जब बोएंगे तो उसके हिसाब से लेट की जो जो जो पछेती जो प्रजातियां हैं वो बोना पड़ेगा, उसके बाद में जो हमारे समय समय पर
2: जी और उसके,
1: जी
2: उसके उत्पादन में भी बहुत कमी आ जाएगी।
1: जी बिल्कुल, मतलब कहने का मतलब है कि सही समय पे बोया जाए और सही समय पे जो बीज का जो है वो शोधन है वो भी किया जाए। और दूसरी बात क्या है कि जब भी कोई फसल हम लगा रहे हैं या बो रहे हैं तो ये ध्यान दें कि वैरायटी का जो चयन है वो अच्छा करें
2: जी जी।
1: और बोने की जो विधि है वो अच्छी बोएं कि जिससे जो उत्पादन है वो अच्छा मिले,
2: ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो।
1: कभी क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि मतलब ऐसी दुकान से लेते हैं कि जहाँ मतलब कोई प्रमाणित दुकान ना हो, ऐसी दुकान से ले जो बहुत सटीक अच्छी दुकान हो, प्रमाणित दुकान हो, या आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र, जैसे हमारे यहाँ गोंडा में 2 कृषि विज्ञान केंद्र है, तो आप मनकापुर क्षेत्र में आ रहे हैं तो मनकापुर में भी है और हमारे गोंडा में भी है, क्या नाम है, परसपुर रोड पर है, गोपालग्राम में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उनसे आप जाके सलाह ले सकते हैं। और जो है मक्का की और गन्ने की जो भी फसल है, जो भी आप साग सब्जी बोना चाहते हैं या कोई पालन करना चाहते हैं, वहाँ हर एक विषय के वैज्ञानिक होते हैं, तो आप सलाह। अब सर आते हैं अगले सवाल पर। सर इस समय जो मक्के में जो समस्या है वो कौन कौन सी समस्या इस समय आ रही सर मक्के की फसल में? क्योंकि सर कभी कभी क्या होता है कि हम मक्के की फसल जो है वो लगा देते हैं और मक्के की जब फसल लगाते हैं तो उसमें बहुत सारी जो है वो समस्याएं आ जाती हैं, तो इस समय जो मुख्यतः जो है वो इस समय क्या क्या समस्याएं जो है वो आती हैं? मतलब
2: जी जी जी सर, मैं उसको बताना चाहूँगा कि जो मक्का होता है, जो मक्का क्या है, किसी भी फसल जो होती है, कोई भी फसल जो है, उसमें जो मुख्य जो उसकी चुनौती है वो है खरपतवार। जो अगर वर्ष की शुरुआती अवस्था में सबसे पहले खरपतवार की समस्या देखने को मिलती है, जब अगर जब बरसात आता है तो बहुत सारे जो खरपतवार हैं वो अनावश्यक रूप से ज़्यादातर उग जाते हैं, तो बरसात के मौसम में खरपतवार बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और ये मक्के के पौधे से पानी, पोषक तत्व, धूप और जगह के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। यदि समय पर इनका नियंत्रण ना किया जाए तो उपज में 30-40% तक कमी आ सकती है। जी, तो मैंने बुआई के शुरुआती 20-25 दिनों तक विशेष ध्यान दिया, क्योंकि यही समय खरपतवार नियंत्रण के सबसे महत्वपूर्ण होता है मक्के में। तो आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई की और जहाँ जरूरी था वहाँ कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अनुशासित खरपतवार नाशी का प्रयोग करना चाहिए। और ज़्यादातर जो एक एट्रोजिन करके आता है जिसे हम प्री इमरजेंस के रूप में उपयोग करते हैं मक्का में, तो जैसे आप जब कभी मक्के की बुआई करें तो आप जैसे मक्के की बुआई करने के बाद फिर आप एट्रोजिन की सही मात्रा को पूरे खेत में एक बार स्प्रे कर दें, तो जिससे क्या होगा कि जो खरपतवार होंगे उनका जो ग्रोथ होगा वो बढ़वा उनकी रुक जाएगी और आपके मक्के का बढ़वा एक बार बढ़ जाएगा। एक बार मक्का आपका 30-40 दिन तक अगर मक्का की स्पीड से बढ़ गया, इसके बाद खरपतवार आपके मक्के में इतना प्रभावित नहीं कर पाएंगे।
1: मतलब कहने का मतलब है कि जो छोटी छोटी जो बातें हैं उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे मेन चीज होता है कि जब बरसात होती है तो उस समय जो है खर जो है बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो आप समय समय पर उसकी निराई गुड़ाई भी करते रहें और देखते रहें, क्योंकि फसल जो कोई भी फसल है उसको सुबह शाम हमें देखना चाहिए कि फसल में क्या कमी है, क्या रोग लग रहा है, पानी देना है कि नहीं देना है, ये सारी बातें होती है जो हमें बहुत महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान देना चाहिए। अब सर हम आते हैं अगले सवाल पर, क्योंकि अभी हमारे क्या नाम है विजयपाल यादव सर जो है सवाल किए थे कि दाना जो है वो कुछ फसल में नहीं लगता है। हम तो यही कहेंगे कि सबसे पहले अपनी खेत की जो मिट्टी है
2: जी सर,
1: उसका जांच कराना चाहिए, जिस तरीके से बच्चों में टीकाकरण होता है और बहुत सारी जांचें हम लोग अपने शरीर में कराते हैं कि हमें क्या कमी है, हमारे शरीर के अंदर क्या क्या बीमारियां आ गई हैं, इसी तरीके से हमें जो है वो चारों कोण की मिट्टी या बीज की मिट्टी ले लेना चाहिए और जाके अपनी नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र पे वहां पे देना चाहिए और मिट्टी की जाँच जब हो जाएगी तो फसल अच्छा हो। अब सर ये बताइए कि मिट्टी का जो जाँच है वो कितना अच्छा होगा हमारे किसान भाई बहनों के लिए?
2: जी जी जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मिट्टी परीक्षण है वो तो मतलब किसानों के लिए, कोई किसान हो या कोई अगर आप कोई भी हो, अगर वो खेती करना चाहे, खेती कर रहा है या खेती करना चाहता है, तो मिट्टी की जांच, तो जैसे आपको जैसे कि आपको अगर ज़रूरत है 4 रोटी खाने की, ठीक है, और आपको 8 रोटी दे दी जाए तो आपको 8 जो 4 रोटी एक्स्ट्रा मिलेगी वो आपको नुकसानदायक ही तो होगी, आपके शरीर में फैट की मात्रा बढ़ा देगी। तो ऐसे ही सेम जो होता है, जो ये होता है मिट्टी परीक्षण इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि इससे पता चल जाए कि हमारे खेत में किस पोषक तत्व की सबसे ज़्यादा कमी है। अब जिस पोषक तत्व की कमी है अगर उस हिसाब से उसमें पोषक तत्व का मतलब उसको प्रोवाइड कराएंगे किसानों को या मतलब मिट्टी को प्रोवाइड कराएंगे, तो इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि जैसे हमारी लागत में कमी आ जाएगी, तो जैसे जो हमारा उत्पादन बढ़ेगा, तो जो हमारी लागत में कमी आएगी, उत्पादन बढ़ेगा, तो हमारा जो फायदा होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कई किसान बिना जांच के हर साल एक जैसी खाद डाल देते हैं, जैसे जबकि क्या होता है हर खेत की मिट्टी अलग अलग होती है। ठीक, मिट्टी परीक्षण से हमें पता चलता है कि खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटास हो गया, या जिंक हो गया, सल्फर हो गया, जैसे पोषक तत्व कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं और किन की कमी है। जी, तो इसके लिए इस रिपोर्ट के आधार पर हम सही मात्रा में उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। इससे अनावश्यक खर्च तो कम होता ही होता है, प्लस पौधे के संतुलित पोषण मिलता है और उत्पादन भी बढ़ता है। जी, तो इसके साथ ही मिट्टी की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहती है और इसके और पर्यावरण का पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो जैसे आज का बहुत सारे कार्यक्रम जैसे जो हमारे यूपी गवर्नमेंट ने चलाया हुआ है, इसमें जो ये सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम इन्होंने लेके आई थी
1: 2015
2: जी, खेत बचाओ अभी तो चला ही रहे हैं, प्लस 2015 में उन्होंने सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम ही लेके आए थे जिसमें 12 तत्वों की मतलब जो जाँच जो सरकारी जो जाँच होती थी 12 तत्वों की, जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम हो गया, उसमें कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो जाँच होती थी। तो इससे अलग अलग क्षेत्र में जैसे जो ATM BTM होते हैं या TA जो प्रसार कार्यकर्ता होते हैं, इनकी मदद से मतलब अलग अलग खेतों की मिट्टी के नमूने एकत्रित किए गए और जिला स्तर पर फिर इसकी जांच की गई। तो जो जांच करके फिर सबको के जो सॉयल हेल्थ कार्ड जो है सबके यहाँ मतलब हर घर में हर घर गांव में हर एक घर में जो सॉयल हेल्थ कार्ड है वो पहुंचाया गया, जिससे किसान को ये पता चल सके कि उसके खेत में किस पोषक तत्व की कमी है जिसके अनुसार वो अपने हिसाब से उसमें पोषक तत्व अच्छे से मिला सकता है। जी,
1: ये बात हुई सर, मिट्टी की जांच जो है
2: बहुत ज्यादा आवश्यक
1: हुई है उस जी, समय पे
2: जी,
1: जो है मिट्टी की जांच जो है वो करा लेना चाहिए।
0: और अगर इंसान की जांच करानी हो, मतलब किस टाइम पे, मतलब वो अपने बर्थडे पे खिलाएगा या अपनी शादी में खिलाएगा, मतलब तो इसकी जांच कैसे की जाए ये हम पूछेंगे अपने नेक्स्ट कॉलर से।
5: हेलो, मैं इंद्रपाल मिश्रा अमृता मोहली सीतापुर से।
0: जी सीतापुर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान असली रेडियो पर, आप अपना प्रश्न रख सकते हैं सर।
5: सबसे पहले ये कार्यक्रम किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है
0: जी,
5: इसके लिए इरफान शाह को बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों को भी।
0: नहीं, अब आपने इरफान जी को धन्यवाद बोल दिया है, अब आपके लिए एक सवाल है हमारी ओर से। आप ये बताइए, अगर आप इंसान की खूबियों को मतलब समझ रहे हो तो ठीक है, इंसान अच्छा ये भी ठीक है, लेकिन इंसान का जन्मदिन पड़े, उसका शादी हो, उसके लालन पालन करने वाले छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हों, इन सभी अवसरों पर अगर आपको मिठाई ना मिले तो आपको कैसा लगेगा बताइए?
5: तो अच्छा नहीं लगेगा,
0: नहीं लगेगा ना, सेम पिंच, हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब हम ये नहीं समझ पा रहे कि हम इनका खाता खत्म करें या फिर आपकी बात को आगे बढ़ा दें, क्या चाहते हैं आप इंद्रपाल जी?
5: आप प्रश्न पूछना चाहते?
0: हाँ जी, आप प्रश्न ही पूछ लीजिए प्लीज अपना सवाल रखिए।
5: हमारे यहाँ बलुई दोमट जमीन है, ये दीमक बहुत लगती है, तो बीज उपचार किया था, 15 दिन बुआई हो गए हैं, सीपो नील 4 ग्राम मात्रा से, लेकिन पौधे सूख रहे हैं।
0: मतलब पौधे बड़े हो गए, कितने बड़े हुए हैं?
5: अभी 15 दिन हुए, शुरू जुलाई में।
0: हाँ हाँ, तो आपने जैसे बोया है वो अभी कोपल से मतलब निकल के सूख रहे हैं या फिर थोड़े बड़े होके सूख रहे हैं?
5: हाँ, बड़े हो गए, थोड़े
0: बड़े हो गए। ओके, और कोई सवाल सर?
5: और कोई नहीं
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, आपका जवाब आप तक पहुंच रहा है। सर प्लीज इनके सवाल
2: जी। सर, जो दीमक की जो आपने समस्या बताई है, ये बलुई दोमट में जो मिट्टी होती है यहाँ पे, जिसे जल निकास इसका बहुत अच्छा होता है, तो इसमें खास कर समस्या पाई जाती है। तो क्या करें, जो ज़्यादातर क्या होता है कि जब किसान भाई जैसे खेत में अगर नमी की मात्रा कम या प्रॉपर अगर नमी आपके खेत में नहीं है तो दीमक का जो अटैक होगा वो आपके खेत में ज़्यादा होगा। तो इसके लिए क्या है कि पहले आप खेत में जो है अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें, लेकिन अधपकी गोबर की खाद का उपयोग ना करें, क्योंकि इससे दीमक बढ़ सकते हैं। जब आप कभी भी जैसे आपने मक्का की बुआई की, उससे पहले आपने जब उसमें गोबर की खाद मिलाते हैं मिट्टी में, तो आप जैसे क्या होता है किसान जल्दी जैसे किसान को जो गोबर की खाद होती है पूरी तरीके से पकी नहीं रहती है, वो अधपकी रहती है, उसको उठा के खेत में डाल देते हैं, तो जैसे क्या होता है, इससे क्या होता है कि दीमक का जो प्रकोप होता है उस अधपकी जो गोबर की खाद होती है ज़्यादातर बढ़ जाती है जी। तो क्या होता है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं दीमक से बचाव के लिए, आप बुआई से पहले बीज को उचित कीटनाशी से उपचार करना बहुत लाभदायक होता है। यदि खेत में पहले से ही दीमक की समस्या रहती है तो किसी विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार बुआई के समय अनुचित कीटनाशी का प्रयोग कर सकते हैं आप। जैसे फसल की नियमित निगरानी करें, यदि कहीं पौधे अचानक सूखते हैं दिखाई दें तो तुरंत खेत का निरीक्षण करें और आवश्यक पड़ने पर कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह लें के अनुसार नियंत्रण उपाय अपनाएं। और जो आप जिसे प्रॉपर क्या जिसे जिस इलाके में आप देखा जाए कि अगर दीमक ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, तो उसके लिए फोरेट करके आता है, उसको आप मिट्टी में जैसे बोते हैं आप मिट्टी में मिला के बो सकते हैं, जिससे क्या होता है दीमक का जो प्रभाव होता है तो वो कम हो जाता है।
0: जी, अब मैं आपसे फटाफट से सवाल रखूंगी और आप हमें फटाफट में जवाब देंगे। अभी आपने संक्षिप्त में जवाब दिया है, अब मतलब विस्तृत जवाब दिया है, हम चाहेंगे आप संक्षिप्त में जवाब दें क्योंकि वक्त की कमी है हमारे पास में सर। तो अब पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं और सवाल मेरा ये है आपसे कि मक्के में कौन सी खाद और कितनी मात्रा में डालनी चाहिए।
2: जी, जो बेसिकली मक्का है, वो मक्का कोई भी फसल हो तो उसमें एनपीके जो उसका जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोग होता है, और मक्के में जो अपने इधर के मक्के हैं उसमें हम जिंक की कमी पाई जाती है, जिसमें आप नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम के साथ साथ आप प्रॉपर अगर जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद माना गया।
0: जी, अब ये नेक्स्ट सवाल है कि फसल में हम किस तरह से अपने फसलों की बीमारी और उसके कीटों का मतलब पहचान कर पाएँ, कुछ ऐसा स्पेसिफिक है जो हमारे इस क्षेत्र में पाया जाता है।
2: जी, मक्के में जो ज़्यादातर जो होते हैं इसमें जो पाया जाता है वो आर्मी वॉर्म करके कीट होता है, जो बहुत ही शुरुआती लक्षण जो उसको होते हैं बहुत ही नुकसानदायक होता है मक्के के लिए।
0: जी।
2: या जो कीट होता है मक्के की नई पत्तियों को खाकर पौधे को नुकसान पहुँचाता है, तो इसके नियमित उपयोग के लिए आप फेरोमोन ट्रैप करके आता है जो आपको किसी निकट कृषि विज्ञान केंद्र से मिल जाएगा, उसका उपयोग कर सकते हैं आप, या कोई कीटनाशक जैसे क्लोरोपाइफास करके हो गया, इसको आप अगर सही समय पर छिड़काव कर देंगे, जो पीके में ज्यादातर जो लगता है, तो अगर पीके में आप क्लोरोपाइफास का अगर सही से इस्तेमाल कर देते हैं तो जो आपके ये कीट होंगे वो नष्ट हो जाएंगे, जिससे आपके पैदावार में कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ेगा।
0: जी, और इस बार मतलब मक्के में लगभग कितनी उपज एक किसान भाई पा सकते हैं किसी भी मक्के से?
2: अगर देखा जाए तो अगर मौसम अगर सही साथ दिया है, मौसम अनुकूल रहा, अंतिम अवस्था तक अगर मक्के का मौसम ठीक ठाक रहा, तो मुझे लगभग लगता है कि 70 से 90 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक जो उपज है वो मिलने की उम्मीद है।
0: जी, और क्या कोई सरकारी योजना भी है हमारे मक्के की खेती के लिए?
2: जी, आजकल जो सरकार है मैम वो किसानों के लिए नई नई महत्वपूर्ण योजना चला रही है, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि करके है, या मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, या किसी यंत्रीकरण योजना, उन्नत बीज वितरण तथा किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम जो सरकार वो समय समय पर चलाती रहती है, जो हमारे किसानों के लिए बहुत ही बेहतर, बहुत ही उपयोगी माना गया।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हम चलते चलते एक सवाल आपसे और करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई कुछ हंसी मजाक वाले भी मैसेजेस आ गए हैं तो उसको ले लेते हैं। प्रमुख जी कहते हैं, भैया पंजाब पहाड़ पर है आकांक्षा बहनी, आप चढ़ना पाई बा, आपका पैर पिरा लगी, हम लोग यहाँ रही थे, हमारे लोग का पिरा लगा था, तो आपका बता दी एक बार हम गए थे पहाड़ों पर और हमको बस आधे घंटे में चढ़ के नीचे आना था और वो जगह थी माता मनसा देवी की, ठीक है, चूंकि हमने NCC भी किया, हमने बहुत सारा बहुत कुछ किया है तो उसमें हम लोग को टास्क मिलता है, एज अ टास्क हम लोग गए और दर्शन करके चढ़ के वापस भी आ गए, बाकी आप समझदार हैं। और साथ में लिखते हैं कि आकांक्षा दीदी, इरफान भैया का ब्याह हुआ है, आपका निक निक बहुत जी मिली है, फुटा बता से लेके का करी हो, आज हम इरफान भाई के तरफ से हैं पार्टी चेंज। ये कौन सी बात होती है?
1: बहुत-बहुत शुक्रिया।
0: नहीं, ये कोई बात ही नहीं होती, हम मानेंगे नहीं, कैंसल। ताबिश खान जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, गुड इवनिंग आपको भी। और एक प्यारा सा सवाल है, लिखते हैं एक्सपर्ट महोदय जी, मक्का में बाली आने से पहले उसके ऊपर जीरा निकलता है, उसको निकलना जरूरी क्यों मतलब माना जाता है? हमारे गांव में बोलते हैं कि बारिश आ गया है अब इसको निकल आना चाहिए, ऐसा क्यों है?
2: क्योंकि जो मक्के जो होते हैं, जो पॉलिनेशन जो होता है, जैसे परागण कहते हैं, अगर जीरा नहीं निकलेगा तो आपका जो परागण होगा वो होगा नहीं, जिससे जो मक्के के जो ये पॉट्स बनते हैं वो पॉट्स का निर्माण नहीं होगा, तो इसलिए जो जीरा निकलना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है मक्के के।
0: ओके, और विजयपाल जी ने भाई धन्यवाद दिया है और बड़ा सा फीडबैक पहुंचाया है, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। और विजयपाल जी ही कहते हैं कि इंद्रपाल जी मीठा नहीं खाते, उन्हें शुगर है, इसलिए आपने मीठा पूछा, आपने नमकीन पूछा था, हमने मीठा नमकीन पूछा नहीं, हमने कहा कुछ खिलाने की बात, उन्होंने हमें लगता है खाते पीते ही नहीं है, हवा पे जीते हैं, खैर हमारी आदत है हंसते खेलते रहने की। और अब चलते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर, सर आप हमारे किसान भाइयों को मक्के की खेती के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे?
2: जी, मेरा जो सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि खेती को परंपरागत अनुभव के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी करें, जैसे हमेशा प्रमाणित बीज का चयन करें, बुआई से पहले बीज उपचार करें, मिट्टी की जांच कराएं, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें और समय समय पर खेत का निरीक्षण करते रहें, जैसे जो कीट और रोग दिखाई दें उससे बिल्कुल घबराएं नहीं, बल्कि किसी विशेषज्ञ या कृषि विज्ञान केंद्र से सलाह लेकर ही उचित दवा का प्रयोग करें। इसके साथ ही जैविक खाद, फसल चक्र, जल संरक्षण और आधुनिक कृषि तकनीक ही अपनाएं, इससे मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहेगी और उत्पादन भी बढ़ता रहेगा।
0: जी, तो ये था आज का आपका गोधूली स्पेशल खेत खलियान। उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। बरसात आ रही है, जल का भी संरक्षण करें, अपने खेतों में ही छोटे छोटे गड्ढे करें ताकि जमीन उस पानी का अवशोषण कर पाए और आपकी खेत में नमी बरकरार रहे, बजाय इसके कि आप उसमें सिंचाई प्रबंधन करवाएं और पैसे की लागत लगाएं। भाई बहुत ही कीमती बारिश की हर एक बूंद होती है, तो बस आपसे यही इतना कहेंगे कि जिस तरह से हमारे लिए अमृत होता है उसी तरह से बारिश की बूंदें हमारी धरती माँ के लिए होती हैं, तो उसका संरक्षण करें, अपनी खेती को बचाएं, अपने खेत को बढ़ाएं और खुश रहें, मुस्कुराते रहें। हमारे बीच में बतौर एक्सपर्ट हमारे बीच मौजूद थे श्री शशि भूषण सिंह जी, जो लखनऊ से आए हुए थे, और इसके साथ में को होस्ट की भूमिका में आप सभी के प्यारे इरफान शाह जी, और मैं तो आपकी चुलबुली आरजे आकांक्षा। थैंक यू सो मच आप सभी का इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ में गोधूली स्पेशल खेत खलिहान में। तब तक के लिए नमस्कार, और हाँ, जाते जाते ये आल्हा आप सभी के लिए स्पेशली एंजॉय करिए। बाय बाय।

0: त्योहार।
1: सावंती लग गया है माँ, देखिए ना मेरा भी झूला घलवा दीजिए। माँ मैं भी झूलना चाहती हूँ माँ, मैं नौलखा बाग की सैर भी करना चाहती हूँ माँ, उसी में मेरा झूला डलवा दीजिए।

0: ऐसी बात मत करो दुल्हन, तुम्हारी मति मारी गई है क्या?
1: पड़े घरन की जो तिरियां हैं, घर से कदम निगाह रहना।
0: हमारे कुल की बहुएं घर से बाहर नहीं जाती।
1: ना मन ली जाए तुम बजिया का, बहुहर मानो कहा हमार।
0: बाग में कोई अनहोनी घटना हो गई तो चर्चा होने लगेगी कि मछला किसी के साथ भाग गई।
1: हवे दुश्मनी चौगी रदामा माता या है रही बतलाई।
0: कड़ंगा राजा माड़ो सरदार एक तरफ हमारा दुश्मन है और दूसरी तरफ पथरीगढ़ का राजा ज्वाला सिंह वो भी हमारा दुश्मन है।

0: मैं तुम्हारे लिए झूला यहीं पर डलवा दूंगी। तुम अपनी सारी सहेलियों को यहाँ बुलवा लो और उसके बाद 30 का त्योहार धूम से मनाओ, खूब मजाओ, सारी सहेलियों को बुला लो। इतना आनंद आएगा तुम्हें लगेगा कि तुम नौलखा भाग गए।
1: झूलो तुम महलन मा घटका कौन बात कहना।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम है आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो की है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
5: क्या आप गोंडा से हैं?

सो आप सभी का स्वागत है ई प्यारी सी शाम जिमा कचौड़ी तो खाए का ना मिले, लेकिन हाँ आपका आपके पसंद के भोजपुरी गाना सुने का जरूर मिली। सबके स्वागत है आप सबके आपन वाले प्रोग्राम गोंडा मैसेज मसाला आरजे बिना वाला माँ। और सबन का बताई कि जैसन की शाम हो चुकी है और ये जो शाम है ये आगाज़ होत है कि शाम के बेला और ऊर्जा वाली होए वाली है। और संगे संग आप सभन के जो धड़कन है वो का और संगीत में करे वाली है दिन भर के थकान। और वो थकान के साथ आपके पसंद के गीत अगर बज जाए तो थकान वही गीत में घुल के कहाँ चली जाती फिर वो लोग पता नहीं चल। तो सबन के सबसे पहले स्वागत है। और हम तो कही थे कि सब लोग फटाफट से जहाँ जहाँ जे जे होए फटाफट उठ जाएँ, कहे कि आज इस संगीत में शाम आप सबन के साथ है कुछ कहा चाहती। अब आप सुना चाहते हैं कि नहीं ये तो आपके दिल के धड़कन बताई, कहे कि गोंडा शहर के धड़कन तो आप सबन के लिए कुछ ना कुछ कहे सुने के लिए जरूर लेके आवा थी। तो सबसे पहले तो आप सबन का बताए दी कि आज गोंडा शहर के धड़कन ही कहा थी कि आज अंताक्षरी हुई लेकिन भोजपुरिया स्टाइल में। हाँ हाँ, अब आप सोचिए कि कैसे भोजपुरी में अंताक्षरी हो सकती। जी हाँ, अवधी और भोजपुरी के गीत गाय के आप अपने जो सोंधी मिट्टी है ओकर प्यार अपने आवाज़ में जताए सकत हैं वो अंताक्षरी के माध्यम से, जो उनकी कल ना ही संभव है रही। और हम भी सोचें कि ये बार कहे ना अब सी कुछ भोजपुरी अंदाज में अंताक्षरी हो जाए, जेका कहे सुने के जरूरत ना पड़े, जेका समझे में देर ना लगे और जेका पढ़े के बाद जेका कहे के बाद जेका सुने के बाद सबके दिल कहे आ हा हा का बात है का बात है का बात है। ठीक है, कहते हैं कि इरतिया टूटल सितारा कहे सब पूछत है, सुबह तक कैसन गुजरा एकर कब पूछत है, तू अगर छोड़ के जाए के सोचे हा त जा, जान जिस्म से जात है तो कब पूछत है, जान जिस्म से जात है तो कब पूछत है। तो आज के शाम के शुरुआत ई बेबाक शब्दन के साथ तो भय, लेकिन कहा थे ना कि बेबाक जिंदगी जोन है वो कुछ बयान नहीं करा चाहत खाली महसूस करत है, तनहा जिंदगी के सफर खाली देख के गुजरत है। बहुत लोग अपने अपने बस्ती माँ मजबूरी से जियत हैं पर उनके बसा नज़ारा हमें सबका बहुत अच्छा लगा था। तो फिलहाल बसी बसाई बस्ती

बाद में हुई, फिलहाल आप लोगन के साथ है उन गीतन के बात हुई जिका सुन सुन के हमने सबके दिल के धड़कन कहा थी कि अरे ये तो अपने माटी के गीत है। तो माटी के गीत सुने के लिए आगे भी बरकरार रही हैं, लेकिन उससे पहले एगो ब्रेक लिया जाए और उस ब्रेक के बाद आप सबन का बताया करें भाई हमने सबके साथ है धर्मेश त्रिपाठी जी जुड़ चुका है। रवा कहाँ से आप बात करत हैं तनी जरूर बताएं चैट रूम में और आगे के प्रोग्राम में जुड़ा रही हैं, काहे कि आपका आपके टीम की जरूरत पड़ी, काहे कि आप सबन के दो टीम बनी, एगो लड़का लेगन के और एगो बिटिया लोगन के, तो दोनों टीमन के जो नेतृत्व है वो लड़की और लड़का लोग करी हैं। फिलहाल अभी लड़का लोगन में आप चैट रूम में देखा तो बाकी सबके कॉल के बाद पता चली कि के कहाँ कहाँ से जुड़ल है। फिलहाल चला एगो म्यूजिकल ब्रेक लिया जाए, उसके बाद माँ आगे के बाद कहानी ऐसे हुआ करी और कचौड़ी गली बिल्कुल सुनना पड़ी।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
4: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840335984। अब बारी है आपकी।
5: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
6: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
5: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
7: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
8: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
8: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
8: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 8888-100-9400।
0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की

भाई सबन के स्वागत है। और जैसन कि आप सबन का पता है कि आज आप सबन के अवधी भोजपुरी अंताक्षरी धमाल होने वाला है। आज गाना, हंसी, याद और सब ढेर सारा मस्ती के साथ सांझ के जो समय है ओका खूब जिए के मजा आवे वाला है। तो तैयार हो जाई काहे कि आज आवाज गूंजी हर घर से और हर घर माँ। और कहा थे कि जब सांझ के सुहावन बेला हुए और संगे चाय के प्याली हुए और हल्की हल्की हवा और रउआ सबके साथ मजा आवे के जो समय है वो इतना खूबसूरत हुए तो मन खेले का तो बिल्कुल बनता है। ता कहा थे कि गीत बिना सुना लागे मनवा के संसार, सुर से जुड़ जाला दिल बढ़ेला सबसे प्यार। तो फिलहाल ये गाना सुनिए और एकरे बाद माँ जल्दी जल्दी से सब लोग तैयार हो जाएं। हमारे साथ हैं अनिल शास्त्री जी गोरखपुर से, रवा स्वागत है, नमस्कार, शुभ संध्या। और दीपांशी शुभ संध्या, गोड़ लागतानी, बिल्कुल खुश रहा और जुग जुग जिया। फिर प्रमुख जी हमारे सबके साथ हैं, प्रमुख जी भी जुड़ चुकल बाड़े, का बात है प्रमुख जी, शुभ संध्या, का हाल है। तो चलिए जल्दी से ई गाना सुनी जो हमारे बहुत ही दिल के करीब है। हाय तो भाई आपके अपने माटी के गीत, अपने भाषा के गीत जेका सुने के बाद हमारे सबके कहा था ना कि भाषा भोजपुरी के जो जन्म है एको नए दिशा में दिखे लागत है। तो फिलहाल ये गाना सुनी सोनू निगम और श्रेया घोषाल के आवाज़ में। आप सबन का सोच के ताजू हुई कितना बड़ा बड़ा सिंगर इतने खूबसूरत आवाज़ में भोजपुरी भाषा का अपन बनाए लेन, तो हमें सबका अपने भाषा का अपन बनावे काहे का सोचे का परत है। तो चलिए सुनिए और एक बाद में शुरू हो जाए अंताक्षरी। तो लड़का लोग लड़की लोग बिल्कुल तैयार रही हैं ये गाना सुने के बाद।

सुनने वाले सोचे तो ये इतना सुरीला गीत कोने फिल्म का है भाई, दसवा फिल्म जोन की आई रही 2016 में, और इतना प्यारा सा गीत सुने के बाद दिल का धड़कन तो बढ़ गई।

गाना सुनत सुनत ही याद रखिए कि सबसे पहला जो न आप सबन के लिए अक्षर है वो है माँ। तो माँ से गाना यानी कि भोजपुरी चाहे अवधी भाषा माँ सुनावे के लिए तैयार रही है, चाहे लड़का लोगन की टीम चाहे लड़का लड़की लोगन की टीम, जो पहले सुनाई उगरे टीम का पहले पॉइंट मिलते।

0: फिलहाल माँ से गीत सुनावे के लिए कोनो तैयार नहीं है, अभी लागत है सबके तैयारी आज थोड़ी ढीली है। फिलहाल रवा के ये बताई कि कोनो ऐसन इंसान हुई शायद जेका माँ से गाना ना होती, कहीं के अवधि और भोजपुरी मिलाए के इतना सारा गीत है कि अगर आप जोड़े लागें तो नंबर कम पड़ जाए। तो फिलहाल लड़का और लड़की लोगन के टीम से गाना सुनावे वाले की कमी है, फिलहाल आप सब गाना सोच के सुनाई है, लेकिन हमारे पास कुछ सुनावे के लिए है जो न कई दिन से हम सोचे थे, लेकिन फिर हम सोचे कि मौका मिली तब सुनाए, तो वो मौका आ चुका है और आज ही गाना सुनावे के समय भी है। कहा थे कि बिन बूंद के बारिश कैसे होला, जुनून हो दिल मा ता हताश कैसे होला, कार्यक्रम के ई रंग का मजाज कैसे होला, बिन तोहरे लोगन के कॉल के ई शाम के रंग जमाल कैसे होला। कि प्यार हमार नजर अंदाज करत है, लेकिन वो हमसे बहुत प्यार करत है, चाहे दोनों माँ नफरत के ये अंधेरा एक रोज मिट जाए, रोशनी के हर रोज दोनों आवाज करत है, तोहरा चेहरा चरागन माँ दिखत है, हमरे तरह तोहरे आँखन का के देखत है, खुदा भी जानत है कि हमका यकीन है, नाई तो दिया जलाई के हवा मा कौन रखत है। शुभ संध्या दीपक हथियागढ़ से। और तो फिलहाल लड़का लोगन के टीम से चार्ट रूम में गाना सुनावे के प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और यही के साथ धर्मेंद्र जी सबसे पहले माँ से गाना सुनाए हैं, और एक साथ इनके टीम का यानी कि टीम ए का यानी कि पॉइंट मिल जाता है, टीम ए नहीं टीम बी का, बी फॉर लड़का लोग, तो टीम बी का पॉइंट मिलत है 20। और अब बारी है दूसरा अक्षर दिए के, और दूसरा अक्षर है वो है सा, सर से गाना सुनाई चाहे लिख के चैट रूम में भेजी, आप सबन का पॉइंट जरूर मिली, और देखा जाए कि कहाँ गाना सबसे ज्यादा याद है। तो चलिए अगला गाना सुने के तैयारी हो चुके है शुरू, और एगो और प्यारा सा गीत सुनावे के समय है। फिर से एगो कॉल आ चुका है, देखा जाए लड़का लोगन के टीम से है कि लड़की लोगन के टीम से। हेलो,
1: नमस्कार, भोजपुरी का प्रणाम बा।
0: हाँ प्रणाम, और सबलू सामत जी कैसन है पहले ही बताएं।
1: बढ़िया बनी, और अपने के ज्ञान असली परिवार बताई कैसन बनी।
0: पूरा परिवार आप सुबह के संग बिल्कुल खुश, और मतलब ये कहें जिंदा दिल बानी। और सबसे पहले तो आपका बताई दी कि आज अंताक्षरी चलता है भोजपुरी अवधि, तो हम चाहते थे कि आप स से गाना सुनाई अवधि माँ चाहे भोजपुरी माँ।
1: सासे ऐसा पहले तो माँ दिले रहनी है ना, माँ
0: से गाना एगो आपे के टीम के मेंबर गेस्ट कह दें तो ही से उनका पॉइंट मिल गवा आज गावे के एकदम मतलब उनाई है। आप चाहें तो चैट रूम में भी गाना लिख सकते हैं और आपका पॉइंट मिल जाए। तो फिलहाल स से गावे के लिए आपके कॉल आ चुका है, तो आपके आवाज माँ गाना सुने के तैयारी है।
1: से क्या भोजपुरी
0: आओ थी
1: टाइम दी ज्यादा।
0: बिल्कुल

0: कैया पड़वल बेचे जाइम भागलपुर ए राजा मत रह दूर।
1: क्या बात है, और बहुत अच्छा सोच के एकदम अलग गाना सुनाई, मजा आएगा वा, और एगो फीलिंग वाला गाना रहा जेका समझ के बहुत बड़ा मतलब निकलत है। बहुत बहुत शुक्रिया सबलू जी। तो सबलू जी अपने टीम का जितावे के लिए एगो गाना फिर सुनाए दिन, और आज लड़कन के टीम बढ़िया खेला थी, और ही के साथ लड़का लोगन की टीम का पॉइंट मिल चुका है। और सविता जी गाना गेस करे में थोड़ा सा देर कह दीनी, और ही के साथ पॉइंट भी चला गए। और इतना अच्छा अच्छा गाना अगर कॉल के सुनावा जाते सविता जी आशु जी तो कितना अच्छा होते। फिलहाल चला अगले शब्द के तैयारी है। अगला शब्द है अक्षर, है शब्द नहीं अक्षर है, क क से गाना सुनाई। और क से गाना सुनाए के लिए सोची तनी भर, और तब तक हम आप सबन का सुनाई थे गो गाना जिसका सुनने के बाद दिल सबके खुश हो जाएंगे।

0: रवा लोगन के का से गाना सुनावे का है। लड़की लोगन के टीम से अभी तक एक भी कॉल नहीं आवा है और हमें लागे थे आज लड़की लोगन के हारे के तैयारी हो चुकी है का। हेलो,
1: जी निशा जी, मैम का से गाना है?
0: जी जी अवधि या भोजपुरी माँ?
1: जी जी काली सैया सैया लादे कमर पे खिल जई हा, काली सैया लादे कमर पे खिल जई हा।
0: क्या बात है। और इसी के साथ निशा शुरुआत कह दी है अपने टीम का पॉइंट दिलावे के। बहुत बहुत शुक्रिया निशा आपके कॉल के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो निशा जी का टीम का मिल गए पॉइंट 20 और अभी लड़का लोगन के है 40 पॉइंट। अब आगे देखें का होत है और अगला जो अक्षर है वो है ना। ना से गाना सुनावे की तैयारी है। चला देखा जाए किकर कॉल आ चुका है। हेलो,
2: कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड।
0: हेलो, शुभ संध्या।
3: शुभ संध्या बीना जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, वह कैसन बानी आपके, शुभ नाम बताए।
3: सविता शास्त्री गोरखपुर से।
0: ओ सविता जी, बिल्कुल स्वागत है। सबसे पहले तो इतना अच्छा गाना गेस करे के बाद आप गाई नहीं, तो इस बात के मैं बड़ा मलाल है।
3: नहीं, मैं पहले ही डाल दी थी लेकिन आप उसको देख नहीं पाई होंगी। मैं भी कोशिश कर रही हूँ अवधि भोजपुरी में बोलने के लिए। तो अभी तो अक्षर आए हैं का ना?
0: ना का से आप ही के टीम के दो मेंबर गाना सुना चुकी हैं, अब ना से सुनावे की तैयारी है।
3: अच्छा ना है, मैं सोची का से है।
0: ना से आपका सोचे के बिल्कुल टाइम मिले, आप बिल्कुल सोच के सुनाए सकते हैं। वैसे आपको बताएं हमारी मातृभाषा पंजाबी है रउआ, तब हम देखो कितना सुंदर भोजपुरी बोले के प्रयास करते हैं।
3: मैं भी हम भी कोशिश कर पाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
3: अवधि में बोले के हमसे कोशिश करत बानी। जल्दी हम बोला
0: न से गाना सुनावे के पहले तैयारी करें।
3: याद तो नहीं आ रहा है।
0: अब आपका एक हिंट दे थे हम, एक पुरानी पिक्चर के गाना है, हिंदी बॉलीवुड फिल्म है बहुत पुरानी और उही के गाना है, बड़ा सुंदर गाना है, ब्लैक एंड व्हाइट गाना है। वो गाना के बोल हमें याद आवा थे लेकिन हम बता नहीं सके।
3: सॉरी मैम, याद तो नहीं आ रहा है ना से।
0: बिल्कुल सविता जी, प्रयास करें आपका याद आ सकते है। आपके सुना हुआ गाना है जहां तक हम जाने थे। चलिए शुक्रिया, आगे आपके कॉल के इंतजार रही। बिल्कुल तैयारी कमर कस कर रखी। तो भाई सविता जी बड़ा प्रयास कहीं लेकिन गाना न से नहीं सुनाई, बात के हमें दुख है। फिलहाल अक्षर के जोन ई जोन बेलारी ना रहुली ए राजा, ओ हो का बात है। ही के साथ इनके टीम से यानी कि लड़की लोगन के टीम से गाना गैस हो चुका है और ही के साथ लड़की लोगन के टीम का 40 पॉइंट मिल चुका है। और अब हम चली थे दूसरे राउंड की तरफ यानी कि शब्द राउंड, जोने में आपका शब्द मिले और शब्द सुने के बाद में आपका गाना सुनावे के लिए। फिलहाल वो गाना हम सुनाए थे जोने का, हम सोचे रहन कि हमरे सविता जी सुनावे लेकिन सविता जी का गाना भूल गवा, लेकिन फिर का करा से का जा सकत है। फिलहाल हमें जो याद है वो हम सुनाए दी थे और बड़ा प्यारा सा गीत है, ध्यान से सुनिए, बड़ा खूबसूरत सा गीत है और थोड़ा सा प्रयास, बहुत ज़्यादा तो हमें नहीं याद है।

यही के साथ ही गाना हमें आगे याद नहीं है, लेकिन ये गाना अवधी और भोजपुरी भाषा से जुड़ल गाना है और ये एगो हिंदी फिल्म का गाना है। एक आवाज़ दी है लता मंगेशकर, गंगा जमुना फिल्म के गाना है। लिखिन ही गीत का शकील बदायूनी और संगीत है नौशाद अली के। तो यही के साथ चलिए एगो गाना सुन के अगले जो राउंड की तरफ रुख किया जाए, और ये राउंड है शब्द राउंड। एमा हम आपका शब्द देव और जोने टीम के शब्द गावे के बारी आई, वही टीम का पॉइंट मिल जाए। ही के साथ है लड़की लोगन के जोन पॉइंट है हुई जात है 40, और हमरे जोन ऑपरेटर साहब हैं उन्हें मतलब पॉइंट गिने में बड़ी समस्या आवत ही लगत है, 29 पॉइंट दिए रेन का बात है। फिलहाल आप सबन के साथ चली सुना जाए सारी सारी रतिया सतावे कोयल तोरी बरहन बोलिया। इस सुने के बाद माँ आगे के गाना सुने की तैयारी बिल्कुल कस के रखी है, काहे कि शब्द से आप गाना गाए में माहिर हैं, तो बिल्कुल हमें पता है सबके आवाज़ सुने का मेरी। लेकिन अगले राउंड में आप सब चैट रूम में गाना ना लिखी हैं, आपका कॉल कई के ही सुनावे का पड़ी गाना, यही से आपका पॉइंट मिली, ना तो चैट रूम वाले गाने का पॉइंट ना मिली। पहले राउंड के लिए हम वैलिड कह दें, काहे कि अक्षर से गाने कम होते हैं।

0: वापस से सभी के स्वागत है ई खूबसूरत से शाम मा। और फिलहाल ही गाना सुने के बाद माँ आप सबन के दिल में का आवा मोहिनी गाना सुने के। वैसे तो हमें ये गाना बहुत पसंद है, काहे कि ये गाना के लिरिक्स एगो पुराना बेवफाई वाले गीत के निहाई थे, तो इसे हम आप सबन का सुनाए। फिलहाल अब शब्द के बारी है, तो सबसे पहला शब्द हम जोन दिया चाहिए था आप सबन का ओका सुने के बाद आपका सीधे कॉल करे है चैट रूम में। अगर आप गाना गेस करिए तो आपका पॉइंट ना मिले। तो पहला गाना है, मतलब पहला शब्द है बहुत ही आसान, जेका आप सब जानत हो, आप सबसे जुड़ल शब्द है, और शब्द है माई। माई से गाना आप सबन के सुनावे के, और जेका सबसे पहले गाना आवत है फटाफट से कॉल करके अपने टीम का जितावे के लिए गाना सुना सकत है। और एक कॉल आ चुका है, चला देखा जाए केकर कॉल है। हेलो
1: जी, वीना जी।
0: जी वापस से आपके स्वागत है सबलू सावंत जी, और आपका माई से गाना सुनावे के पहला शब्द है माई।
1: माई
0: जी।
1: माई हो ललनवा देदा, बाबू हो सुगनवा देदा, देसवा के करनवा। जी जी थोड़ा
0: का बात है, इतनी खूबसूरत शुरुआत, हमारा तो मन रहा है कि गाना हम पूरा सुने आपसे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुने का ना मिला, लेकिन फिर भी आपके ही शुरुआत बहुत ही बेहतरीन रही, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबलू जी सुनाए हैं गीत माई हल लन वादेदा, वादेदा देश के समन्वा खातिर जिया के परनवा देदा। बहुत प्यारा सा गीत है, मैं पूरा लिरिक्स सुनाई याद है, कोई त्रुटि हुई तो करे माफ करिए, लेकिन ये गाना बहुत ही प्रिय है हमें। तो चला अगला जो गीत है ओका सुने के तैयारी आप सब कई ली, काहे कि शब्द जो है आपके सबके पसंदीदा है, और वो है धनिया। धनिया भाई सब्जी में डाले वाला धनिया ना ही, हमारे सबके यूपी बिहार में अपने प्रियसी का, अपने प्रेमिका का, अपने पत्नी का धनिया कहा जाता है, ए धनी। ठीक है, तो चलिए देखा जाए के सुनावत है धनी से या धनिया से गाना। फिलहाल हम चाहते कि लड़की लोगन के टीम से भी सब कॉल करें, लागत है कि सबके अंदर कॉन्फिडेंस ना ही आउदी भोजपुरी में गाना गाए के। फिलहाल अगर आरजे बीना की बात करें तो आरजे बीना के भी अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा तो ना ही, लेकिन हाँ इतना है कि आप सब उनका ऑन एयर हम गाना सुना सके। और इनका गाना के बाद है तो मैं गाना याद आवत है जो हम बहुत दिन से सुनावे के सोचित है, लेकिन आप सब उनका सुनाई नहीं पाए थे, लेकिन जरूर सुनाई बे। लेकिन ये छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक के बाद, और जिका भी धनिया से गाना आवत है, यानी कि सब्जी डमा डाले वाला धनिया नाई, आप सब इनके यूपी बिहार वाला प्रेमिका वाला अपने पत्नी वाला धनिया। तो चलिए आगे कई सिलसिला बरकरार रखी है, और ये प्यारा सा गीत सुनने के बाद अगला गीत सुनने की तैयारी जरूर रखी है।

0: तो रवा लोग देखा कॉल आ चुका है, देखा जाए केकर आवाज सुने का मिला थी। हेलो
1: जी मैम,
0: वापस से सबलू जी। सबलू जी आज बिल्कुल कॉन्फिडेंट है और अपने टीम का जितावे के मूड में है, तो धनी से धनिया से गाना सुनाइए।
1: धनी बीच में वर्ड आए, शुरुआती कुछ और वर्ड हो तो चलेगा मैम?
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलेगा
1: जी। सोनपुरी के मेलावा में धनिया है लिए दरोगा बाबू, खोज दी धनिया हमारे दरोगा बाबू, पढ़ल ना लिखल बारी नहीं होती यारे दरोगा बाबू, खोज दी धनिया हमारे दरोगा बाबू।
0: का बात है सबलू जी, आपके तो गाना में बड़ी अच्छी पकड़ है, मजा आएगा वह सुन के। खोज देनी धनिया हमारे दरोगा बाबू, मजा आएगा वह सुन के। का बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई सबलू जी के तैयारी बहुत ही अच्छी है और बहुत अच्छी पकड़ है, वही के साथ है इनके टीम लगातार आगे बढ़त जात है। लेकिन हमारे लड़की लोगन के टीम के का हुई अभी तो हमें सोच के दिल घबराता है, कैसे हमारे लड़की लोगन के टीम जीती हैं। फिलहाल आप सब इनके जिम्मेदारी बनत है कि कौन गाना कहाँ से सुनावे की तैयारी है। अगला शब्द के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। अगला शब्द है बड़ा ही खूबसूरत और वो है प्यार। और प्यार से क्यों का अगर भोजपुरी अवधि गाना ना आवे तो हमें लागत है जी अब है बेकार। तो फिलहाल चलिए सुनिए अगला गाना जो है

0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, शुभ संध्या। रुआ आपन नाम बताएं।
0: सुनीता मौर्या, गोड़वा घाट।
1: हाँ, गोड़वा घाट से सुनीता जी के पहले तो स्वागत है। सुनीता जी, आपका प्यार से भोजपुरी चाहे अवधी गाना सुनावे के अगर आपका आवत है तो फटाक से सुनाई दी।
0: हाँ
1: जी।
0: मिले खाते दिल बेकरार काहे होला, प्यार में लोगेवा बीमार काहे होला।
1: क्या बात है, और हमें तो लागत है कि कोई बीमार हो या ना हो लेकिन आपकी आवाज सुन के इंसान खुश जरूर हो जाए। क्या बात है, सबसे बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा आपके कॉल पे आवाज सुन के, और आगे भी ऐसे जुड़ी रही है। आपकी टीम का आपके जरूरत है, तो लड़की लोगन के टीम से सुनीता जी की आवाज में ये गाना सुने के बाद हमें लगा था कि अब लड़की लोगन के टीम में भी एक पक्का कैंडिडेट आ चुका है जो अपने टीम का जितावे के लिए बिल्कुल तैयार है। पहले एक गीत सुनिए और अगला शब्द ई गीत के बाद मिली।

फिलहाल हमारे रवा लोगन के हमार उम्र लागी और आज अपनी पसंद के गाना ना सुने का मिली, कहे कि आज अंताक्षरी होता है। और भाई आगे मूड बढ़ावत हो, अगला जो शब्द है वो दिए।

0: और मध्य प्रदेश से उदालक जी, शुभ संध्या, का हाल है? हाय, शुभ संध्या आपके भी। तो चलिए देखा जाए कि करा के कॉल आवत है और आवाज सुने के बारी है। हेलो हेलो हेलो, रवा के हमारा आवाज सुनात है। एक तो शाम के बेला और एक साथ सबके कॉल के मेला, दोनों ही एक से बढ़कर एक झुई जात है। यही से क्यों के कॉल हम तक पहुंच नहीं पावत है। हेलो
1: जी, वीना जी,
0: शुभ संध्या, पुनः सबलू जी आपके आवाज के स्वागत है। अब करिया से गाना सुनावे के लिए हमें लागत है आप बिल्कुल तैयार हैं।
1: करिया और तो बहुत हार्ड है, देले बनी अब। चलिए स्टार्ट करो तानी कोशिश।
0: बिल्कुल।
1: दिलावा में जगह तू दे दा, का करी गोरी करिया जी।
0: का बात है, और बहुत बहुत शुक्रिया एक लाइन गाय के लिए, लेकिन आपके आपके आवाज में ये गाना सुनने के बाद मजा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जुगल जी कोई बात नहीं, अगर आपका भोजपुरी ना आवा था लेकिन भोजपुरी गाना सुने के बाद आपका मजा जरूर आई। आप हमने सबके साथ बना रही है, कहे कि आज भोजपुरी गाना ना सिर्फ आपके यूपी बिहार वाला है बल्कि बॉलीवुड से है, जोन की आपके बॉलीवुड में बड़े बड़े स्टार जैसे इनके उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सोनू निगम जैसे बड़ा बड़ा स्टार लोग गाए हैं। तो चलिए आपका एगो और हम श्रेया घोषाल के आवाज में गाना सुनाई थे, जगह सुने के बाद में आप सबन का लागी कि ना ना हर भाषा का अजमावे के हुनर जेकरे पास होला वह असली माँ धुरंधर होला। फिलहाल चली सुनी प्यारा सा गीत आपके पसंदीदा गायिका श्रेया घोषाल के आवाज में। और अगला जोन शब्द है वह जादू, जेका भी जादू से भोजपुरी या उधी गीत आवत है ते फोन कई के जल्दी से सुनाए सकत है।

तो चलिए अगली आवाज सुनने के बारी है। देखा जादू से गाना के सुनावे वाला है। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो

0: हेलो
1: सेजे आपे मिल दे आना
0: हेलो

0: हेलो
1: हेलो मैम, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, शुभ संध्या, रउआ के स्वागत है। आशु जी
1: बिल्कुल मैम आता तो नहीं है, लेकिन एक ही लाइन थोड़ा बहुत कह दूंगी, मुझे भोजपुरी बिल्कुल नहीं आती।
0: बिल्कुल अवधी भाषा में भी आप गाना सुना सकत हैं, लेकिन चला जो नावत है उस नाम है जादू से गाना सुनावे का है।
1: जादू बा तोहरी नगरी मा जादू बा, बस मैं
0: का बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, जादू बा तोहरे
1: नगरी मा,
0: आहा का बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चला अब कॉल सुनत सुनत हमें ये तो भरोसा हो ही गया है कि हाँ सबके अंदर हुनर है, लेकिन अपने हुनर का पहचाने का सबका फुर्सत नहीं है। ता चला यही के साथ है, लड़का लोगन के 190 पॉइंट है और लड़की लोगन के 140 पॉइंट है। अब दूसरा जो न गीत है ओका सुने और गावे के तैयारी है। और सबसे पहले तो हम आपका बताए दें कि अब आपका आवाज़ पहचाने के कि कौने सिंगर के आवाज़ है, और अगर आप पहचान ली हैं आपकी टीम का तुरंत ही पॉइंट मिल जी हैं। तो चला अब आपका सुनाई थे हम गाना, और ये गाना सुने के बाद माँ ही आपका बतावे के कि आवाज़ कौने सिंगर के है। तो बिल्कुल तैयार रही हैं, अगर आप सब तैयार नहीं हैं तो ई म्यूज़िकल ब्रेक का एंजॉय कर लिए हैं। श्रेया घोषाल की आवाज़ है, एका सुनी है ध्यान से, और एक बाद वाले गाने का ध्यान से सुने के बाद आप गेस करी हैं कि आवाज़ कौने सिंगर के हैं।

0: तो ध्यान से गाना सुनिए और बताइए हैं कि आवाज किकर है। अगर आप गेस कर लिए थे चैट रूम में भी तो आपके टीम का पॉइंट मिल जाएगी। आगे आपका इसने ही 5 गाना और सुनने का मिले और अगर आप गेस कर लिए हैं तो आपके टीम का पॉइंट मिल जाए। वही के साथ ही अनाउंस हो जाए कि कौन टीम विजेता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए गाना और फिर बताइए कि कौन है सिंगर की आवाज।
1: जी आरजे वीना जी।
0: जी सबलू सामंत जी, और अब नेक्स्ट राउंड शुरू हो गया है और उमन आपका सिंगर की आवाज पहचान के बतावे क्योंकि अभी जो गाना बजत है वो कौन है सिंगर की आवाज है।
1: क्लिप्स ऑनलाइन सुनाम कहे कि अभी ना सुन पाई।
0: हाँ बिल्कुल सुनिए ध्यान से, हम अपन आवाज रोक के आपका गाना सुनाएंगे।

0: और उम्मीद कर रहे थे कि सबलू जी आप आवाज़ पहचान ली हुई हैं। हेलो हेलो सबलू जी
1: जी भाई,
0: जी, कौन है सिंगर की आवाज़ है जी?
1: घोषाल की आवाज लग रही। तरैया घोषाल की आवाज लग रही।
0: बिल्कुल सही, आप पहचाने हैं, श्रेया घोषाल की आवाज है और ही के साथ आपके टीम का मिल जाएगी ई पॉइंट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कम समय में आप पहचाने। तो देखा लड़का लोगन के टीम बहुत ही अच्छा खेला था, वही के साथ 100 पॉइंट मिल जाते हैं लड़का लोगन के टीम का। और लड़की लोगन के टीम थोड़ा सा आज ढीला खेला थी, लेकिन कोई बात नहीं, सबके अपने अपने भाषा के पकड़ होते हैं। ऐसे आपका पता चल जाए कि आपके अपने भाषा के पकड़ कैसे बनावक है। आर आई उन्नाव लिखा है, ऐसे हमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि लड़की लोगन के टीम से हैं कि लड़का लोगन के टीम से। ई के साथ लड़का लोगन के टीम का मिल चुका है पॉइंट। और अगला गाना सुनने के लिए हो जाए बिल्कुल तैयार। और देखा अगला गाना हम का सुनाए जाए थे, और उम्मीद करी थी कि आप सभी गाना जरूर पहचान ले हैं। आप चैट रूम में भी पहचान के अपने टीम का मदद कर सकते हैं।

0: फिलहाल गेस करे वाले के दोनों टीम बराबर चलती और री उन्नाव से गेस की नहीं, सबसे पहले कल्पना और उदित नारायण, पहले कल्पना उदालक जी गेस की, फिर री आप लड़की हैं कि लड़का पहले ये बताएं, यही के बाद आपके टीम का पॉइंट मिली। और अभी चला जाए देखा जाए कि कॉल के बतावत है, जो कॉल के बताई थी वही का मान लिया जाए। हेलो
1: हेलो मैम।
0: हेलो शुभ संध्या आशु जी, वापस से आपका स्वागत है। बताएं
1: उदित नारायण और कल्पना जी।
0: कल्पना जी और उदित नारायण बिल्कुल सही आप गेस कहनी, और एक के साथ आपके टीम का सीधे 100 पॉइंट मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगला गाना सुने के तैयारी रखिए और देखा जाए के गेस के पावत है अपने टीम का के जितावे के तैयारी के लिए है। फिलहाल अगला गाना बहुत ही प्यारा सा हम सोची थे आप सबन का सुनाई दी और उम्मीद करी थी कि आप सबन का ये गाना बहुत ही पसंद आई। फिलहाल गाना गेस करे के तैयारी ध्यान से रखिए, कहे कि गाना बहुत ही प्यार है।

0: चला देखा जाए कि गेस ये गीत कहाँ। हेलो
1: हेलो मैम,
0: वापस से आशु जी आपके स्वागत है। बताई ये गाना किकरे आवाज में है?
1: इंदु सोनाली और रितेश पांडे। इंदु सोनाली और रितेश पांडे मैम।
0: आप बिल्कुल श्योर हैं?
1: बिल्कुल मैम।
0: हमका तो थोड़ा थोड़ा डाउट लगत है। आपके आंसर सही नहीं है, आप फिर से प्रयास करी। बिल्कुल, चलिए देखा जाए अब के गेस करते हैं। गाने जरा ध्यान से सुनी, थोड़ी अलग आवाज है और आपके जाने पहचाने सिंगर की आवाज है, ध्यान से सुनी।
2: जगह पिया तोहरा पाव में जोड़ ले ले बानी।
1: हेलो
0: जी सबलू जी, आवाज के है
1: अभी जो सॉन्ग बजल है ना?
0: जी जी,
1: प्रियंका सिंह के है, नीरव और अमरपाली की मूवी है।
0: बिल्कुल सही आप गेस करें हैं, प्रियंका के आवाज में ही गीत है और एकरे साथ एगो मेल कलाकार के भी आवाज है, अगर आपका पता है तो बिल्कुल बता सकते हैं।
1: लास्ट में सॉन्ग का नाम भी कहनी है पर बजाम तो पकड़ ले।
0: फिलहाल कोई बात नहीं, लेकिन इमन में लीड वॉइस फीमेल के रही और आपका ही के लिए पॉइंट मिलत है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। भाई सबलू जी आज बहुत अच्छा खेलत हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें अच्छी जानकारी है और ये आवाज़ है प्रियंका सिंह के और प्रियंका सिंह की आवाज़ में आप ही गाना सुने। अगला गाना सुने की बारी है, चलिए देखा जाए आप सब गेस कह पावत हो कि नहीं। बड़ा प्यारा गीत है और जल्दी जल्दी गेस करें जो ज़्यादा ज़्यादा पॉइंट दोनों टीम का मिले। रियू नाउ प्लीज़, आप ये मेंशन कर दी कि आप कोने टीम से हैं, लड़का लोगन की टीम से कि लड़की लोगन की टीम से।

0: हेलो,
1: मैं भी आवाज कौन सुन की है?
0: बिल्कुल, अगर आपका लगत है तो हो सकत है, लेकिन ई आवाज पवन सिंह के नहीं है। आप थोड़ा करीब हैं लेकिन दूर हैं। सुनीता जी,
1: ठीक है, कोशिश करेंगे सही बता पाए।

रितेश की आवाज है, ना ही ई खेसारी जी की आवाज है, ना ही ई रोहित की आवाज है। रोहित की आवाज पिछले वाले गाने के लिए बिल्कुल, सबलू जी बिल्कुल सही गेस करी हैं आप। ये आवाज ध्यान से सुनी।

0: हेलो हेलो मैम, वो कौन सा प्रोग्राम इसमें चल रहा है
1: इस समय? गोंडा मैसे मसाला आज बीना वाला चल रहा है और इसमें भोजपुरी गानों के साथ हम आज शाम की शुरुआत कर चुके हैं।
0: अच्छा, मैं अरमान बोल रहा हूँ।
1: जी अरमान, बताएं ये आवाज़ किसकी? अगर आप गेस करते हैं तो आपकी टीम को पॉइंट मिल जाएगा।

हेलो। हेलो, इतना सारा कॉल और क्यों के आवाज ऑन एयर नहीं आवत है? मतलब इधर से कुछ नेटवर्क में इशू है। फिलहाल लड़का लोगन के टीम से सही आंसर आ चुका है। चैट रूम में उदालक जी और अनिल शास्त्री जी बिल्कुल सही आंसर देनी। सुगम सिंह आंसर सही है और ही के साथ लड़का लोगन के टीम के पॉइंट पहुंच जात है 490 का बात है। और देखा, लड़का लोगन की टीम बहुत अच्छा खेलत है और आज सबसे ज़्यादा हमें खुशी है कि सबके पार्टिसिपेशन बहुत बराबर है। और ये जो भाषा है बहुत हम सब सुनब तो पसंद नहीं करी थी, या कबो कबो हम सब ऐसा भी हो जाता है कि दो दिन साल बीत जाते हैं हम सब भोजपुरी या उधी गाना नहीं सुने, लेकिन अभी भी ये ऐसा भाषा है जोने के साथ हमारे सबके प्रेम है, प्यार है। और चलिए अगला गाना सुन के बताएं ये आवाज़ के कर है। ठीक है, उम्मीद करी थी कि ये गाना आप सब गेस कर पई हैं। बहुत ही प्यारा गाना है, सुन के बताएं।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो मैम हेलो
0: हेलो आशु जी, ये किकर आवाज है?
1: प्रियंका सिंह और पवन।
0: क्या बात है, बहुत सही आंसर। और आपके टीम का अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है और एक साथ है आपकी टीम को मिल जाते हैं 100 पॉइंट। बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो प्रीति जी, बहुत सही समय आप कॉल किए और आपके नाम से गाना भी चलते बांध लेनी प्रीत हम तोरे।
1: तो प्रियंका सिंह,
0: ये गाना तो प्रियंका सिंह की आवाज में ना है, फिर से सुनिए ध्यान से, हम अपना आवाज रोक के आपका सुनाई थे।

0: बताई प्रीति जी की क्या आवाज है? नहीं नहीं, थोड़ा दिमाग
1: यहाँ सुन ही नहीं पाए हम गाना, ही पता नहीं आया ही मेरे पास।
0: एक बार फिर से सुनिए फिर कॉल करिए। ओके।

हेलो हेलो,

0: हेलो।
1: हाँ
0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, शुभ संध्या। अनिल जी कैसे हैं?
0: बढ़िया है। और ये हमको लग रहा है कल्पना जी ने कहा है।
1: जी बिल्कुल सही पहचाने हैं आप, और आपके टीम का पॉइंट भी मिल जाता है। और बिल्कुल ना इंसाफी हो रही है आज, आप अपने लड़का लोगन की टीम का सपोर्ट करे में लगा है और अपने
0: हम सोचते कि महिलाओं का है,
1: और अपने धनिया का बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो भाई ये गाना गेस कर दी ने आप सबके लड़का लोगन के टीम के अनिल जी, और भाई आज लड़का लोगन की टीम बहुत अच्छा खेला थी, और हमें तो लागत है आज लड़का लोगन की टीम बाजी मार ली। और ये के साथ हमारे सबके लड़का लोगन के टीम के हो जाते 590 पॉइंट का बात है।

0: मोहब्बत के मौसम बदल ना सके, हाल दिल के संभाले संभल ना सके, रोग ऐसन भइल बा बताई।
1: सबका बताई कि ई गाना मा लड़की और लड़का दोनों के आवाज जे गेस करी उही का पॉइंट मिले।
0: निकल ना सके।

0: चला देखा जाए कि ये गेस करते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: मैम, कल्पना से?
0: नहीं, बिल्कुल गलत आंसर है, कल्पना जी की आवाज नहीं है ये। भाई सब लोग बढ़िया प्रयास करते हैं लेकिन मौके से वो चीज नहीं हो पावत है जो उन होए का चाहिए।
2: हेलो
0: हेलो,
2: हाँ नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, पुनः स्वागत है आपके, और बताइए कौन से?
2: मैं ये महिलाओं के लिए बोल रहा हूँ।
0: जी बताएं।
2: ये
0: जी ना, बिल्कुल गलत जवाब। ना तो ही श्रेया घोषाल की आवाज है ना ही उदित नारायण की आवाज है। फिर से ध्यान से सुनिए भाई, ये सबसे खतरनाक वाला है और देखा के गेस कर पावत है, तनी ध्यान से फिर से सुनिए।

0: जी सबलू सामंत जी बताई किकर आवाज है?
1: उदित नारायण सर और श्रेया घोषाल जी है।
0: ना श्रेया घोषाल तो है ही साथ है, एक और सिंगर की आवाज है, उकर आवाज भी आपका गेस करेक्ट है।
1: उदित नारायण सर है ना?
0: उदित जी के साथ जो ना आप नाम लिए वो गलत है, मतलब श्रेया जी की आवाज नहीं है।
1: कल्पना जी और उदित नारायण है।
0: एक और सिंगर की आवाज है वो आप नहीं भी गेस कर पाए हैं, प्लीज प्रयास करें।
1: हमें तो जहाँ तक कंफर्म है कि उदित नारायण सर गाए गाना को।
0: उदित जी की आवाज तो बिल्कुल है, लेकिन संगे संगे एक और सिंगर की आवाज है वो आप नहीं गेस करें, और यही के लिए आपका पॉइंट नहीं मिला, और जो तीनों के नाम ले वही का पॉइंट मिली। आशु जी बिल्कुल सही, कल्पना और उदित जी, लेकिन एक सिंगर के और नाम आपका जोड़े का पड़ी तबे आपका पॉइंट मिली।

तो चलिए आप सब गैस नाई कह पाइन, लेकिन फिर भी आप सबन का पॉइंट, मतलब लड़की लोगन के टीम का पॉइंट मिल जाए। काहे कि सबसे पहले अनिल जी फोन के बताए नहीं कि कल्पना और उदित जी की आवाज़ से बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन साथ में एक और आवाज़ है यानी कि आपके मनोज तिवारी गाना के शुरुआत की नहीं, जो उनके आप नाम नहीं लिए हैं। इसी से हम आप सबन का पॉइंट तो पूरा दी थे, लेकिन आप सबका बताई कि शुरुआत जो उन गाने के कीन है वो मनोज तिवारी की आवाज़ में भई। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और चला आखिरी गाना सुन के बताई कि केकर आवाज़ है, और जे सबसे पहले गेस करी उकरे टीम का मिल जाई पूरा पूरा पॉइंट। ही के साथ लड़की लोगन के टीम के पॉइंट हो जात है 340। 340 हाँ का बात है, 340 नहीं 440 का है, कि पहले भी लड़की लोगन के टीम का पॉइंट मिल चुका है। अब चली बहुत ज़्यादा दूरी तो नहीं है, लेकिन हाँ हमें उम्मीद है कि गाना जे गेस करी वह टीम जीत जाएगी। तो ये आखिरी गाना के क्लू आप सबन के लिए, देखा जाए के गेस कह पावत है। ये थोड़ी नई आवाज़ है, लेकिन वह इंसान गेस कह पाई जिका गाना सुने के आदत हुई या जिका जानकारी हुई। तो ध्यान से सुनिए ये आखिरी वाला गाना, आपका ये गाना जिताए भी सकत है और हराए भी सकत है।

0: ये आवाज किकर है, आप गैस कर लिए?
1: मनोज तिवारी।
0: मनोज तिवारी, तो आप शुरू में बताए दी नहीं, फिलहाल वाला गाना जरा गैस करी, जो नया गाना प्ले होता है और आपके टीम को पॉइंट मिल चुका है।

0: मम्मी जी बताई केकर आवाज है
1: रेखा भारद्वाज
0: ना, रेखा भारद्वाज की आवाज ना ही है।

0: हेलो
1: हेलो मैम, आप रूपाली?
0: गलत आंसर।
1: लंका
0: ये नए सिंगर की आवाज है।

भाई जे जे जाने ते बतावेला, लेकिन फिलहाल आंसर है रेखा झा और मोनिका। दोनों सिंगर लोग नई हैं और इन्हीं की आवाज में ये प्यारा सा गीत है जे सब जगह धूम मचावेला। और ही के साथ हमें ये अनाउंस करे में बड़ी खुशी होला कि आज के जो उन विजेता हैं ये कोई दूसर नहीं, हमारे सबके लड़का लोगन के टीम है। तो बहुत जोरदार तालियां, लड़का लोगन के टीम बहुत अच्छा खेली। और ही के साथ सबसे बड़ा शहजाद है सबलू सामंत जी का, जो कि बिहार से हैं और वह आज प्रूफ कर दिन कि उन्हें अपने भाषा में कितना पकड़ है और बहुत ही ज़्यादा अपने भाषा के वे सम्मान करते हैं। तो फिलहाल ये बात सोचे वाली हमारे सबके लिए है कि हमें सबका अपने भाषा के बारे में कुछ नहीं आवत, यानी कि हम सब गाना नहीं ज़्यादा जाने। तो बिल्कुल अपने भाषा पे जोर दिए, अपने मातृभाषा का पहचाने और अपने मातृभाषा का सम्मान दिए कि बहुत अच्छी चीज़ है। और आज अगर हम अंताक्षरी ना खेलाई तो हमें रउआ लोग पता ना चलत कि हमारे जो लिसनर लोग हैं उनके अंदर भोजपुरी और ओधी गाना गायब के शक्ति बा कि नहीं। और एक के साथ बहुत बहुत शुभकामना, कॉन्ग्रेचुलेशन लड़का लोगन के टीम के हमरे तरफ से। और ख़ास तौर पे हमरे सबके जो कहते हैं कि वो लिसनर लोग जो उन लोग अपने भाषा के बारे में बहुत पकड़ रखते हैं, तो सबसे अच्छी बात है हिंदी भाषा का तो सम्मान करेगा चाहिए, लेकिन अपने मातृभाषा का लेके भी हमें सबका बड़ा पर्टिकुलर होए चाहिए। कहे कि हम बहुत सारे राज्य में घूमे हैं, चाहे वो बिहार होए, चाहे पंजाब होए, चाहे वो राजस्थान होए, चाहे वो तेलंगाना केरल, ये सब जगह जाओ उन्हें सबका अपने भाषा से जुड़ी हर चीज़ आवत ही। चाहे पहाड़ी इंसान के पास आप जाओ तो उनका पहाड़ी गीत बहुत सारा आवत हुई। इनफैक्ट वो पहाड़ी गीत में आपका मतलब पीछे कई दी गाय माँ, मतलब आपका इतना हिंदी गाना ना आई जितना उन्हें सबका पहाड़ी गाना आई। तो फिलहाल अपने भाषा का लेके थोड़ा सा और सम्मान बढ़ावें और अपने जो भाषा के गीत हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा सुने। एक साथ है हमें दिए इजाज़त, आप सबन का बहुत सारी शुभकामना। आप सुनत रहो अपन शो गोंडा मैसे मसाला आरजे बीना वाला, अपने आरजे बीना के संग अपने पसंदीदा फ्रिक्वेंसी 99.6 FM, ई है गोंडा शहर के धड़कन के संग।

नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपके अपने आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सो कैसे हैं आप सब, क्या है हालचाल और क्या है आज की शाम में बहुत खूबसूरत बात, मुझे चैट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। लेकिन दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि दिल की बस्ती में उजाला नहीं होने वाला, मेरी रातों का खसारा नहीं होने वाला, मैंने उल्फत में मुनाफे को नहीं सोचा है, मेरा नुकसान ज्यादा नहीं होने वाला। उससे कहना कि मेरा साथ निभाए आकर, मेरी यादों से गुजारा नहीं होने वाला, वो हमारा है हमारा है हमारा है फकत, बावजूद इसके हमारा नहीं होने वाला। आज उठा है मदारी का जनाजा लोगों, कल से बस्ती में तमाशा नहीं होने वाला। सो हिमांशी बाबरा का ये बहुत ही खूबसूरत सा पेशकश है। और चलिए, जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही बेहतरीन सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और लगा दीजिए डेफिनेटली जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत, क्यों? क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके, और ये आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा हमेशा के लिए आपकी है दोस्तों। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। प्रमुख कुमार जी लुधियाना से, अनुष्का श्रावस्ती से, मोहम्मद मुशी बाराबंकी से, बबीता जी गोंडा से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, लवली सिंह गोंडा से, मनीष शर्मा खुरहासा गोंडा से, प्रीति शुक्ला जी बहराइच से, सुरेश कुमार जी चौक से, सबलू सावंत मुंबई से, आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल तबिश खान, आपका भी स्वागत है, वेलकम इन योर शो। और एंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली पहली पहली फरमाइश। जी हाँ दोस्तों, दिल के जज्बातों को समेट लीजिए और हमारी फरमाइशी की महफिल में अब सुकून के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि प्रमुख कुमार जी को लुधियाना से सुनना है गाना, जब से प्यार किया है तुमसे जान के हमरे लाले पड़ गए। सो एंजॉय करते हैं गोरे से हम काले पड़ गए, सिर्फ और सिर्फ प्रमुख कुमार की फरमाइश पर, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी लेकिन रियलिटी चेक कराने वाली बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

सो ये बहुत ही अतरंगी सा गाना हमने एंजॉय किया है दोस्तों, प्रमुख कुमार जी की फरमाइश पर जो कि है लुधियाना से। अगली फरमाइश हमारे पास में है अनुष्का की श्रावस्ती से, और जानते हैं अनुष्का को श्रावस्ती से कौन सा गाना सुनना है? गेस कर लीजिए एक बार। अरे कर लीजिए ना, गेस करने में क्या जाता है, गलत हो गए कहीं तो क्या कोई बुराई है? हर जगह अच्छा होना, हर होना सही, हर जगह सही होना सही है क्या? सो अगली फरमाइश हमारे पास में अनुष्का की श्रावस्ती से, उनको सुनना है गाना चांद के पार चलो। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा सदाबहार नगमा अनुष्का की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। नवीन राजपूत जीएमपी से, विशाल बेदर्दी और सुरेंद्र यादव गौरा चौकी से।

है चांद से पार चलो मूवी का अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में हमारे अनुष्का की फरमाइश पर जो की है श्रावस्ती से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों, चलिए ना चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है मोहम्मद मुशीब की बाराबंकी से। मोहम्मद मुशीब जी को बाराबंकी से सुनना है गाना काली नागिन की जैसी जुल्फे तेरी काली काली। अच्छा जी, सो काली नागिन की जुल्फे होती हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद मुशीब जी की फरमाइश पर जो की है बाराबंकी से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

काली नागिन के जैसे जुल्फे तेरी काली काली हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सनम्मा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। ये तो फरमाइश थी मोहम्मद मुशीब जी की बाराबंकी से। मोहम्मद मुशीब जी ने बाराबंकी से फरमाइश की थी इस गीत की। एंजॉय करते हैं बबीता की फरमाइश। बबीता को गोंडा से सुनना है गाना। हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, तुम चाहे बचो जितना हम तुमको चुरा लेंगे। सो एंजॉय करते हैं उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सनगमा हमारी बहुत ही खूबसूरत सी बबीता की फरमाइश पर। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो राहुल कुमार। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: तो दोस्तों, उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज में हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा हाउ रोमांटिक नगमा। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश जानते हैं किसकी है हमारे पास में। आज तो बैक टू बैक इतनी खूबसूरत इतनी प्यारी फरमाइश आ रही है कि जिसको सुन के मेरा मूड तो रिफ्रेश हो रहा है। आपको कैसा लग रहा है मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना। एंजॉय करते हैं जग्गू दादा की फरमाइश। जुगल किशोर वर्मा जी को MP से सुनना है अर्पण मूवी का गाना परदेश जाके परदेसिया भूल ना जाना पिया। तो लता जी की आवाज में लता जी की सुरीली और बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही मीठी सी आवाज में एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।
1: पापा के बर्थडे

हमने एंजॉय किया है अर्पण पिक्चर का ये गाना लता मंगेशकर जी की आवाज में हमारे जुगल किशोर वर्मा जी की फरमाइश पर जो की है एमपी से। अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से, और धर्मेंद्र मोहन को आवाज विकास गोंडा से सुनना है गाना तेरी मोहब्बत मेरी जवानी बनके रहेगी कोई कहानी। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा तवायफ मूवी का, आई मीन पति पत्नी और तवायफ मूवी का, सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र जी की फरमाइश पर।

तेरी मोहब्बत मेरी जवानी बनके रहेगी कोई कहानी। हमने एंजॉय किया है ये गाना। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। ये तो फरमाइश थी धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी फटाफट से अपनी कुर्सी की पेटी को खोल लीजिए और कुर्सी की पेटी को खोलने के बाद में चैट बॉक्स के डांस फ्लोर पे आ जाइए, क्योंकि अगली जो फरमाइश है वो इतनी एनर्जी देने वाली है, इतनी हाई एनर्जेटिक फरमाइश है, इतना हाई एनर्जेटिक गाना है कि एकदम मजा ही आ जाएगा दोस्तों, एकदम तगड़ा गाना है। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। सबीहा को गोंडा से सुनना है गाना तौबा तौबा। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा सुपर डुपर हिट नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

पापा, हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा सभी हक की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ दोस्तों, और जानते हैं अगली फरमाइश हमारे पास में किसकी है। अगली फरमाइश हमारे पास में है मुमताज अंसारी जी की गोंडा से, और मुमताज अंसारी जी को गोंडा से सुनना है गाना, मिलने की तुम कोशिश करना वादा कभी न करना, क्यों? क्योंकि वादा तो टूट जाता है ना। एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर।

वादा तो टूट जाता है। हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर जो कि है गोंडा से। चले चलते हैं अगली फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन उसके पहले इस गाने को सुनने के बाद में मुझे कुछ याद आया है, और अगर याद आया है तो पेश ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? सो किसी ने कहा है कि रस्म आवारगी सौगात नहीं होती है, मेरी सहरा से मुलाकात नहीं होती है, बस सवालात के देता है जवाबात मुझे, बात होती है मगर बात नहीं होती है। अपनी हसरत का गला घोट दिया है मैंने, अब दिलासों से मुलाकात नहीं होती है, मैंने सोचा न था दुनिया से कहूंगा ये भी, आजकल तुझसे मेरी बात नहीं होती है। ये तो बादल है जो रस्ते से भटक जाता है, ये तो बादल है जो रस्ते से भटक जाता है, वरना सहराओं में बरसात नहीं होती है। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगला डिमांड है लवली सिंह की तरफ से, गोंडा से हैं लवली सिंह, और इनको सुनना है गाना चमक चम चम के अंगूरी बदन। तो करिश्मा कपूर का सुपर डुपर हिट नगमा हम एंजॉय करते हैं सिर्फ और सिर्फ लवली सिंह की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, इट्स कुमार फ्रॉम एमपी रीवा। हरीशचंद्र सविता आपका भी स्वागत है, और साथ ही में उन्नाव से ऋषित आपका भी स्वागत है। स्टे ट्यून्ड। अंगूरी अंगूरी अंगूरी अंगूरी अंगूरी।

0: बदन हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, सुपर डुपर डुपर डुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा हमारे हमारे लवली सिंह की फरमाइश पे जो की है गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। दोस्तों अगली फरमाइश जानते हैं किसकी है। अगली फरमाइश हमारे पास में है आशु मिश्रा जी के लखनऊ से, और आशु मिश्रा जी को लखनऊ से सुनना है गाना तुमसे बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई और जुबा पर आज दिल की बात आ गई। सो एंजॉय करते हैं किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाज में काम चोर मूवी का ये ओल्ड इज गोल्ड और सदाबहार सुनहरा नगमा हमारी बहुत ही प्यारी सी बहुत ही क्यूट सी आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर जो की है लखनऊ से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।
1: सारे गामा

और तुमसे बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई और जुबान पर आज दिल की बात आ गई। हम एंजॉय किया है ये सुपर डुपर हिट ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाज में हमारी आशु जी की फरमाइश पर जो की है लखनऊ से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों सबलू सावंत की मुंबई से। सबलू सावंत को मुंबई से सुनना है गाना मेरे नैना सावन भादो। सो एंजॉय करते हैं ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा लता मंगेशकर की आवाज में महबूबा मूवी का सिर्फ और सिर्फ सबलू सावंत की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। महेंद्र राजस्थान से आपका स्वागत है।

गाना था ना दोस्तों, हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा सबलू सावंत की फरमाइश पर जो कि है मुंबई से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले फरमाइश की तरफ, अगले पसंदीदा गीत की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूंगी कि इस फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहाँ हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ। सो मिलते हैं सीधे 9 बजे, पेट पूजा करके आइएगा। जिन लोगों ने अभी अभी अभी तक पेट पूजा नहीं की है, आप किस समय का, अब किस टाइम का इंतजार कर रहे हैं आप सब? सो एंजॉय करते हैं निशा की फरमाइश, पटेल नगर गोंडा से निशा को सुनना है गाना सुपर डुपर हिट, अक्षय कुमार का गाना, अक्की का गाना, वेलकम का गाना, कैटरीना कैफ का गाना, पार्टी सॉन्ग। आप सुन रहे हैं रेडियो

0: मुख्य समाचार। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू, हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। अमरीका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से ज्यादा वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अलनीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी शुपरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को ये गाना, ये फरमाइश आई हुई थी निब्बर जी की रानी बाजार सुनार गली गोंडा से। इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले री वेलकम री स्वागत आई मीन सुस्वागतम आप सभी का आपके अपने शो में। और जिन लोगों की फरमाइशें भी बची हुई हैं उनसे निवेदन है कि फटाफट से सारे काम को विराम देके यहाँ आ जाइए और अपनी फरमाइशी गीत को बहुत ही प्यार से, बहुत ही सुकून से थोड़ा सा टाइम निकाल के एंजॉय कर लीजिए। सो दोस्तों अगली फरमाइश हमारे पास में है विशाल बेदर्दी की। विशाल बेदर्दी को सुनना है गाना चंदन सा बदन चंचल चितवन। सो एंजॉय करते हैं ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा।

सूरत मन भी तन भी सुंदर मन भी सुंदर तू सुंदरता की मूर्त है। हमें एंजॉय किया ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है सुरेंद्र यादव की गौरा चौकी से। सुरेंद्र यादव जी को गौरा चौकी से सुनना है गाना लेके आए हो हमें सपनों के गाँव में। सो एंजॉय करते हैं ये ओल्ड इज गोल्ड वाला गाना लेकिन रीमिक्स वर्जन में डिस्को रिबॉर्न वर्जन में सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड।

फरमाइश थी दोस्तों सुरेंद्र यादव जी की गौरा चौकी से। अगली फरमाइश हमारे पास में है नवीन राजपूत की एमपी से, और नवीन राजपूत को एमपी से सुनना है गाना तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के। सो एंजॉय करते हैं लता जी की आवाज में ये गाना सिर्फ और सिर्फ नवीन राजपूत जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

हरीशचंद्र सविता जी की। हरीशचंद्र सविता को सुनना है गाना, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सो एंजॉय करते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा ओल्ड इज गोल्ड बना।

मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। हमने एंजॉय किया है ये नगमा हरीशचंद्र सविता जी की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। दोस्तों बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है चांदनी की। चांदनी को सुनना है गाना कोई शहरी बाबू। सो एंजॉय करते हैं ये गाना चांदनी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

सामने की बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, जो की होगी हमारी आज की आखिरी फरमाइश। सो अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है सुरेश कुमार जी की चौक से। सुरेश कुमार जी को चौक से सुनना है प्यार दिलों का मेला है। एंजॉय करते हैं ये नगमा, इसी के साथ लेना चाहूंगी अलविदा। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, आपके अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना। आजू बाजू वालों पर, वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है और अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता। क्यों? क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आरजे सिंपल, नॉट

0: नफरत की हमारे शहर में लग न जाए आग, नफरत की हमारे शहर में मैं मोहब्बत हूँ, मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
3: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी करें 7234-020-202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे 1 हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी। मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और अब कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास। कल भाई बहुत ही शानदार कार्यक्रम आप लोगों को करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छे अच्छे गीत आप लोगों ने गाए, और आज एक कवि को आपके बीच लेकर आए हैं। आप सभी उनके नाम से परिचित होंगे, हिंदी साहित्य का एक ऐसा कवि जिन्होंने केवल कवि सम्मेलनों में ही नहीं, बल्कि मुशायरों की दुनिया में भी अपना एक अलग मुकाम बनाया। न जाने कितने लोगों ने उनके पैर की धूल अपने सर माथे पर रखकर उनके लिखी हुई कविताओं के ऊपर शोध किया और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। जी हां, उन प्यारी सी शख्सियत का नाम है गोपाल दास नीरज। आज हम बात करेंगे उनकी, गोपाल दास नीरज की, और उनकी लिखी हुई बहुत सारी गजलें, कुछ गीत फिल्म में भी आए और हिट हुए, सुपर डुपर हिट हुए, और कुछ गीत तो ऐसे हैं जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं। लेकिन चलिए, चूंकि गोपाल दास नीरज आशावादिता के कवि हैं, ऑप्टिमिज्म का फेवर करते हैं, तो चलते हैं उनकी एक कविता की ओर। उन्होंने लिखा कि पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर, जिंदगी एक रास्ता है, इस रास्ते पर अगर आपको चलना ही है तो मुस्कुरा कर चलिए। पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर, वो मुसाफिर क्या जिसे कुछ शूल ही के पथ थका दे। कुछ कांटे गड़ गए पैरों में, आपने कहा नहीं नहीं हो पाएगा। हाँ, वो मुसाफिर क्या जिसे कुछ शूल ही के पथ थका दे, हौसला वो क्या जिसे कुछ मुश्किलें पीछे हटा दें, वो प्रगति भी क्या जिसे कुछ रंगनी कलियां तितलियां मुस्कुराकर गुनगुनाकर ध्येय पथ मंजिल भुला दे। जिंदगी की राह पर केवल वही पंथी सफल है, आंधियों में बिजलियों में जो रहे अविचल मुसाफिर, पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुराकर चल मुसाफिर। बहुत ही प्यारी पंक्ति आई यहां पर कि वो प्रगति भी क्या जिसे कुछ रंगनी कलियां तितलियां मुस्कुराकर गुनगुनाकर ध्येय पथ मंजिल भुला दे। जब मैं एक अमेरिकन पोएट अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ता हूँ, तो उनकी एक बहुत ही अच्छी पोम है स्टॉपिंग बाय वुड सन स्नोई इवनिंग, कुछ उसी थीम पर ये कविता जा रही है। तो वो भी चलते हैं, क्रिसमस की संध्या है और जाना है उनको अपने फार्म हाउस पर, लेकिन एक तरफ बर्फीली झील है और दूसरी ओर बहुत खूबसूरत से जंगल है, और वहाँ पर पहुँच कर वो अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, घोड़ा वहीं पर है उनके साथ, और उन आकर्षण में खो जाते हैं। जो उनका घोड़ा है वो घंटी बजाकर संकेत देता है कि यह आपके रुकने के लिए उचित स्थान नहीं है। तो उनकी पंक्ति जो जवाहरलाल नेहरू को बहुत पसंद थी, और जितने भी अंग्रेजी साहित्य से प्रेम करने वाले लोग हैं उन सभी को पता है कि उन्होंने लिखा द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप
but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. उन्होंने कहा कि जो दुनिया के आकर्षण है इनसे हटना पड़ेगा, अगर ये आ जाएंगे तो फिर हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। गोपालदास नीरज ने भी वही बात कही है।

0: आगे कहते हैं कि जानता जब तू कि कुछ भी हो तुझे बढ़ना पड़ेगा। चेंजिंग ऑफ पाथ कैन नॉट बी द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। रास्ता बदल देना किसी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुश्किलें हर रास्ते पर आपका इंतजार करती हैं। जानता जब तू कि कुछ भी हो तुझे बढ़ना पड़ेगा, आंधियों से ही न खुद से भी तुझे लड़ना पड़ेगा। सामने जब तक पड़ा कर्तव्य पथ पर तक, ओ मनुजो मौत भी आए अगर तो मौत से भिड़ना पड़ेगा। अब यहां पर मुझे रॉबर्ट ब्राउनिंग याद आते हैं। वो कहते हैं मैं मित्र के साथ लड़ूंगा, द बेस्ट एंड द लास्ट। आई वॉज एवर ए फाइटर, सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। उन्होंने कहा कि मैं जिंदगी में एक लड़ाका रहा हूं और अपनी अंतिम और सबसे अच्छी लड़ाई मौत से लड़ूंगा। ये रॉबर्ट ब्राउनिंग है। वही थीम नीरज जिले में आ रही है कि मौत भी आए अगर तो मौत से भिड़ना पड़ेगा। है अधिक अच्छा यही फिर ग्रंथ पर चल मुस्कुराता, मुस्कुराती जाए जिससे जिंदगी असफल मुसाफिर। पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर। याद रख जो आंधियों के सामने भी मुस्कुराते, याद रख जो आंधियों के सामने भी मुस्कुराते, वे समय के पंथ पर पदचिन्ह अपने छोड़ जाते। क्या बात कही, जो आंधी में चला है वो अपने निशान छोड़ गया है। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं कि दूसरों के बनाए हुए रास्ते पर चलते हैं, और एक वो होते हैं जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। और जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं वो महान होते हैं, वो मुश्किलों से लड़े हुए इंसान होते हैं। याद रख जो आंधियों में आंधियों के सामने भी मुस्कुराते, वे समय के पंथ पर पदचिन्ह अपने छोड़ जाते। चिन्ह वे जिनको न धो सकते प्रलय तूफान घन भी। प्रलय आ जाए, तूफान आ जाए, घनघोर बारिश हो जाए, लेकिन वो पदचिन्ह नहीं मिटेंगे। धरती जब तक है तब तक लता जी, रफी जी, मुकेश जी, किशोर दा, मन्ना रे, मतलब जो साहित्य के लोग, साहित्य अमर होता है, उनकी उनकी बातें होंगी, शेक्सपियर की बात होंगी, विलियम वर्ड्सवर्थ की बात होंगी। तो उन लोगों ने अपने पदचिन्ह बनाए। चिन्ह वे जिनको न धो सकते प्रलय तूफान घन भी। मूक रहकर जो सदा भूले हुओं को पथ बताते, किंतु जो कुछ मुश्किलें ही देख पीछे लौट पड़ते। जिंदगी उनकी उन्हें भी भार ही केवल मुसाफिर। पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर। जी हाँ, रास्ते पर चलना है तो मुस्कुरा कर चलिए। आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, बाधाएं हो, मुस्कुराते रहिए, मंजिल आपके करीब आ जाएगी। जी हाँ, और भाई हम आपको भी बुला रहे हैं, और तब बुला रहे हैं जब समय, जब टाइम जो है वो जो समय है वो शाम का है, और जब शाम का समय होता है तो कुछ जलता है। क्या जलता है जानते हैं इस प्यारी सी गज़ल के माध्यम से। सुनते रहिए रेडियो गणेशलेट 9.6 एफएम, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद ख़ास। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।
1: सारे गामा कार

जी हाँ, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना खिलाया। जी हाँ, हमारे साथ भाई निरंकाल मिश्र जी हैं। वाह वाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपको। सविता शास्त्री जुड़ चुकी हैं जी। चरण स्पर्श आपको, कैसी हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छी होंगी। रवि जी बहुत दिन के बाद दिखाई पड़े भाई, गुड इवनिंग सर जी। जी शुभ संध्या आपको भी। मुस्तफ़ा सोजी जी आदाब करते हैं आपको। दादा चरण स्पर्श अनिल शास्त्री भी जुड़ चुके हैं और इश्तियाक शेख भी जुड़ चुके हैं। हेलो जी हाँ, और क्या बात है भाई। रवि जी ने लिखा कि आज पप्पू ने पूरा स्कूल हिला डाला। टीचर ने पूछा छिपकली कौन है? पप्पू ने कहा छिपकली एक गरीब मगरमच्छ है जिसे बचपन में बोनबीटा वाला दूध नहीं मिला, जिसके कारण वो कुपोषण का शिकार हो गया। क्या मतलब, क्या नज़रिया है आपका जी। मेरी नाइस सांग इश्तियाक शेख ने लिखा, क्या बात है भाई, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व तो हमारे साथ उपस्थित हैं। अशोक त्रिपाठी जी चरण स्पर्श करते हैं आपको, आपका आशीर्वाद हमको मिले। मोहम्मद मुशीफ जी हैं भाई, बहुत सुंदर गजल, बहुत बहुत धन्यवाद। और निरंकार मिश्र ने भी लिखा है बहुत अच्छा गाना। और आइए, गोपाल दास नीरज जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने कहीं कहीं व्यंग भी किया, व्यंग भी लिखा। मुझे याद नहीं है किसकी रचना है, चार पंक्तियों में इतना अच्छा व्यंग कर दिया मानव की सभ्यता पर कि मैं दंग रह गया। अचानक मुझको पंक्तियां याद आई। कवि ने लिखा है कि सांप सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। फिर एक बात बताऊं, उत्तर दोगे कैसे सीखा डसना, विष कहां पाया। अंतिम पंक्ति में कवि ने क्या कुछ कह दिया है कि जो डसना है या विष पीना है या जो जहर है वो कहां से आ गया। आप तो सभ्य भी नहीं हुए, शहर में रहे भी नहीं, तो बताइए तो फिर ये डसना कहां से सीख लिया आपने। इसे कहते हैं कवि। एक पंक्ति में, मतलब जब मैंने ये पंक्ति पढ़ी थी अपने विद्यार्थी जीवन में, तो मतलब आप यकीन मानिए कि अंतिम पंक्ति ने मुझको हिला के रख दिया था कि इतनी इतना बड़ा व्यंग और वो भी बहुत ही कम शब्दों में। चलते हैं गोपाल दास नीरज जी की ओर। उन्होंने कहा कि सभ्यता की बात की उन्होंने, तो कहा सभ्यता कहाँ आ गई, कहाँ खड़ा है विश्व, जा रहा है किधर गतिदत्त विज्ञान कलाओं का, किस दिश उन्मुख इतिहास दे रहा क्या विकास, क्या शोर समय का है क्या जोर हवाओं का, क्या यही सभ्यता क्या यो सुंदर सुखद स्वर्ग, क्या यही सभ्यता का वह सुंदर सुखद स्वर्ग है पड़ा जहां पग पग पर मुर्दों का पड़ाव, बिक रहा जहां नारीत्व रजत के टुकड़ों पर, बिक रहा जहां नारीत्व रजत के टुकड़ों पर, फूलों के शव पर जहां श्रृंगालों का अभाव, क्या यही कला की चिर अनमोल अजंता है, क्या यही कला की चिर अनमोल अजंता है, मकड़ी मकड़ों ने जहां तान रखे जाले, घोंसले बने हैं जहां उल्लू को गिद्धों के, अजगर बिच्छू सांपों के जहां बोल बाले। वही सांप वाली बात। ये जलते महल मकान तड़पते गली गांव, ये भूख भुखमरी सूखा बाढ़ अकाल त्रास, ये धस्त धरा यह बम धुएं से घायल नब, विज्ञान इसी को क्या कहता मानव विकास। ये कविता उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद लिखी थी, उन्हें उसी के ऊपर लिखी थी। आगे कहते हैं कि सम्मुख लहराता है लोहू का अतल सिंधु, मतलब लहू का सागर है, इतिहास यहीं तक बस क्या चलकर आया है, मानो मानो के बीच घृणा की बंदूकें,
क्या यही प्रगति अब तक मजहब कर पाया है? अब देखिए बात, बाइबल के स्वर्ण सफों पर गोली के अक्षर, क्या क्राइस्ट शेक्सपियर शैली का यही देश? कर में एटम, मस्तक में युद्धों के नक्शे, लिंकन वाशिंगटन इलियट का क्या यही वेश? क्या वाल्मीकि का यही तपोवन पावन है? क्या वाल्मीकि का यही तपोवन पावन है? सीता की साड़ी जहां उतार रहा सोना, क्या यही सूर का वृंदावन मन भावन है? राधा से जहां जमाना करता अनहोना, गांधी का देश यही, गांधी का देश यही, सुभाष की यही भूमि है कैद जहां आजादी सेफ तिजोरों में, वेदों उपनिषदों गीता की क्या क्या यही मर्म, हो जाए आदमी बंद नाश की चोरी में। मैं सोच रहा हूं इस गति से चलकर जमीन, मैं सोच रहा हूं इस गति से चलकर जमीन, किस और आदमी की किस्मत ले जाएगी? ऐसे ही गर विज्ञान चाटता रहा लहू, दुनिया सारी कितने दिन खैर मनाएगी? करती है जब विद्रोह प्रकृति होकर अधीर, कभी बोलता है, करती है जब विद्रोह प्रकृति होकर अधीर, आदमी स्वयं तब अपनी मौत बुलाता है, जब बल अजमाता है निज पौरुष निर्बल पर, तब उसका ही निर्माण उसे खा जाता है। अब भी है समय नहीं कुछ ज्यादा देर हुई, अब भी है समय नहीं कुछ ज्यादा देर हुई, लोहों को के ये बोझीले वस्त्र उतारो तुम, आंखों से ये सोने का सुरमा दूर करो, ले प्यार आंख में भूखी ओर निहारो तुम, सारे कंठों से एक साथ मिलकर गाओ। अब कवि निष्कर्ष दे रहे हैं, सारे कंठों से एक साथ मिलकर गाओ वो गीत कि सबको, वो गीत कि जो सबके गीतों को गाता है, जिसकी लयतान अमर है कभी न टूटी है, वो गीत जिसे जग कहता धरती माता है। अपनी मातृभूमि से प्रेम कीजिए, प्रेम कीजिए, नफरत को हटा दीजिए, नहीं तो ये दुनिया बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है। उन्होंने फिल्मों में बहुत सारे गीत लिखे, नई उम्र नई फसल का एक गीत मुझको याद आता है, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, कन्यादान फिल्म का गीत आप सबने सुने होंगे, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, ये उन्हीं का लिखा हुआ गीत है जो मोहम्मद रफ़ी जी ने गाया था, ए भाई ज़रा देख के चलो आगे ही नहीं पीछे भी, मेरा नाम जोकर आप सभी को याद होगा, उन्हीं का लिखा हुआ गीत है, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, उन्हीं का लिखा हुआ गीत, प्रेम पुजारी का गीत, शोखियों में घोला जाए और इसके पश्चात फूलों के रंग से जैसे न जाने कितनी

उनका उनकी लिखी हुई एक उनका लिखा हुआ एक नगमा आपको सुनाते हैं। मेरे साथ ताबिश खान जी हैं भाई, गुड इवनिंग सर, आदाब आपको। नेहा जी नमस्कार सर, आदाब आपको भी। कम से कम भाई बुधवार या शनिवार को दर्शन दिया कीजिए, आपसे बड़ी उम्मीद रहती है। आइए अब चलते हैं, आपको एक ऐसा गीत सुना देते हैं जो गोपाल दास नीरज जी ने लिखा था और आवाज़ मिली थी कायनाती गले के मालिक मोहम्मद रफ़ी की। जी हाँ, सुनाते हैं आपको ये प्यारा सा नगमा और मिलते हैं इस नगमे के उस पार। सुनते रहिए रेडियो गणेश की 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: जी एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, इस्तकबाल, वंदन और नमन। बात कर रहे हैं गोपाल दास नीरज के बारे में। हिंदी कविता हमने आपको उनकी सुनाई और अब चलते हैं भाई, उन्होंने गजलों की दुनिया में भी कमाल किया। मतलब जब वो मुशायरों में जाते थे तो उनको सद बनाया जाता था। उन्होंने लिखा कि गजल में अपनी कि अब तो कोई मजहब ऐसा भी चलाया जाए, अब तो कोई मजहब ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, अब तो कोई मजहब ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सिमत, सिमत मतलब तरफ, हर सिमत खिलाया जाए। आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए, प्यार का खून हुआ क्यों ये समझने के लिए, हर अंधेरे को उजालों में बुलाया जाए, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, कितनी बड़ी बात है, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए, जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, जिस्म हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए, गीत उन्मन है गजल चुप है जुबाई है दुखी, साहित्य रो रहा है, गीत उन्मन है गजल चुप है रुबाई है दुखी, ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। उन्होंने कहा हमको बुलाइए, हम सिखाएंगे। जी अशोक सागर जी हैं हमारे साथ। रिश्तों से बड़ी चाहत क्या होगी, दोस्ती से बड़ी इबादत क्या होगी, जिसे मिल जाए आप जैसा दोस्त उसे ज़िंदगी से शिकायत क्या होगी। साधन नमस्कार मनु जी, आप सभी श्रोताओं को गैंस रेडियो 89.6 FM पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। बहुत दिनों के बाद आपको देखा अशोक सागर जी, जरा समय समय पर आते रहा कीजिए, बहुत अच्छा लगा। और नेहा जी है वह हमारे साथ, तो इसके बाद सविता जी को गज़ल अच्छी लगी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको। प्रबल मिश्रा जी आ चुके हैं भाई, आज समय से हैं। गुड इवनिंग सर जी, शुभ संध्या प्रबल जी, आपको कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और मुशीब जी को भी भाई गज़ल पसंद आई, क्या बात है। और आप सभी लोग स्वस्थ हमको दिख रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान है। और अब आइए, जब उन्होंने कह दिया है कि नीरज को बुलाया जाए, तो आज चूंकि कार्यक्रम हम नीरज जी का कर रहे हैं, तो एक और नगमा आपको नीरज जी का सुना देते हैं, और इसके बाद फिर सुनाते हैं आपको एक प्यारी सी गज़ल। कम से कम हम गोपाल दास नीरज जी पर प्रस्तुति कर रहे हैं, तो उनकी लिखी हुई जो रचनाएं हैं, उनके लिखे हुए नगमे हैं, वो आप तक पहुंचने चाहिए। जी हाँ, ये गीत जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये भी गोपाल दास नीरज जी के द्वारा लिखा हुआ है, और आप सुनेंगे तो हमको लगता है कि आपको अच्छा लगेगा। अब देखिए कहाँ तक अच्छा लगता है ये तो आप बताएंगे। फिलहाल हमने अपनी पसंद से गोपाल दास नीरज जी का ये गीत आपके लिए चुना है, आप बताइए आपको ये गीत कैसा लगा।
1: सारेगामा कारवां डिजिटल ऑडियो प्लेयर, इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ याद।

जी हाँ भाई, ये गोपाल दास नीरज जी की लिखी हुई रचना थी जिसको आपने सुना। अब चूंकि उन पर कार्यक्रम कर रहे थे तो आपको उनके दो गीत सुनाए, और उन्होंने गजल लिखी कि हम तेरी चाह में, मोहब्बत देखिएगा, हम तेरी चाह में ऐ यार वहाँ तक पहुँचे, हम तेरी चाह में ऐ यार वहाँ तक पहुँचे, होश ये भी न जहाँ है कि कहाँ तक पहुँचे, इतना मालूम है खामोश है सारी महफिल, इतना मालूम है खामोश है सारी महफिल, पर न मालूम ये खामोशी कहाँ तक पहुँचे, न वो ज्ञानी न वो ध्यानी न बिरहमन न वो शेख, वो कोई और थे जो तेरे मका तक पहुँचे। तेरे मका मतलब ईश्वर और अल्लाह की बात हो रही है। एक इस आस पे अब तक है मेरी बंद जुबां, एक ही कास पर अब तक है मेरी बंद जुबां, कल को शायद मेरी आवाज वहां तक पहुंचे। अब देखिएगा अंतिम पंक्ति में कवि ने बहुत गहरा संदेश दे दिया। कहते हैं कि चांद को छू के चले आए हैं विज्ञान के पंख, चांद को छू के चले आए हैं विज्ञान के पंख, देखना यह है कि इंसान कहाँ तक पहुंचे। जी हाँ, चांद को हमने छू लिया लेकिन इंसानियत में हम कहाँ हैं ये तो देखना भी बाकी है। जी हाँ, घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे मत लेने का वक्त हो चला है। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आसमान वाले ने चाहा तो शनिवार को पुनः आपसे इसी महफिल में मुलाकात होगी ठीक 9:30 बजे। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सब के साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी शुक्राना। तलाक के 2 महीने बाद अपनी पत्नी को अस्पताल में इधर उधर भटकता देखकर अर्जुन स्तब्ध रह गया और सच्चाई जानकर तो जैसे टूट ही गया। उसने सोचा भी नहीं था कि वो उसे वहां देखेगा। हॉस्पिटल का गाउन पहने थके हुए चेहरों और धुंधली आंखों वाले दर्जनों लोगों के बीच वो दलान के एक कोने में चुपचाप बैठी थी, मानो पूरी दुनिया ने उसे छोड़ दिया हो। और उस पल अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कोई उसे दबा रहा हो। वो उसकी पूर्व पत्नी जिसे उसने 2 महीने पहले ही तलाक लिया था। अर्जुन एक 34 साल का व्यक्ति था, एक साधारण ऑफिस कर्मचारी जिसकी शादी 5 साल तक ही चली, मगर देखने में वो सबको स्थिर लगती थी। उसकी पत्नी माया एक सौम्य दयालु महिला थी, बहुत ज्यादा आकर्षक नहीं थी, लेकिन जब भी अर्जुन घर आता था उसे सुकून का एहसास कराती थी। वो दोनों भी दूसरे जोड़ों की तरह ही सपने देखते थे, एक घर खरीदना, बच्चे पैदा करना, एक छोटा सा प्यारा सा परिवार बसाना। लेकिन शादी के 3 साल बाद माया ने 2 बार बच्चों के इस दुनिया में आने से पहले ही उन्हें खो दिया और इन सब ने उनके घर का माहौल बदल दिया। माया कम बोलने लगी, उसकी आंखें अक्सर दूर तक देखती रहतीं। अर्जुन उन दिनों की वजह से थका हुआ महसूस करने लगा। जब भी वो काम से घर आता तो सिर्फ आंखें और ठंडे चेहरे देखता। उसे इस बात से इनकार नहीं था कि उसकी भी गलती थी, लेकिन वो क्या करता उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो देर से घर आने लगा, अपनी पत्नी से बातचीत करने से कतराने लगा, घाम को उनके बीच के खालीपन का सामना करने से बचने का बहाना बनाने लगा। धीरे धीरे छोटी मोटी बहसें ज्यादा होने लगीं। हालांकि उन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। और फिर एक दिन एक छोटी सी थकाऊ बहस के बाद अर्जुन ने धीरे से कहा, हमें शायद तलाक ले लेना चाहिए माया।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है शुक्राना। अब तक आपने सुना अर्जुन और माया की शादी धीरे धीरे खालीपन के गर्त में जाने लगी थी। कारण था उनके जिंदगी में तीसरे का आगमन ना हो पाना। और फिर एक दिन अर्जुन ने तलाक का सुझाव दे दिया। अब आगे माया उसे बहुत देर तक देखती रही और फिर सिर्फ एक वाक्य कहा, तुमने फैसला ले लिया है ना। अर्जुन ने सिर हिलाया। वो ना रोई ना चीखी। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा अर्जुन सोच रहा था। उसने बस चुपचाप सिर हिलाया और उसी रात अपने कपड़े पैक कर लिए। तलाक के कागजात पर जल्दी से दस्तखत हो गए, मानो वो दोनों मानसिक रूप से बहुत पहले से ही तैयार हों। तलाक के बाद अर्जुन उसी शहर में एक दूसरे अपार्टमेंट में रहने चला गया और एक साधारण जीवन जीने लगा। सुबह काम पर जाना, रात में ड्रिंक्स के लिए बाहर जाना या घर आकर कोई फिल्म देखना। ना कोई खाना बनाने वाला था, ना हर सुबह चप्पलों की खट खट की आवाज आती थी और ना ही कोई जानी पहचानी आवाज उससे पूछती थी, खाना खाया? लेकिन अर्जुन ने खुद को कमजोर नहीं होने दिया। उसे यकीन था कि वो सही है, कम से कम उस समय। 2 महीने बीत गए। वो एक साये की तरह जी रहा था। कई रातें ऐसी भी होती थीं जब वो किसी बुरे सपने के बीच जाग जाता था और खुद को सपनों में माया का नाम पुकारते हुए पाता था। उस दिन वो अपने सबसे अच्छे दोस्त रोहित से मिलने एक हॉस्पिटल में गया था जिसकी अभी अभी सर्जरी हुई थी। जैसे ही वो इंटरनल मेडिसिन विभाग के गलियारे से गुजरा, उसने अनायास ही अपना सर घुमाया क्योंकि उसे लगा कि कोई जाना पहचाना सा है। और फिर उसने वहां माया को देखा। वो वहां अस्पताल का गाउन पहने बैठी थी। उसके बाल अजीब तरह से छोटे से कटे हुए थे। वो अपने लंबे बालों से बहुत प्यार करती थी। उसका चेहरा पीला पतला था और उसकी आंखें सूनी और बेजान थीं। उसके हाथों पे एक आईवी ड्रिप लगी हुई थी। अर्जुन वहीं जमा खड़ा रहा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके दिमाग में कई सवाल दौड़ रहे थे। उसे क्या हुआ है? उसे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? वो वहां अकेली क्यों बैठी थी? अर्जुन कांपते हुए उसके पास गया और बोला, माया? माया ने ऊपर देखा। उसकी सूनी आंखें आश्चर्य से चमक उठी। तुम? अर्जुन? अर्जुन बोला, तुम यहां क्या कर रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? माया अर्जुन से नजरें बचाने लगी। उसने धीमी आवाज में कहा, कुछ नहीं, बस रूटीन चेकअप है। अर्जुन उसका हाथ थामकर

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है शुक्राना। अब तक आपने सुना, माया और अर्जुन के तलाक को 2 महीने हो चुके थे। एक दिन अर्जुन अस्पताल में अपने किसी दोस्त से मिलने गया तो उसे वहां माया मिली, बीमार। अर्जुन उसके पास बैठकर उसका हालचाल पूछने लगा। अब आगे अर्जुन बोला, तुम्हें मुझसे छिपाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ऐसे देखकर मैं कैसे यकीन करूं कि सब कुछ ठीक है? एक पल बाद माया धीरे से बोली, आह अर्जुन, मुझे कैंसर डायग्नोस हुआ है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि अगर मैं सारे बातें फॉलो करूंगी तो ठीक हो सकता है। लेकिन अर्जुन, मेरे पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं है, और घर छोड़ने के बाद मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं बचे हैं। अर्जुन दंग रह गया। उसके शब्द अर्जुन के दिल में सीधे चाकू की तरह चुभ रहे थे। पिछले 2 महीनों से मैं एक झूठी शांति के एहसास में जी रहा था, जबकि माया, जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी, जो हर वक्त उसके लिए दुआएं मांगती थी, वो अकेले ही एक अवर्णनीय दर्द सह रही थी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अर्जुन का गला रुंध गया। माया बोली, हमारा तलाक हो गया है। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। मुझे लगता था कि मैं खुद संभाल सकती हूँ। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अपराध बोध ने उसे ज्वार की तरह घेर लिया था। उस दिन वो शाम तक उसके साथ बैठा रहा। महीनों में पहली बार उनके बीच परिवार की तरह बात नहीं हुई, ना कोई दोष, ना कोई अभिमान। जाने से पहले अर्जुन ने कहा, माया, मुझे अपने पास रहने दो प्लीज। हालांकि अब हम पति पत्नी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। माया बस उदास होकर मुस्कुराई और बोली, क्या तुम्हें मुझ पर दया आ रही है? अर्जुन बोला, नहीं, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। अगले दिन वो सुबह सुबह गर्मा गर्म खिचड़ी का डिब्बा और कुछ संतरे लेकर हॉस्पिटल लौट आया। माया उसे देखकर हैरान तो हुई, लेकिन कुछ बोली नहीं। शायद उसे लगा था कि अर्जुन आएगा, लेकिन शायद यकीन नहीं था। अगले कुछ दिनों में उसके साथ रहने के लिए अर्जुन ने लगभग अपनी नौकरी छोड़ ही दी थी। वो उसे जांच के लिए ले जाता, हर दवा का इंतजाम करता और डॉक्टर द्वारा बताए गए हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा करने की जरूरत क्या थी। प्रायश्चित करने के लिए, पछतावे के लिए, या सिर्फ इसलिए कि वो अब भी उससे प्यार करता था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है शुक्राना। अब तक आपने सुना, तलाक के 2 महीने बाद एक दिन अर्जुन को माया एक अस्पताल में मिली बीमार। पूछने पर पता चला कि उसे कैंसर डायग्नोस हुआ था। अर्जुन से रहा नहीं गया, वो दोबारा उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने लगा, उसकी तीमारदारी करने लगा। ऐसा करने में उसे एक अजीब सा सुकून अनुभव हो रहा था। अब आगे एक दोपहर जब वो उसके लिए अस्पताल का बिस्तर तैयार कर रहा था, माया अचानक बोल पड़ी, क्या तुम्हें पता है मुझे तलाक से पहले ही पता था कि मैं बीमार हूं। अर्जुन दंग रह गया, क्या तुम्हारे तलाक मांगने से एक हफ्ते पहले मैं लगातार पेट दर्द की वजह से डॉक्टर के पास जा रही थी। बायोप्सी की रिपोर्ट उसी दिन आई जिस दिन हमारा झगड़ा हुआ था। अर्जुन ने उसकी तरफ मुड़कर देखा, उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल बैठा जा रहा हो। तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? माया बोली, मुझे पता है अगर मैं तुमसे कहती तो तुम जिम्मेदारी की वजह से मुझे रोक लेते, इसलिए नहीं कि तुम मुझे प्यार करते थे और मेरे साथ रहना चाहते थे। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी कि तुम आजाद रहो, कम से कम एक ऐसे इंसान की तरह रहो जिसे दर्द ने ना बांधा हो। अर्जुन अपनी आंखें छलकने से रोक नहीं पाया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस तरह का इंसान हूं? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे दर्द नहीं होता? माया ने उसे बहुत देर तक देखा, वो मुस्कुराई, सबसे शांत मुस्कान जो अर्जुन ने कभी भी उसके चेहरे पर देखी हो। माया बोली, ऐसा नहीं है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपनी पूरी जिंदगी एक बीमार इंसान के साथ बिताओ और हर दिन खुश होने का नाटक करो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। अर्जुन जवाब नहीं दे पाया क्योंकि वो कुछ हद तक सही थी। उस वक्त अर्जुन सचमुच उसे छोड़ देना चाहता था, वो उसे बोझ समझता था, ये जाने बिना कि वो ही था जिसने उस औरत को इस बेरहम दुनिया में छोड़ दिया था। करीब एक हफ्ते बाद माया की कीमोथेरेपी शुरू हो गई। अर्जुन उसके साथ हॉस्पिटल में ही रहने लगा। कई सालों में पहली बार अर्जुन ने सचमुच सुनना सीखा। जब उसे दर्द होता था, जब दवा की वजह से उसे उल्टियां होती थी, जब वो किसी छोटी सी बात पर हंसती थी, एक रात जब वो गहरी नींद में सो रही थी, अर्जुन ने उसका बैग छाटा और एक छोटा सा लिफाफा उसे मिला। अर्जुन बहुत उलझन में था। कुछ सेकंड की हिचकिचाहट के बाद उसने वो लेटर खोल दिया। उसमें लिखा था, जब तुम इसे पढ़ोगे तो शायद मुझ में बोलने की ताकत नहीं बची होगी, लेकिन मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं। अगर मैं वापस जा सकती तो मैं फिर भी जान देना चुनती, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें एक अलग जिंदगी जीने की जरूरत है।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है शुक्राना। अब तक आपने सुना, तलाक के 2 महीने बाद अर्जुन ने अपनी पत्नी माया को एक हॉस्पिटल में पाया कैंसर से जूझते हुए, और वो फिर उसके बहुत करीब आ गया। सब कुछ छोड़कर उसकी देखभाल में लग गया। एक दिन उसके सो जाने के बाद उसके बैग में अर्जुन को एक लेटर मिला उसके नाम का, जिस पर लिखा था, मुझे प्यार करने के लिए शुक्रिया। अब आगे। एक हफ्ते बाद डॉक्टर ने अर्जुन को अपने रूम में बुलाया और बोला, माया की

हालत बिगड़ती जा रही है। अब ठीक होने के चांसेस बहुत कम हैं। जिंदगी में पहली बार अर्जुन को किसी को खोने का इतना डर लगा। उस रात उसने अस्पताल के कमरे में माया का हाथ थामा। वो कमजोर थी और उसमें बोलने की भी ज्यादा ताकत नहीं बची थी। वो उसके पास बैठ गया और उससे बोला, मैं तुमसे फिर से शादी करना चाहता हूँ। मैं बस हर सुबह तुम्हें देखना चाहता हूँ, हर रात ऐसे ही तुम्हारा हाथ थामे रखना चाहता हूँ। मैं दोबारा शुरुआत करना चाहता हूँ, बस जब तक तुम चाहो। माया उसके गाल छूते हुए मंद मंद मुस्कुराई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके मुंह पर अब भी मुस्कान थी। उसने हामी में सिर हिला दिया। अगले दिन पूरी सादगी के साथ उन्होंने अस्पताल के एक कमरे में ही शादी कर ली। एक नर्स ने लाल धागे का कंगन बांधा और कुछ गेंदे के फूल गिफ्ट किए। ना कोई संगीत, ना कोई मेहमान, बस आईवी मशीन की बीप और फुसफुसाते वादे। 3 महीने बाद माया ने उसकी बाहों में दम तोड़ दिया। उस थोड़े से समय में वो फिर से पति पत्नी की तरह रहे। अर्जुन आज भी उस पुरानी शादी की तस्वीर और उसके द्वारा छोड़े गए उस पत्र को उस महिला के 2 पवित्र प्रमाणों के रूप में संभाल कर रखे हुए था। उसने चुपचाप उससे इतना प्यार किया, अपना दर्द, अपनी जान कुर्बान करने तक। अर्जुन अब पहले के दिनों की तरह हर रात रोता नहीं था, लेकिन जब भी कभी भी वो उस अस्पताल में जाता था तो वो हैरान नजर आता था। वो नजर जिसने उसकी बाकी की जिंदगी बदल दी और उस शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी के बीच उसे आज भी कहीं एक बहुत धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देती थी। मुझे प्यार करने के लिए शुक्रिया।

0: आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी शुक्राना। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट कर सकते हैं, तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स सारेगामा.com से।

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

आज मैं उन सॉन्ग्स की बात करूंगी जो समय की स्पेशल वैरायटी या किसी दूसरी वजह से प्रेरित होती है, जिन्हें हम रेट्रो सॉन्ग्स के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि 60s, 70s, 80s के गाने, जिन्हें हम आज भी पसंद करते हैं। वेलकम इन योर फेवरेट शो भूले बिसरे गीत, जहां आप एंजॉय करते हैं उस दौर के सॉन्ग्स को जो कहीं धुंध में खो से गए हैं, विथ योर फेवरेट आरजे अनोखी। अक्सर वो मुझसे पूछता है, क्या जिंदगी क्या मौत? मैं खामोश रहती हूँ और दिल ही दिल में कहती हूँ, तुझे पा लिया तो जिंदगी, खो दिया तो मौत। पर अगर तुझसे मुलाकात हो जाए तो सारी जिंदगी उस एक पल में तेरे साथ हो जाए, क्योंकि

जब बात साथ की होती है तो मुलाकातों का सिलसिला शुरू होता है, फिर हम सब कुछ भूलकर शायद कवि, आशिक, मजनू, शायर, शेफ, धोबी, कूली और ना जाने क्या क्या बन जाते हैं। खैर ये तो मजाक था, पर मुलाकात की बात तो 100% सच है। उस दौरान हम क्या क्या महसूस करते हैं, आइए इस सॉन्ग को सुनकर फील करते हैं, जिसे आवाज से सजाया है किशोर कुमार ने और म्यूजिक कास्टिंग है आरडी बर्मन आनंद बख्शी के, और ये सॉन्ग है अजनबी मूवी से, जो कि मेरा मोस्ट मोस्ट मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है और आपका भी मोस्ट फेवरेट सॉन्ग बनने वाला है।

अब तक हमने बात की सात से मुलाकात की, अब बात मुलाकात के बाद की यानी के ख्वाब की। जिंदगी के कुछ हसीन पल बस यूं ही गुजर जाते हैं, जिंदगी के कुछ हसीन पल बस यूं ही गुजर जाते हैं, बस इसीलिए उन यादों को हम कैद कर लाते हैं बिल्कुल इस सॉन्ग की तरह।

आज हम जिन गानों की बात कर रहे हैं उन्हें रेट्रो सॉन्ग्स तो कहते हैं, साथ ही साथ पुराने या क्लासिकल बॉलीवुड सॉन्ग भी कहते हैं। दोस्तों आपको पता है? अगर नहीं पता है तो हमें ध्यान से सुनिएगा। अब आप सोच रहे होंगे क्या, ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना कि जब हम ख्वाब में होते हैं और ख्यालों में चले जाते हैं तो हमारा क्या क्या गुम जाता है, नहीं पता ना आपको? कोई बात नहीं, आइए इस सॉन्ग से ही पूछ लेते हैं इस सवाल का जवाब, जिसे आवाज से सजाया है आशा भोसले ने और रफी साहब ने। यादों की बारात मूवी से ये मजरूह सुल्तानपुरी की लाइंस के साथ राहुल देव बर्मन की कंपोजिशन से।

दोस्तों, चोरी के बाद ही असली मुद्दा शुरू होता है, जिसे कहते हैं जिज्ञासा, तड़प या जानने की इच्छा। क्योंकि खोजबीन तभी शुरू होती है जब हम किसी के प्यार में होते हैं और फिर खुद ही से कहते हैं कि यादों की फरमाइश भी बड़ी कमाल की होती है, यादों की फरमाइश भी बड़ी कमाल की होती है। सजदा वही करता है दिल, सजदा वही करता है ये दिल, जहां हर सुबह हर रात आपके प्यार की बरसात होती है।

आपको पता है कागज तो बहुत खोले हैं हमने, कभी उधार का कागज, कभी बिल का कागज, तो कभी बिल का और दिल का कागज। बचपन में सिलेबस का जब प्यार के खत की बात आई ना, तब तो भाई हमारा कागज कोरा ही रह गया, क्योंकि उस पर लिखने के लिए कोई अल्फाज ही नहीं मिल पाया। क्योंकि जब जज्बात बयां करने के लिए शब्द ढूंढे हमने, तो उस लायक कोई शब्द ही ना लगा।

भाई जिंदगी की बात हो गई, मुलाकात की बात हो गई, यहाँ तक कि बात की भी बात हो गई, पूरे कागज से जज्बात तक की बात हो गई। अब बात करेंगे खत की इस सॉन्ग के जरिए। और श्रोताओं, उससे पहले जुबाने दिल का पैगाम तो लेते जाइए। तुम कल के बाद आए हो, तुम कल के बाद आए हो, क्या मेरे ख्याल के लिए कुछ साथ लाए हो? हर बार मिलके कुछ अलहदा सा नया सा सिखाते हो, हर बार मिलके कुछ अलहदा सा नया सा सिखाते हो। वो कौन सा राज है, वो कौन सा राज है जो हर बार कहते कहते झिझक जाते हो?

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानसली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर अपना फेवरेट शो भूले बिसरे गीत अपने फेवरेट आरजे अनोखी के साथ। आज हम बात कर रहे हैं उस दौर की जहां की सॉन्ग्स एवर ग्रीन हैं, जहां के सिंगर्स लेजेंड्स हैं और जिन सॉन्ग्स को हम रेट्रो सॉन्ग्स कहते हैं, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग उस समय से कहीं ज्यादा आज के टाइम पर है। तो आइए उन्हीं सदाबहार गानों से एक और गीत हो जाए जो आपके लिए ही हम ढूंढ के लाए हैं। आज की शाम आपके नाम, ये प्यारा सा पैगाम।

श्रोताओं, आज हमने बात की रेट्रो सॉन्ग्स पर। और रेट्रो सॉन्ग्स वो सॉन्ग होते हैं जो कि हमारे दिल में इस कदर बसे हुए ना कि जिसकी धुन को सुनते ही हम उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ में। और हाँ, मिलेंगे तो कुछ खास ही लाएंगे आपके लिए। उससे पहले आज का ये बतौर तोहफा सॉन्ग आपके लिए। अब मुझे दें इजाजत। टेक अ वंडरफुल केयर ऑफ योर्स। गुड नाइट, शुभ रात्रि।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
1: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
4: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
3: और जेंट्स के लिए?
4: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
4: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
1: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838288386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।